0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। सुनते हैं चिंतन, वाचन और निर्माण कुसुमाकर दुबे का है।
1: कर्म गति टारे नहीं टरे। एक समय था जब सब लोगों को हम यही बोलते हुए सुनते थे, कोई भी काम अगर नहीं हुआ तो व्यक्ति सामान्य रूप से ये उदाहरण दे देता था, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई, चाहे जितने करो उपाय। लोग जीवन में इसे याद रखते थे और इसे एक फायदा था, वे गलत कार्यों से दूर रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग इस पंक्ति को भूलते गए, लोग भौतिकवाद की ओर मुड़ते गए, डूबते गए उसमें, लोग अच्छे बुरे को भूल गए। इस अंध भौतिकवाद ने इंसान को मशीन बनाया, लेकिन पूरी तरह ये भी नहीं हो सका। मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। आज के लोग मानते हैं कि हम विज्ञान के युग के हैं और जब तक हम तर्क की कसौटी पर कस नहीं लेंगे, किसी भी बात को या सिद्धांत को मानेंगे नहीं। ऐसे ही कहने वाले लोग ईश्वर को भी नहीं मानते। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को भी ये मानना पड़ता है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब तो देना पड़ेगा। एक जगह की घटना है, एक महिला एक बीमारी से ग्रस्त थी, उसका इलाज किसी भी चिकित्सक से नहीं हो रहा था। आखिर में चिकित्सकों ने यह फैसला किया कि उसे मनोचिकित्सक के पास भेजा जाए। मनोचिकित्सक ने उस महिला को सम्मोहन विधि के द्वारा उसके जीवन की कुछ गुत्थियों के बारे में पूछा। कुछ ऐसी अनसुलझी गुत्थियाँ थीं जिन्हें जानना मनोचिकित्सक के लिए ज़रूरी था। तो महिला ने अपने कई जन्मों का ब्यौरा उस चिकित्सक को बताया। चिकित्सक ने उसके कुछ जन्मों को सत्यापित भी कराया तो वो घटनाएं सही निकली। ये पता चला कि वो महिला अपने पहले के जो जन्म थे उनके कर्मों के हिसाब से ही अगले जन्म में सुख या दुख भोग रही थी और उसके इस जन्म की व्याधि भी पहले जन्म के कर्म के कारण ही थी। इस घटना के बाद उस महिला के जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। इसे चिकित्सकों ने अपने से देखा और जांचा परखा है। पता नहीं ये तथ्य कितना वैज्ञानिक तौर पर मान्य है, लेकिन एक बात तो हम कह सकते हैं कि पिछले जन्मों की बात हम न भी माने तो इस जन्म में हम जो कार्य करते हैं आने वाले समय में हमें उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। छोटी सी एक बात है, हम कोई गड्ढा यदि खोद दें कि उसमें हमारा कोई शत्रु आकर गिर जाए तो किसी न किसी दिन उस रास्ते से हमें भी गुजरना पड़ता है और तब हो सकता है कि उस गड्ढे में हम गिर जाएं। ऐसा तो सभी लोग मानते हैं, तो हम ये क्यों नहीं माने कि हम आज अगर कुछ गलत कार्य करेंगे तो इसी जन्म में हमें अपने इसी मानव जीवन में उसका परिणाम झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कहा गया है ना रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं तो तस फल चाखा। कोई भी व्यक्ति अपने बुढ़ापे के लिए धन जमा करके रखता है, उसी तरह से हमको भी अपने आने वाले समय के लिए अपने कर्मों का संचय करना चाहिए। अच्छा, यदि हम मान भी लें कि ये सब बातें बेकार है, फिर भी यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? वो अच्छे कार्य हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए।

0: हमारे अपने बाल बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए अच्छे फल देकर जाएंगे। तो हम अच्छे कर्म यदि करें तो उसमें किसी तरह का संकोच, किसी तरह की बुराई और किसी तरह का तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। जीवन में हम आत्मसात करें कि हम कितनी भी चतुराई कर लें, हम जैसे काम करेंगे उनका हिसाब तो एक न एक दिन रचयिता के सामने देना ही पड़ेगा, वो चाहे हम जन्म की बात माने अथवा न माने।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। लीजिए अब सुनते हैं कृषि चर्चा। विषय है वर्मी कंपोस्ट निर्माण एवं उपयोगिता।
2: आजुक कृषि चर्चा आप सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, अपना सब खेती करैत छी, जाहि मे फसलक मनोनुकूल उत्पादन लेबाक वास्ते खादक उपयोग करैत छी। जैविक खेतीक दृष्टिकोण सँ सदैत केचुआक खादक व्यवहार करबाक चाही। केचुआ के हमसब चाली सेहो कहैत छी। ई एकटा विशेष प्रजातिक होइत अछि जकर विष्ठा सँ वर्मी कंपोस्ट बनाओल जाइत अछि। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, केचुआ खादक कृषि मे बड़ महत्व होइत अछि, कारण एहिमे प्रचुर मात्रा मे माटिक लेल जे पोषक तत्व सब आवश्यक होइत अछि ओ पाओल जाइत अछि। केचुआ खाद मे सामान्य कंपोस्ट खादक अपेक्षा नाइट्रोजन 5 गुना, फॉस्फेट 1.5 गुना, पोटास 2 गुना व जिंक 2.5 से 3 गुना बेसी पाओल जाइत अछि। एहिमे कैल्शियम सेहो बेसी मात्रा में पाओल जाइत अछि। एतबे नहि, केचुआ खाद सँ फसलिक उपजा में वृद्धि होइत अछि, पर्यावरण संरक्षित रहैत अछि, संगे पूँजी सेहो कम लगैत अछि। शुष्क कार्बनिक पदार्थ जेना सुखल पात, पुआर, घास इत्यादिक संग संग गोबर, सड़ल गलल तरकारी, फल फूल व फसलक अवशेषक सही उपयोग भऽ जाइत अछि। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, केचुआ खादक दोसर लाभ ई होइत अछि जे खेतक माटिमे उपलब्ध पोषक तत्वक मात्रा, पानिके सुखबाक क्षमता व जलके धारण करबाक क्षमता, माटिमे जीवाणु क्रियाशीलता आओर फसिलके कीड़ा मकोड़ाके प्रकोप कम होइत अछि, संगे फसिलमे बीमारीसँ लड़बाक क्षमता बढ़ि जाइत अछि। स्नेह किसान भाई बहिन लोकनि, केचुआसँ खाद बनेबाक प्रक्रिया बड़ सरल व सुलभ अछि। केचुआ खादक लेल इपिजोटिक प्रजातिक केचुआके चुनबाक चाही। एकर अलावे कतेको प्रकारक केचुआ सभक प्रजाति उपलब्ध अछि जाहिसँ खादक निर्माण आवश्यकताक अनुसार कयल जाइत अछि। केचुआसँ खाद बनेबाक लेल एकटा निर्धारित आकारक टैंक अथवा बेड बना ली, जाहि पर कार्बनिक पदार्थक अवशिष्टक बिछावन कऽ दिएक। ओ एहि पर 2 से 3 दिन धरि पानिक सिच्चा दिएक। एकर पश्चात 200 ग्राम केचुआके एहि पर छोड़ि दिएक। केचुआ अपने पसरि जाइत अछि। केचुआ देलाक बाद टैंक अथवा बेड के कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ जेना घास, पुआर इत्यादि सँ झाँपि देबाक चाही। केचुआ एकरा खा कऽ जे विष्ठा करैत अछि तकरा वर्मी कंपोस्ट कहल जाइत अछि, जे प्रायः 70 से लऽ कऽ 85 दिन मे बनि कऽ तैयार भऽ जाइत अछि। एहि प्रकारे हमसब केचुआ सँ खाद बना कऽ एकर व्यवहार कृषि लेल कऽ सकैत छी, जे बेरक मांग अछि। एहिक सङ्ग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।

0: कृषि चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वर्मी कंपोस्ट निर्माण एवं उपयोगिता, इस विषय पर ये चर्चा। आलेख और वाचन सविता कुमारी का था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। कुछ ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच

0: जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से। लीजिए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को लेकर। डॉक्टर उत्सव राज शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जन्म से लेकर 28 दिन के बारे में कहा जाता है कि जो अवस्था होती है वो नवजात अवस्था होती है, उसमें बच्चों के लिए वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसको अपनाया जाना बहुत ही जरूरी है?
3: देखिए, ये नया जो गाइडलाइन है NNF का, उसमें यहाँ तक करते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड नाल जो होता है उसको काटने से पहले माँ की छाती पे लगा के माँ का स्तनपान शुरू करवाते हैं। यानी इससे आप समझ गए होंगे कि स्तनपान का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। माँ अगर सिजेरियन यानी ऑपरेशन से भी बच्चा होता है, उस कंडीशन में भी बच्चे को उल्टा करके माँ की छाती पे लगाएं, बच्चा जो दूध खींचेगा, अगर वो एक या दो बूंद भी दूध आ रहा होगा वो अमृत है उसके लिए, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो गाढ़ा पीला दूध होता है। कुछ चीज़ें जो बच्चे के बारे में कहते हैं हम लोग कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम घर वालों को क्या समझाते हैं। पहली चीज़ कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं 6 महीने तक, ऊपर का शहद, घुट्टी, पानी कुछ भी नहीं। कहते हैं कि कोई भी नाक में या कान में किसी तरह का कोई तेल नहीं डालना है बच्चे के।
2: अच्छा।
3: साबुन तेल पाउडर का इस्तेमाल 1 महीने तक नहीं करना है, ना कि बच्चे के चमड़े बहुत नाजुक होते हैं, किसी भी चीज से रिएक्शन हो सकती है, तो साबुन तेल पाउडर का इस्तेमाल 1 महीने तक ना करें। 1 महीने के बाद जब आप लगाते हैं बच्चे को तो सिर्फ नारियल का तेल इस्तेमाल करें, जो कि IAP भी कहता है, किसी और तेल का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप बच्चे के ऊपर पाउडर स्प्रिंकल करते हैं तो वो उड़ के नाक में आंख में जाता है, जो कि एक सर्दी का छींक का कारण बन सकता है, तो पाउडर का इस्तेमाल 1 महीने के बाद भी अवॉइड करें आप। इसके अलावा बच्चे को हमेशा सूखा रखें, एक लेयर कपड़े में लपेट के रखें, अंदर का लेयर जो रहेगा वो हमेशा सूती कपड़े का होगा। ठंड में खास करके ध्यान रखना होता है कि सिर, हथेलियां और तलवे, ये 3 चीज जरूर ढके रहने चाहिए ताकि हीट लॉस कम से कम हो बच्चों का। ये सर्दियों में खास ख्याल रखने की चीज़ है। बच्चे को नहला सकते हैं आप कमरे के अंदर गुनगुने पानी में बिना साबुन के पहले 1 महीने तक, जिसमें आप नहलाने के समय में पानी इतना ही रखेंगे टब में जिसमें बच्चे का सर डूब ना पाए, कि गलती से अगर आपके हाथ से छूट जाता है तो बच्चे का सर अंदर ना जा पाए। और जब भी आपका हाथ का मूवमेंट रहेगा बच्चे पे पानी डालने का, तो हमेशा सर से पैर की तरफ, ताकि कभी भी अगर आप पानी डाल रहे हैं तो वो बच्चे के नाक और मुंह में ना चला जाए और उससे एस्पिरेशन या बच्चे को परेशानी या चोकिंग ना हो। बच्चे आते हैं ऐसे कि हम नहला रहे थे, बच्चे ने सरक लिया पानी और उसके बाद इसको सांस लेने में दिक्कत हो गई, नीला पड़ गया। इसके अलावा ध्यान रखने की चीज़ होती है कि पहला टीकाकरण हेपेटाइटिस बी, OPV और BCG, ये बर्थ पे बच्चों को लग जाना चाहिए, नहीं तो 48 घंटे के अंदर कम से कम, ऐसे BCG 3 महीने तक लग सकता है मगर एट बर्थ लगाना बेस्ट माना जाता है। OPV उसी तरह है, फिर जो आगे 1.5 महीने और 2.5 महीने 3.5 महीने के टीकाकरण होते हैं वो भी उतने ही ज़रूरी हैं, बट अभी हम लोग नवजात स्थिति की बात कर रहे हैं। इसके अलावा माँ के दूध में विटामिन AE के कम रहता है, तो एक मल्टीविटामिन अगर आपके डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं वो 6 महीने तक देना चाहिए। साथ ही साथ विटामिन डी, सारे बच्चे देखा गया कि ऑलमोस्ट 97% ऑफ इंडियंस आर विटामिन डी डिफिशियंट, और माँ के दूध में भी विटामिन डी की मात्रा है वो नहीं के बराबर होती है, तो विटामिन डी का जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा डोज दी जाती है, जो टर्म बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी कम डोज दी जाती है, वो कम से कम 2 साल तक बच्चे को ज़रूर दें।
2: नवजात अवस्था में
3: जी
2: बच्चे में क्या कुछ ऐसे लक्षण आए कि अभिभावक को या माता पिता को तुरंत से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हो सकती है?
3: जी, अगर बच्चा माँ का दूध ना ले रहा हो, सुस्त पड़ा हो, 6 से 8 घंटे में पेशाब ना कर रहा हो, या उसका रंग सफ़ेद या पीला पड़ रहा हो पूरी तरह, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं।
2: थोड़ी भी देरी उचित नहीं है,
3: थोड़ी भी देरी
2: सोचना नहीं है,
3: सोचना नहीं है। या अगर छोटे बच्चे को 100.2 से ज़्यादा बुखार आए वैसे कंडीशन में भी सोचना भी नहीं है। कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है बच्चा सुस्त है, इन्फेक्शन ही निकलेगा, हो सकता है शुगर लो होगा उसका, लेकिन वो सारी चीज़ें डॉक्टर ही आपको देख के बता सकता है, चेक करके बता सकता है।
2: घर में जब

0: दिलकारी गूंजती है, खुशी का वातावरण होता है, तो हर कोई लालायित रहता है कि बच्चे को गोद में लें।
1: जी,
0: दो बातें होती है, पहली बात तो ये कि मना किया जाता है
1: जी,
0: दूसरी बात ये होती है कि खतरा होता है जी, क्या करना चाहिए?
1: देखिए, एक चीज़ आप समझें कि जब NICU में आपने भी देखा होगा कि बच्चों को एकदम आइसोलेटेड रखते हैं, माँ को भी अगर मिलने जाने देते हैं तो मास्क लगा के और एप्रन पहन के, तो ये सिर्फ बीमार बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे बीमार ना पड़ें इसके लिए है।
0: सही।
1: और ध्यान ये रखें कि गोद में लेने से ही आप सिर्फ प्यार नहीं जता सकते हैं, आप दूर से भी प्यार जता सकते हैं, और घर में किसी को भी अगर सर्दी खांसी जुकाम है बच्चे के कमरे में ना जाए, और अगर माँ को सर्दी खांसी जुकाम है तो वो दूध अपना जरूर पिलाएं, मगर कोशिश करें कि मास्क लगा लें और दूध पिलाएं।
0: तो नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को लेकर आपने इतनी बातें बताई हमारे श्रोताओं के लिए। डॉक्टर उत्सव राज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, विषय था नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, विशेषज्ञ थे डॉक्टर उत्सव राज। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये देशगान समवेत स्वर में।

यह भारत भूमि हमारी। अभी हम ये भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत ये देशगान सुन रहे थे समवेद स्वरों में। अगला भजन हमने लिया है कविता कृष्णमूर्ति और रॉबिन चटर्जी की आवाज में।

प्रभु जी अब की बार उबार। अभी आप सुन रहे थे ये भजन कविता कृष्णमूर्ति और रॉबिन चटर्जी की आवाज़ में। अगला भजन आइए सुनते हैं हरिहरण की आवाज़ में।

हरिहरण की आवाज़ में अभी आप ये भजन सुन रहे थे। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं डॉक्टर उज्ज्वल की आवाज़ में ये प्यारा सा भजन।

जीवन है बहता पानी, दो दिन की ये जिंदगानी। ये भजन अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उज्जवल की आवाज़ में, और इसी भजन के साथ ही

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से। श्रोताओं, आइए अब निवेदित है रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर हैं सुरेश वाडेकर के।

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती देव नदी गंगा शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे, तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए जानकारी प्राप्त करते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सुबह के 8:48 पर। साथ ही उर्दू प्रोग्राम हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे, जिसे आप 9:10 पर सुनेंगे। दिन के 11 उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायक भीमसेन जोशी की आवाज में उपशास्त्रीय संगीत। कुछ फिल्म संगीत आप सुनेंगे हमारे इस सभा में दिन के 12:00, दिन के 1:15 पर और दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्म संगीत। बहने अपना कार्यक्रम सुनेंगे नारी संसार दोपहर 12:30 पर।

रोजगार सूचना आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर, साथ ही कुछ लोकगीत आप सुनेंगे हमारे इस सभा में 3:00। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी 5:00। विद्यापति गीत का समय होगा 6:10 पर और मैथिली में संवाद आप सुनेंगे 6:25 पर।

0: ईशान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे गाम घर शाम 6:30 पर, और शाम 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली में संबोधित हमारा कार्यक्रम सिंगरहार। समाचार संध्या का समय होगा रात 8:45 पर। कुछ सुगम संगीत आप सुनेंगे रात 10:00। भारत नेपाल मैत्री संबंध पर आधारित कार्यक्रम हम एक हैं आप सुनेंगे आज रात 10:30 पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आइए अब समाचार सुनते हैं, पहले संस्कृत में और इसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी

ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: करै छी, सहस्ने प्रणाम करै छी। आउ आजुक दिन के शुभारंभ हम सब करै छी
1: एक सुविचार से।
0: तऽ ई सुविचार लेलहुँ हैं आजुक दिन रहीम के। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पै फिर नहीं जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहल है ई किस शब्द के दोहा अछि, संत रहीम एकरा कहने रहैत। बेसी पढ़ल लिखल तऽ नहि रहैत, ओसब कोनो तरहक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्रधारी नहि रहैत, कोनो डिग्री नहि रहनि, लेकिन जीवन के जे अनुभव रहनि ताहिमे सँ जे सार निकालने रहैत, वह एकटा सुविचार के रूप लऽ कऽ हमरा सब आइ तक पढ़ि रहल छी, गुणि रहल छी आओर बुझि रहल छी। कहबाक तात्पर्य, जीवन क्रम मे बहुतो तरहक बात भऽ जाइ छै जीवन मे, लेकिन कखनो कोनो परिस्थिति मे आपसी भाईचारा प्रेम के हत्या नहीं होबाक चाही। ओकर भाव इएह छै जे एक बेर यदि आपसी संबंध अहाँ खराब कऽ लेब, तकर बाद कतबो ओहिमे मलाई मक्खन लगेबै, ओ गांठ जे रहै छै सूती धागा एहन कमजोर धागा के जे बीचमे कखनो तोड़ि देबै अहाँ, किए तऽ कमजोर छै, निर्बल छै, तोड़ि देलियै ओहिके बाद फेर ओकरा जोड़के अहाँ प्रयास करबै तऽ कनि ने कनि गांठ रहबे करत। ओहिना मन मे कोनो ने कोनो भाव कसक एहि बात के रहि जाइ छै जे की ओ दुर्भाग्य बस एहन क्षण आयल जे ओहि प्रेम के हम तोड़ि लेलहुँ, आब हम कतबो मिल रहल छी लेकिन ओ हमरा पाछू नहि छोड़ि रहल अछि। कयाम जी,
1: जी बिल्कुल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करते हैं क्या कुछ खास है आज के दिन, आज के इतिहास में। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। आज ही के दिन 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराकर अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। आज ही के दिन 1975 में मोजम्बिक देश को पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी। 1950 में उत्तर कोरिया सैनिकों ने 38वीं समानांतर रेखा पर पार करके दक्षिण कोरिया पर हमला किया था, और जिसमें कोरियाई युद्ध की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी।
0: छल इतिहास के किछु अंश जे कयाम भाई सँ सुनलहुँ। आओ कार्यक्रम के आगाँ बढ़बै, आप सबसँ पहिले गप सप तऽ करबे करब। आइ 25 जून अइ, आजुक दिन 1975 मे आपातकाल देश मे लगायल गेल छल, जे लोकतंत्र देश के लेल नीक नहि भेलै, ओकर अनुभव संग खट्टा मीठा अनुभव संग बातचीत करब, लेकिन सबसँ पहिले सुनै छी एकटा सुमधुर मैथिली गीत।

0: रहिजोरे बटोही हमर आंगन। अरविंद कुमार झा के स्वर में एखन ई सुमधुर मैथिली गीत सुनलहुँ, आशा अछि नीक लागल हैत। हमरो नीक लागल, कयाम भाई तऽ झूमते छलाह। कयाम भाई आउ, आजुक दिन 25 जून आपातकाल आजुक दिन लागल छल, ओहिके सम्बन्धमे किछु गपशप कऽ ली। देखू जे हमसभ एकटा लोकतंत्र देशके निवासी छी आओर लोकतंत्रमे लोकक मतके सबसँ सर्वोपरि मानल गेलैए आओर लोकमंत्रके खिलाफ, लोकतंत्रके खिलाफ जँ कोनो निर्णय कोनो सरकार करै छथि तऽ ओ एहि बातके संविधान इजाजत नहि दै छै। तहन तऽ भेलै बलजोरी लठेती। ओहिसँ यदि करै छी तऽ आम जनताके मनमे अहाँ अपन भाव नहि बना सकै छी आ आम जनता ककरो नहि छोड़लकैए। तैं लोकतंत्र सने मजाक किनको नहि करक चाही। हम रही, अहाँ रही, क्यों रही, लोकतंत्रमे जनता सर्वोपरि होइ छै। ई सम्बन्धमे आगू गपशप करब।
1: जी बिल्कुल,
0: अहाँके सामग्री रखने छी।
1: लोकतंत्रमे किसी भी चीज के लिए लोकतंत्र और संविधान हमें इजाजत जो देती है उसी हिसाब से हमें अपना जीवन यापन करना है। हम भारतीयों को इस बात का पूरा ख्याल रखना होता है और हम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा ख्याल रखते हैं कि श्रोताओं के रेडियो पर समय से सारी चीज़ों को हम पहुंचाएं। और समय से हमें चलते भी रहना चाहिए। समय के साथ अगर हम वक्त के साथ चलते हैं तो समय से बचा हुआ जो समय है वो हमें आगे काम देता है, क्योंकि वो 24 घंटे हर आदमी के लिए है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए हो। और हम भी स्टूडियो से बैठकर उस समय का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और अब समय से ही आपके रेडियो पर भेजते हैं हालचाल।

0: वक्त हो चुका है हालचाल का। हालचाल प्रस्तुत करेंगे प्रवीण कुमार झा।
1: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। आई 25 जून अच्छ 1975 आजुक दिन आपातकाल लागल या थोपल गेल छल आम भारतवासी के ऊपर। जे के याद करैत आजुक दिन हम सब ओहि दिन के याद करै छी जे एहन कोनो सरकार नहि काज करै जे लोकतंत्र के जे सिद्धांत छै ओहि के खिलाफ होइ। आम जनता के यह चाही सरकार सँ, और ओ आशा करैत अछि एहि लोकतंत्र देश में पुनः एहि चीज के दोहरायल नहि जायत, ई आशा करैत अछि। दरभंगा हनुमान नगर प्रखंड के थलवारा, हिपौल और सिनुआर गांव के किसान सब एकजुट भ संगहि जिला मुख्यालय आबि जिला अधिकारी के एकटा ज्ञापन देलखिन, जाहि में कहल गेल जे औद्योगिक विकास के लेल जे अधिग्रहण जमीन के भ रहल अछि ओ जमीन हम सब नहि देब, ओहिमे हम सब पुस्तैनी खेती करैत आबि रहल छी और खेतिए करैत रहब। ई ज्ञापन दैत किसान सब विरोध दर्ज करेलनि जिलाधिकारी के समक्ष। संगहि कहलनि यदि औद्योगिक विकास के हम सब विरोधी नहि छी, औद्योगिक विकास हेबाक चाही, तऽ किया नहि पेपर मिल छै, पेपर मिल के जे जमीन छै ओहिमे उद्योग लागै और ओहिठाम विकास होइ। पेपर मिल के बहुतो रास जमीन ओहिना नन उपयोगी भऽ कऽ पड़ल छै जे पर कोनो उद्योग नहि लागि रहल अछि। आइ किसान जाहिमे खेती कऽ रहल अछि ओहिमे उद्योग लगाबऽ की औचित्य छै, एकर विरोध दर्ज करैत किसान सब एकटा संगोष्ठी सेहो केलनि जे कोनो हालत में जे खेती युक्त जमीन अछि ओकरा उद्योग विकास के लेल नहि देल जायत। नवासीमम जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के याद करैत आम जन कहलनि जे हुनक जीवन, शिक्षा आ सामाजिक न्याय के लेल बिहार भरि में अपन कार्य और जन सहयोग सँ बिहार के सेवा के लेल याद कयल जाइत अछि। इतिहास हुनक संघर्ष, शिक्षा, सामाजिक न्याय और बिहार के विकास में जीवन भरि ओ लागल रहा। एहि कार्य हेतु हुनका साधुवाद संग सादर याद करैत रहब। हमसब कुशेश्वर स्थान प्रखंड कार्यालय परिसर में बुध दिन प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के बैठकी भेल। बाल कार्यक्रम में बाल विवाह, मानव तस्करी, कुपोषण पर विशेष रूप से चर्चा और विमर्श भेल। संगहि कहल गेल जे सामाजिक कुरीति सब जे अछि ओकरा रोकबाक हेतु अन्य विभाग से समन्वय बनेनाइ आवश्यक भ जाइत अछि, खास कऽ जे पंचायत स्तर पर जे काज करैत अछि ओकरा से समन्वय बेसी आवश्यक अछि। सामाजिक स्तर पर एकर प्रचार प्रसार संग जागरूकता सेहो हेबाक चाही। ओना देखल गेलै जे शिक्षा के जतौ अभाव अछि ओतहिए एखन कुरीति और बहुतो तरहक से जे काज नहि हेबाक चाही से होइत अछि। तऽ मूल जे अछि शिक्षा, तै समाज के शिक्षित करा पर बेसी जोर हेबाक चाही। संगे संगे नीक कोनो बात होए ओकर प्रचार प्रसार कऽ कऽ ओहि कुरीत के भगेबाक चाही, ओहो पंचायत स्तर पर जाकऽ। तखन हम सब संपूर्ण रूप से एहि कुरीत सबके अपना समाज से और राज्य से दूर कऽ सकै छी। दरभंगा जिला मुख्यालय के 19 परीक्षा केंद्र सब पर सिपाही भर्ती परीक्षा लेल गेल। काल्हि परीक्षार्थी सब के करंट अफेयर्स के प्रश्न पूरा परीक्षा अवधि में उलझने रहल। ऊपर से प्रचंड रौद आ गर्मी से सेहो खूब परीक्षा लेल गेल। जिला मुख्यालय में औषधि नियंत्रण प्रशासन के छापामारी भेल। दुकान सब में हड़कंप मचल, बहुतो दुकान से एकटा दुकान से 34 प्रकार के दवा जब्त भेल और माटि के नीचा गाड़ल 77 बोतल कोडिन युक्त कफ सिरप सेहो पकड़ायल। एहि संबंध में गिरफ्तारी सेहो भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा विश्वविद्यालय विद्वत परिषद के बैठकी में कतेको शिक्षा सुधार हेतु निर्णय लेल गेल। संगहि अंगीभूत आ संबद्ध महाविद्यालय में आरंभ होयत BBA और BCA कोर्स। नव विषय संघ महाविद्यालय सब

0: के नामांकन हेतु आदेश देवाक निर्णय लेल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा संगीत नाट्य विभाग में एकटा कार्यक्रम भेल जे ऑनलाइन भेल। वैश्वीकरण में संगीत के भूमिका पर ऑनलाइन कार्यशाला भेल, संगे संग राग यमन के सेहो ओहि में सिखायल गेल। ई हालचाल एखन दरभंगा से सुनलहुँ। आब किछु मौसम पर। उत्तर बिहार में खास कर अगला 48 घंटा तक भीषण गर्मी से राहत भेटबाक कोनो उम्मीद नहीं भेट रहल अछि। ओना कतौ कतौ हल्लुक वर्षा भ सकैत अछि। अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रह सकैत अछि आ उष्म भर गर्मी सेहो रहत, कतौ कतौ लो चलत। संगहि 27, 28, 29 जून से बारिश के संभावना अछि, कतौ कतौ ठनका सेहो खसि सकैत अछि। एहि संग हालचाल सम्पन्न भेल। नमस्कार।
1: हालचाल के बाद श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर है 6202777 40 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर है 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनों की बात करें तो सुबह 5 बजे पटना के लिए पैसेंजर, सुबह 6:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुबह 8:15 पर दरभंगा से नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7 बजे नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3 बजे दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
0: हम जी सुनेलन कार्यक्रम में हम सब गप शुरू केने छलहुँ जे अजुका दिन आपातकाल लागल छल 1975, ओहि सम्बन्धमे किछु आओर गप सप करी कहम जी। हमसब लोकतंत्र देश के निवासी ई सब जनै छी, लोकतंत्र में संविधान अछि, संविधान के अनुसार नियम उपनियम बनल अछि, कानून हमरा सब समस्त जनता के अधिकार देने, संगे संगे कानून हमरा किछु कर्तव्यो देने अछि। कर्तव्य बोध सँ यदि हम जीवित नहि रहब तऽ कानून हमरा समझ नहि सकबै। तै दुनू मे अनुनासिक संबंध भऽ जाइ छै। यदि हम सभ्य नागरिक छी, देश के विकास मे किछु करऽ चाही, सामाजिक विकास मे किछु अपन योगदान देबय चाहै छी तऽ श्रमदान के सेहो अपना ओहिठाम विशेष महत्व रहलै है। बहुतो संत फकीर अयला से सामाजिक सुधार, सामाजिक कुरीत के भगवा के लेल बहुतो तरहक अपन समय के दान केलनि, अपन समय के लगौलनि, पूरा जीवन अपन लगा देलनि सामाजिक उत्थान में। तैं लोकतंत्र हमर एखनो तक जड़ सँ मजबूत अछि और दिनोदिन ई वटवृक्ष ऊपर सँ ऊपर पल्लवित भऽ रहल अछि। तैं हमरा सब ई सँ आशा करै छी जे कोनो लोकतंत्र देश के निवासी ई कहियो नहि चाहत जे ओकरा लोकतंत्र के कोनो सरकार द्वारा कुठारघात कयल जाए।
1: जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओं, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है, उनके मूलभूत नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इन कानूनों के आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, नई सरकार की शक्तियों को तय करती है और नगर और नागरिकों को अधिकारों की रक्षा कराती है। यह सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियों और सीमाओं को निर्धारित करता है ताकि कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त भी लगा और साथ ही साथ कमेटियों का गठन किया गया। जब देश हमारा अंग्रेज़ों के का गुलाम था तो उसमें बहुत ज़्यादा, हम सब इस बात को जानते हैं कि देश की आज़ादी में बहुत सारे वीर सैनिकों ने, हमारे देश के नेतागण, फ्रीडम फाइटर

0: हम कह सकते हैं कि वो उन लोगों ने अपनी जान की बलिदानी दी, तब जाकर हमारे देश को आज़ादी मिली। और आज़ादी के लिए एक लिखित दस्तावेज़ जिसे हम संविधान कहते हैं, इसको तैयार किया गया और जिसका एक कमेटी का गठन किया गया। इसमें इसकी इनकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया पूरे देश में। इसको बनने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान लोकतंत्र की रीढ़ है। यह शक्तियों और आम जनता दोनों के लिए समान होती है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों को न्याय मिल सके, लोग अपने अधिकारों को समझ सके। संविधान में सभी वर्गों के लिए जो लोग हैं, चाहे वो नेतागण हो, एक मामूली सा इंसान हो, एक मजदूर हो, एक गरीब हो, सबके लिए कानून बराबर रखा गया है। जो इस कमेटी की गठन की गई भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में, इसमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये रखा गया कि संविधान हमारे लिए जो लोकतंत्र है वो हमारे लिए बिल्कुल बराबर है, समान है, जिसमें हम कुछ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम सब भारतीय एक हैं। हमारी सोच देश को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। देश की राह में आ रहे जो, चाहे वो विदेशी ताकत हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जो हमारे देश के विरुद्ध हो, उसके लिए हम सब भारतीय खड़े रहें और खड़े होकर इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें और हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें।
1: बहुत नीक कयाम जी, अपने जे सत्य छे वह बात कहलूँ जे हमरा सब भारतवासी हमर देश कोना आगू हुए ए वैश्विक पटल पर जे विकास भ रहल अछि ओहिमे हम कते तक छी और कते तक पहुँचक छल, ताहिमे कतेक अभाव अइ, ई बहुत किछु ओहिठामका जनता पर निर्भर करै छै। सरकार के सहयोग जनते करै छै आ असहयोग सेहो जनते करै छै। यदि नीक कार्यक्रम भेलै तऽ जनता ओकरा सहयोग होइ करै छै आ कोनो जनता विरोधी यदि कोनो कार्यक्रम बनैत अछि तऽ जनता ओकरा विरोध करै छै। खैर, लोकतंत्रमे स्वस्थ विरोध के एकटा अधिकार छै, संवैधानिक अधिकार देल गेल छै जे बिना कोनो उपद्रव के अहाँ यदि स्वस्थ विरोध कऽ रहल छी तो अहाँ के अधिकार अइ। तैं लोकतंत्रमे देखल गेलै है यदि सरकार होइ छै तऽ ओहि सङ्गे विरोधियों को ओतबे महत्व होइ छै, किया तऽ विरोधी सरकार के ओहि हर पहलू पर चर्चा चाहै छथि जे हुनका जन उपयोगी नहीं लगै छनि, जन विरोधी लगै छनि। तैं स्वस्थ लोकतंत्र के लेल जतबे मजबूत सरकार के जरूरत होइ छै ओहिना ओकर विरोधी के जे कोनो एहन निर्णय नहि भऽ जाए जे आम जनता के हित में होइ। तैं लोकतंत्र के रक्षा बनल रहे ओहि लेल जनता सर्वोपरि हो जाइ। तैं जनता के विरुद्ध यदि कोनो सरकार जाइ छथि तो आम जनता ओकरा बर्दाश्त नहीं करैत अछि, आगू आवा वाला चुनाव में ओ पटल पर आबि जाइत अछि। तैं जतय तक भ सके आम जनता से सेहो ई आग्रह जे अपन देश के निर्माण में अपन समय दियौ, अपन सामाजिक उत्थान में सेहो अपन सहयोग करियौ। आपसी समन्वय, आपसी भाईचारा, सामाजिक कुरीति और समाज में व्याप्त अव्यवस्था केना दूर होए, ओहि पर सामाजिक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जहन पंचायती राज आप आबि गेल अछि बिहार भरि में लागू अछि, तो किया नहीं हम पंचायत स्तर पर कोनो समस्या के बेसी से बेसी समाधान कऽ ली जे हमरा सबके कोनो तरहक आगा जाय के नौबत नहीं आवे। यदि पंचायत सशक्त होइ छै तऽ निश्चित रूप से प्रखंड सशक्त हेतै आ प्रखंड सशक्त हेतै तऽ जिला मजबूत बनतै आ जिला मजबूत बनला से हमर राज्य मजबूत बनत और पूरा देश भरि में अपन नाम सेहो आयत। तो कहबाक तात्पर्य ई जे आजुक दिन ई परम जे कुठारघात भेल छल लोकतंत्र के ऊपर से के दिन अछि, तै आम जनमानस के सेहो किछु आज दिन बहुत किछु सोचक चाही। संगे संगे आवा वाला या सरकार जे छथि हुनको किछु सोचक चाही जे आम जनता के हित के लिए यदि काज करब तऽ जनता हमरा संग में रहत, अगर जनता से नहीं हम कोनो एहन कुठारघात करबै तऽ यह जनता छै जे अहाँ के सत्ताच्युत कऽ सकैत अछि। तै जनता जनार्दन होइ छै लोकतंत्र में, लोकतंत्र के यदि प्राण कहबै तऽ जनता छै, जे मतदाता छथि वह छथि लोकतंत्र के प्राण आ वह अपन प्राण पखेरू के मत दऽ कऽ कोनो सरकार के चयन करै छथि जे हमरा सबके विकास के लेल काज करैत अछि।

बिल्कुल। और किसी चीज़ को हम सही ढंग से देश के हिसाब से, देश की संविधान जो बताती है, समझाती है, उस हिसाब से अगर हम उन चीज़ों को करते और समझते हैं तो ही फिर मज़ा है। और उसको करना भी चाहिए, जो देश के लिए कुछ हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों पे हमें खड़े उतरना ज़रूरी है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी दरभंगा से श्रोताओं के लिए भी हमारे कुछ अधिकार हैं जिनको हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो देर न करते हुए श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: कर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना आपका जो मोबाइल है वो आपका रेडियो बन सकता है। उसका आसान तरीका है, प्ले स्टोर में जाएं जहां न्यूज़ ऑन AIR डाउनलोड करें और आकाशवाणी दरभंगा के सारे कार्यक्रमों को आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम में प्रवीण जी हम लोग बातें कर रहे थे संविधान हमारा क्या है, संविधान में क्या कुछ हमारे कर्तव्य हैं, क्या मौलिक अधिकार हैं, संविधान का दुरुपयोग करने वालों को हम जो जनता है जो लोग हैं चाहे वह सरकार में सत्ता में बैठी हुई सरकार क्यों ना हो उनके खिलाफ अगर जनता उतर जाए तो जनता कुछ भी कर सकती है। जो वोट का ताकत है उस ताकत से हमें समझना होगा कि देश को हम जहां चाहे जिस तरफ चाहे मोड़ सकते हैं। यह सत्ता का जो लोकतंत्र का अधिकार है जो जनता को संविधान ने भीमराव अंबेडकर की कमेटी ने दी है वो उन अधिकारों को हम जनता को हम नागरिकों को समझने और बुझने की जरूरत है।
1: देश जहन स्वतंत्र भेल रहे तखन कहलहुँ जे लगभग 3 साल लागल रहे एकटा विशेष विद्वज्जन के कमेटी बहुतो देश के संविधान के अध्ययन कऽ तखन अपन देश के एकटा संविधान बनेलक जकर अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर जी केलनि और सर्वसम्मति से ओ संविधान से पूरा पास भेल छल। ओहिमे आम जनता के हित के सर्वोपरि मानित लोकतंत्र देश केना शासन होए ओकर की नियम सबटा उपनियम ओहिमे समाहित अछि। एहि बीच बहुतो साल भेल बहुतो तरहक संविधान के विधि उपविधि सबके संशोधन भेल जे समय काल परिस्थिति के अनुसार नीके कहल गेल। समय साल जहन बदलै छै तऽ बहुतो तरहक नियम एहन बुझाइ छै जे अप्रासंगिक भऽ जाइ छै ओकर कोनो जरूरत नहीं रही जाए छे। तहीं ओहि नियम के उपनियम के लोकसभा और राज्यसभा द्वारा से संशोधित क के नव नव चीज जुड़ल लेकिन मूल भाव वह रहल। तहीं एहि में नागरिक सब के कर्तव्य और अधिकार के विशेष रूप से गहनतापूर्वक विमर्श संग लिखल गेल छे। हर एक नागरिक के जो अधिकार छे नहीं देश में तो ओहि संगे कर्तव्य सेहो जुड़ल छे। जो कर्तव्य हम नहीं करबे हम कानून संबद्ध कार्य नहीं करबे केवल अपन अधिकारे के लिए आवाज उठेबे ओकरो न्याय नहीं कहल जाए छे। निश्चित रूप से जखन कोनो एहन असंगति अबै छे तो हमरा सबके सोचने ये प्रश्न ई भ जाइत अछि जो हम की कह सकै छी इस संबंध में। तै सबसे विशेष पहल होइ छै शिक्षा दीक्षा के आ सामाजिक उत्थान के। समाज जो आगू आयत तक कुरीत कुप्रथा जे ए समाज से दूर भागत संगे संगे नागरिक जे ओहिठमका होयत ओ जागरूक होयत आ जागरूक नागरिक स्वस्थ समाज के स्थापना करैत अछि और स्वस्थ पीढ़ी के सेहो रचना करैत अछि संगे संगे अपन सरकार के संग मजबूती से रहैत अछि ओकरा संग दैत अछि ओकर नीक कार्यक्रम जे जनहित उपयोगी होए वही के लेल। जो कोनो सरकार जन उपयोगी कार्यक्रम नहि करैत अछि तो जनता ओकर विरोधो करै छै इहो अधिकार छै। तै कर्तव्य और अधिकार दुनू संगे संगे चलै छै। कोन तरहक देश हम बनबऽ चाहै छी बहुत कुछ हमरा सब पर निर्भर करैत अछि।
0: जी हाँ बिल्कुल। और संविधान की बातें हुई संशोधन की बातें हुई तो जहाँ जो जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है उसमें किया जाता है। उसी तरह जहाँ हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदलती रहती है। हम बातें कर लें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की। भारत की शिक्षा प्रणाली में एक व्यापक और आधुनिक सुधार है। इसमें 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में रटने की बजाय कौशल आधारित लचीला और सामग्री बनाना है। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। हमने पहले भी कहा कि किसी चीज़ की जहां ज़रूरत पड़ती है उसको संशोधन किया जाता है अभी की हालात और अभी की सिचुएशन को देखते हुए। स्कूली शिक्षा का नया ढांचा 5+3+3+4 पुरानी 10+2 प्रणाली को ख़त्म करने का नया शैक्षिक पाठ्यक्रम लागू किया गया। फाउंडेशनल 5 वर्ष का ये मतलब बच्चों के लिए है जिसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के लिए प्री स्कूल प्री पेडरी 3 वर्ष का है जिसमें 8 से लेकर 11 वर्ष की आयु के लिए कक्षा 3 से 5 तक। मिडिल 3 वर्ष की अवधि जिसमें से 11 से लेकर 14 वर्ष की आयु

उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा। कार्यक्रम को हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों को हम आपके लिए लेकर आते हैं, गीत संगीत के माध्यम से, मैथिली सुगम संगीत के माध्यम से, और साथ ही साथ जो लोकल खबरें हैं जो मैथिली में हम सुनाते हैं हालचाल के माध्यम से। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसका आसान तरीका है कि इसको आप बिल्कुल अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, रेडियो को पास ले

0: के लिए कक्षा 6 से 8, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा और कोचिंग शामिल है। सेकेंडरी 4 वर्षों की अवधि, जिसमें 14 से 18 वर्षों की आयु के लिए कक्षा 9 से लेकर 12 तक, जिसमें विषयों के चयन से अत्यधिक लचीलापन होगा। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में सुधार, बहुविषयीय दृष्टिकोण, जिसमें छात्र कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे विषयों को एक साथ चुन सकते हैं। उच्च शिक्षा में स्नातक 3 से 4 वर्ष का हो सकता है। यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे 1 वर्ष का प्रमाण पत्र, 2 वर्ष का पर डिप्लोमा और 3 वर्ष पर डिग्री मिलेगी। बोर्ड ने परीक्षाओं को बोझ को कम करने के लिए, उन्हें अधिक लचीला और योग आधारित बनाने के लिए ये सारे नियम लागू किए हैं।
1: एखन अहाँ बहुत गहनता से हम जन के सुनलिए, 2020 में जो नव शिक्षा नीति आयल ओ की ओकर नियम उपनियम सब अच्छे। देखियो, परिवर्तन शाश्वत नियम छे। जहन मनुष्य परिवर्तन

0: अधिक लचीला और योग आधारित बनाने के लिए ये सारे नियम लागू किए हैं।
1: एखन अहाँ बहुत गहनता से हम जन के ही सुनलियन जो 2020 में जो नव शिक्षा नीति आयल ओ की ओकर नियम उपनियम सब अच्छे। देखियो परिवर्तन शाश्वत नियम है। जहन मनुष्य परिवर्तन करैए, जन्म लैत अछि, बालक रहैत अछि, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और संगे दोसर पीढ़ी के नवनिर्माण, ई एकटा जे सर्किल छै चलते रहते पृथ्वी पर। और ओही के क्रम में हमर सबके जे पहिलका शिक्षा नीति छल ओहि में किछु आमूलचूल परिवर्तन भेल 2020 में नव शिक्षा नीति। समय अनुसार सबके बदलाव पड़े छै, आब स्मार्ट युग भऽ गेल छै और ओहि स्मार्ट युग में केहन शिक्षा हेबाक चाही ताहि पर विचार केला के बाद ई नव शिक्षा नीति आयल। कारण भेल जे एहि शिक्षा नीति में कौशल विकास पर बेसी ध्यान देल गेल छै। एहि में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व निर्माण पर बेसी ध्यान गेल छै। एहिमे एहन बहुत तरहक विषय के राखल गेलैए जे मूल विषय के बाद अहु विषय सबके अध्ययन आगा जीवन में सहायक होइ छै, तै हेतु व्यावसायिक शिक्षा सब एलैए। तै शिक्षा में ई परिवर्तन जे भेलै से नव समय के देखैत लेल भेलै, जकरा सहर्ष स्वीकार कऽ कऽ जे छात्र छात्रागण सब छथि ओहिमे लागि गेला। हँ, कि समय के लेल जे कोनो नव चीज होइ छै तऽ थोड़े असहजता होइ छै, किएक तऽ अभ्यास भऽ गेल रहै छै किछु आ हुअ लगै छै किछु, तऽ ओहिमे किछु असहजता भेलै। लेकिन जखन ओ आप स्थिर भेलैए तऽ लोक के नीक बुझा रहल छै, छात्र छात्रा सब एहिमे रुचि लऽ कऽ भाग लऽ रहल छथि, नव नामांकन भऽ रहल छै और संगे संगे विशाल जनसंख्या जे देश के छै और खास कर युवा के, तकर भरपाई, तकर नौकरी चाकरी जीवन यापन कोना होयत ओ देखैत, ओहि मूलभाव रखैत से ई नव शिक्षा नीति आयल। संगे संगे एहिमे कोनो चीज थोपल नहि गेलैए। एखने अहाँके हम जे चर्चा केलहुँ हैं जे जखन अहाँ प्रतिष्ठा करल जाए बी ए मे, एहिमे थोपल नहि गेलैए, 4 साल के भेलैए ई कोर्स, अहाँ 1 साल कऽ कऽ प्रमाण पत्र लऽ लिअ जे हम बी ए मे फर्स्ट सेमेस्टर पास केलहुँ, अहाँ 2 साल कऽ कऽ से किछु 3 साल कऽ कऽ अहाँके प्रमाण पत्र, अहिना 4 साल कऽ कऽ अहाँ पी एच डी करऽ के, 3 साल के बाद अहाँ पी एच डी सेहो कऽ सकै छी। तऽ ई सब जे परिवर्तन भेलैए, संगे संगे व्यावसायिक शिक्षा सबके जोड़ल गेलैए, तऽ एहिसँ छात्र छात्रा सबके विशेष लाभ भऽ रहल छनि। कौशल विकास पर विशेष ध्यान शिक्षामे एलैए जे नीक बात छै। नव जेनरेशन छै, नव जेनरेशन के नव चीज चाही, पुरान चीज पर कते दिन ओकरा अहाँ लऽ चलबै। तै नव जेनरेशन के नव पीढ़ी के नव शिक्षा व्यवस्था संग आगू आवा में सहायक भऽ रहल छै, जे कि चारू बगल प्रशंसा भऽ रहल अछि।
0: जी बिल्कुल, पढ़ने और पढ़ाने का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंज हो गया जरूर है, बदल सी गई जरूर है, लेकिन जो पढ़ने के अंदाज़ हैं आज भी स्टूडेंट उसी ज़माने उसी तरह जो जैसे हम बचपन में हम लोगों के गार्जियन पढ़ा करते थे, हम लोगों ने पढ़ा, आज नेक्स्ट जो जनरेशन के बच्चे हैं वो पढ़ने का जो सिस्टम है वो उसी तरह है। वो सिस्टम ये है कि आपको रटना नहीं है पढ़ाई को, आप अगर किसी चीज़ को रट कर करते हैं तो आप वो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, उस वक्त उस समय के लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हो सकता है कि उन चीज़ों को रट कर लिख देंगे, लेकिन जब तक आप किसी भी शिक्षा को किसी भी नॉलेज को आप समझेंगे नहीं तब तक आप करेंगे नहीं। इस शिक्षा नीति में यही चीज़ों को जोड़ा गया है कि आप किसी चीज़ को रट कर नहीं, समझ कर आपके अंदर में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए आपके पास समझ होनी चाहिए, टेक्निकल चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास गुण नहीं है, हुनर नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। डिग्री रख कर कुछ नहीं होता, जब तक आपने देखा होगा कि कभी भी हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर एक छोटा सा इंटरव्यू रखा जाता है, वो इसलिए होता है। अगर छोटा सा आप किसी भी प्लम्बरिंग का हो, राजमिस्त्री हो, किसी चीज़ के लिए आप गौर करेंगे, जब आप विदेश जाते हैं कहीं जाते हैं तो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है कि आपके अंदर उन कामों का उन चीज़ों का गुण है या नहीं है। तो जब तक आपके पास गुण नहीं होगा तब तक आप इन चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। किसी भी कंपनी में किसी भी ऑफिस में आप एक बोझ की तरह रह जाएंगे। तो ज़रूरी है कि शिक्षा को हम समझ कर

0: हासिल करें, समझकर ग्रहण करें, ये समझें कि हाँ इन चीज़ों में ये होता है, इन चीज़ों में ये होता है। नंबर कोई मायने नहीं रखता है। आज के समय में विद्यार्थियों में इन चीज़ों का एक स्टूडेंट में होड़ सा लगा रहता है कि फर्स्ट डिवीज़न लाना है, इतना नंबर लाना है, इतना प्लस लाना है। हाँ, ज़रूरी है, ठीक है, सामाजिक एतबार से वो चीज़ थोड़ा मायने रखता ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी यह है कि हम अपने नंबर से ज़्यादा अपने गुण पर, अपने स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ाई को समझ कर पढ़ें, रट कर नहीं पढ़ें, और समय के साथ उन चीज़ों को हम आगे बढ़ते रहें, समय के साथ उन चीज़ों को समझें, अपने अपने अंदर में जो कमी बेसी है, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्टूडेंट अपना खुद का शिक्षक खुद है पहले, क्योंकि उसको पता है कि हमारे अंदर क्या गुण है, हमें किन विषय में प्रॉब्लम हो रही है, हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पर हम साइंस में प्रॉब्लम है, सोशल साइंस में प्रॉब्लम है, या फिर लैंग्वेज पेपर में प्रॉब्लम है, या कहीं किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको टफ़ लगता है मैथ, वो बहुत आसानी से सीख लेते हैं, साइंस बहुत टफ़ लगता है, कुछ लोग बहुत आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन सोशल साइंस की चीज़ें, पॉलिटिकल चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों को आपको खुद देखना है कि हमें कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है, इन चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रवीण जी
1: एकदम सत्य कह रहे छी, यहाँ नव पीढ़ी छे, नव शिक्षा नीति छे, नव ढंग से हमरा सबके सोचके ओना छात्र छात्रा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जे होइ छै तऽ नीक लगै छै, कम्पिटिशन नहि नीक लगै छै। कम्पिटिशन होइ छै जे वयस्क भऽ गेल छै तकरामे, आओर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइ छै छात्र छात्रामे जकरा हम बेजाय नहि मानै छियै। ओना कहै छलखिन हेँ बाप दादा सब जे हो बौआ पढ़िहऽ कम गुणिहऽ बेसी। एखन स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास जे कहि रहल छियै वएह चीज छै, नव नाम देल गेलैए, तैं पढ़ी जरूर, लेकिन जे पढ़ी जतबे पढ़ी ओहिमे की बात कहि रहल अछि ओकर प्रायोग कऽ कऽ सेहो देख ली, नहि कि हम कागज पर से 50 टा गाछ रोपि लेलहुँ लिख देलियै, आ गाछ रोपलब केना तकर विधि अहाँके नहि अबैए। गाछ केना रोपल जाइ छै, कोना केना सींचल जाइ छै, कोना बढ़ायल जाइ छै, तऽ तैं सब चीजमे काज तऽ अवश्य करी लेकिन कुशलता सङ्गे करी, किए तऽ ई युग भऽ गेलैए प्रैक्टिकल युग, स्मार्ट युग, अहाँमे की गुण अइ से देखल जायत। प्रमाण पत्र तऽ चाहबे करी, सर्टिफिकेट तऽ चाहबे करी, लेकिन सङ्गे अहाँमे की हुनर अइ सेहो विशेष महत्व रखै छै। कार्यक्रमके आगाँ बढ़बैत आ समय भऽ रहल अछि एकटा गीत सङ्गीतसँ हमसब रूबरू होइ, तऽ आओ सुनै छी फिल्म सङ्गीत।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा। और चलते चलते घड़ी की सुई इशारा करिए कि वक्त हो चुका है इजाज़त लेने का, लेकिन उससे पहले श्रोताओं को अवगत करा दें समसामयिक पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति की 52वीं बैठक, 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा। मणिपुर में मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीड के साथ व्यापक वार्ता प्रगति की समीक्षा की। विकास भारत जी राम जी योजना की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय मंत्रालय बैठक की आयोजन की गई। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया।
1: ऐसा हमारा आजुक अंक से हमारा और कयाम के दिया आज्ञा
0: नमस्कार।

0: देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी वाला उदयन वाला है सामान किनना है।
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
3: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
4: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध, जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही

0: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खायब की
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
4: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
5: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की, टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा, 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: राजूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल है।

0: व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुंचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुंचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
1: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू है। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
0: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे।

0: भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को एक गोल और एक असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely

0: ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए आईसीटी पर मबनी प्लेटफॉर्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखादेही की शिकायतों का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखादेही से सख्ती से निमटने की जरूरत पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चार रियासतों में सड़क, बिजली, सनअती कॉरिडोर और मेट्रो रेल शोबों में चार बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी में इजाफा करना, सनअती तरक्की को आगे बढ़ाना और आवामी फलाह बहबूद वगैरह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताखीर की वजह से लागत में इजाफा होगा और शहरी बरवक्त फवायद से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने वजारतों और रियासती सरकारों को हिदायत दी कि वो एक मोड मिशन में जेर इल्तवा मामला हल करें और उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने मनसूबों की निगरानी और बेहतर मनसूबाबंदी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और बेदारी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कोशिशों में एनसीसी कैडेट्स और माई भारत रजाकारों को शामिल करने की भी तजवीज़ रखी। वज़ीर-ए-आज़म ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मजबूत तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने साइबर धोखादेही के मामलों पर तेजी से काम करने के लिए E0FIR मैकेनिज्म के निफाज और अवामी बेदारी मुहिम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नई दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून साल 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था जिसने उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की क़यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत व जवाब को नुकसान पहुँचाया गया था। इसके नतीजे में आमिला ने मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफ़ुज़ात को दफा 358 के तहत मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीर और इजहार राय की आज़ादी, एक जगह जमा होने और आने जाने की आज़ादी समेत उन हकूक को ख़त्म कर दिया गया था जिसकी जमानत दफा 19 के तहत दी गई थी। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई करने के हकूक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिस कर दी गई थी। यहाँ तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया था जो प्रेस की आज़ादी की तहफ़ का एक कानूनी इदारा है। इसी मुद्दत के दौरान आईनी तरमीम के जरिए इमरजेंसी का ऐलान करने के सदर जमहूरिया के फैसले पर सवाल करने से रोक दिया गया था और वज़ीर आज़म लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब को अदालती जाँच पड़ताल से मुस्तस्ना कर दिया गया था। सकाफत की वजारत आज नई दिल्ली में चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब का अहतमाम कर रही है जो इमरजेंसी के निफाज के बाद से 50 साल मुकम्मल होने का एक मौका है। इस मौके पर संविधान हत्या दिवस के साथ जमहूरियत हमेशा कायम रहे से मुतालिक एक नुमाइश के अलावा संविधान हत्या दिवस पर एक मुख्तसर फिल्म की नुमाइश की जाएगी। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर।
0: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत के तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होने की तवक्को है। पिथौरागढ़ जिले में थारचूला इंतजामिया के मुताबिक भारतीय ताजिरों का पहला दस्ता कल तिब्बत में तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तिजारती अफसर और धारचूला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM आशीष जोशी ने कहा कि पहले मरहले के तहत 26 तिजारती पास जारी किए गए हैं जिनमें 17 ताजिर और 9 मुआविन शामिल हैं। गंजी में इस अमल में सहूलत के लिए एक कस्टम ऑफिस भी खोला गया है। जनाब जोशी ने कहा कि ताजिरों ने लिपुलेख दर्रे के नज़दीक वाक

0: कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हममनसब की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसीर जहती शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच शदीद बारिश की पेशगोई की है। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से 4th मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद T20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नेदरलैंड्स को 95 रन से हराया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हार हुई थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने जनूबी कोरिया के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को शह सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है, यकसा नजरिया, बाहमी एतमाद वाले मुल्कों को मिलकर काम करने की जरूरत। अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, भारत ने अक्वा मुत्तहदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। अखबार इंकलाब की एक अहम सुर्खी है, अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की, अमरीकी सदर को सियासी झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बेमानी इकदाम करार दिया। इसके अलावा कोलकाता में जेर तामीर गोदाम की छत गिरने से 5 मजदूरों की हलाकत की खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-क़ौमी खबरें इस तरह हैं, इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद पर इंतजार कम करना होगा, नेतन्याहू का बयान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और AI पर मबनी TB के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुले एक दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाखी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
3: सभी दिवस पर सुबह 6 से रात 10 तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
2: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। महिला शिक्षकों का गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में हो सकेगा तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में होगा जेपी सेनानियों का सम्मान। और मौसम विभाग ने आज पटना, कैमूर और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। वहीं अररिया, कटिहार, मधुबनी और सुपौल सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई नियमावली लागू होने के बाद प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का तबादला पोर्टल आधारित या नियमबद्ध तरीके से किया जाएगा। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि नई नीति के तहत महिला शिक्षकों का तबादला गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में किया जाएगा। वहीं पुरुष शिक्षकों का तबादला गृह प्रखंड से बाहर जिले के नजदीकी प्रखंडों में होगा।
1: हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को सरल किया और उसमें जो महिला शिक्षिका है उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे और उसको लेकर पोर्टल पूरी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होंगे।
0: एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को स्वीकृति दी है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीत योग विश्वविद्यालय और सीवान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए हुरको से 1,00,000 करोड़ रुपए के ऋण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए हुरको के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद टाउनशिप क्षेत्रों में सुनियोजित अवसंरचना और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाए। कैबिनेट में कुल 45 एजेंडों की स्वीकृति प्रदान की गई। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू

0: होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संविधान हत्या दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस दौरान 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। इधर भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के अवसर पर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रूपये की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: पटना नगर निगम ने संपत्ति कर में 15% की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें कल से लागू हो गई हैं। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में मकान या दुकान के लिए अब ज्यादा संपत्ति कर देना होगा। गौरतलब है कि विभाग ने 22 जून को बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लागू करने की स्वीकृति दी थी। संपत्ति कर में वर्ष 1995 के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए लिखित परीक्षा भी देनी होगी। बिहार लोक भवन द्वारा तैयार नियमावली के अनुसार साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा भी अनिवार्य होगी। ये परीक्षा 175 अंक की होगी, जबकि 25 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार में 13 अंक ऑन स्पॉट शिक्षण कौशल टेस्ट के लिए तय किए गए हैं। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
5: शुभवाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचार

0: समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बक्सर का अधिकतम तापमान 42.1, पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शेखपुरा औरंगाबाद का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इन सभी स्थानों पर लू की स्थिति भी बनी रही। मौसम विभाग ने आज दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर बिहार के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है।
1: दिनांक 25 जून राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: भीषण गर्मी को देखते हुए सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने प्रारंभिक विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि पर 27 जून तक पठन पाठन प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे तक ही करने का आदेश दिया है। प्रदेश में धान और गेहूं की बुआई तथा कटाई के समय विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कोई भी नया काम नहीं होगा। कृषि विभाग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय प्रधान सचिव पंकज कुमार के अनुसार कार्यक्रम पदाधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक ये सुनिश्चित करेंगे कि कृषि मौसम के दौरान किसी भी ग्राम पंचायत में कोई नया काम नहीं हो। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा या असाधारण परिस्थिति में ही इस नियम में छूट दी जाएगी। प्रदेश में अगले महीने की 15 तारीख को महाकवि कालिदास की जयंती और वंदे मातरम समारोह का आयोजन होगा। कला संस्कृति मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि पटना स्थित प्रेमचंद रंगशाला में संगीत नाटक अकादमी और कला संस्कृति विभाग संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस दौरान देशभक्ति आधारित नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के पटना, भागलपुर, नोएडा और दिल्ली समेत 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान अधीक्षण अभियंता के पास विभिन्न स्थानों पर 13 अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईओयू को छापेमारी के दौरान 5 लाख रूपये से अधिक नकद और लगभग 39 लाख रुपए मूल्य के आभूषण मिले हैं। वहीं विभिन्न बैंक खातों में लगभग 90 लाख रुपए की राशि पाई गई है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 29 जून से 30 सितंबर तक जंगल सफारी समेत पर्यटन से जुड़ी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। VTR प्रशासन के अनुसार मॉनसून अवधि में बाघों के प्रजनन काल, वन मार्गों की मरम्मत और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने कल पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ये जानकारी दी। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मदन सहनी ने भी कल पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। सुपौल जिले में सशस्त्र सीमा बल बीरपुर के जवानों ने सीमा चौकी कुनौली क्षेत्र से 1,44,000 रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले में एक महिला पुलिस अधिकारी के रुपए गिनने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने महिला पुलिस अवर निरीक्षक और 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वायरल वीडियो जिले के अररिया संग्राम थाना का है। इधर जिले की लदनिया थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान अलग अलग गांव से 68 किलो गांजा जब्त किया है।

पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा। दैनिक भास्कर ने भरत मुठभेड़ मामले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, जस्टिस विनोद सिन्हा करेंगे मुठभेड़ की जांच, एसडीपीओ राजेश हटाए गए। प्रभात खबर लिखता है, उपद्रवियों को बिना वारंट नकेल कसने का डीएम को अधिकार। अखबार लिखता है, 1 जुलाई से अगले 3 महीने तक पूरे राज्य में लागू रहेगा आदेश। दैनिक भास्कर ने खेल की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, इंग्लैंड आयरलैंड में वैभव को मिलेगा अलग चेंजिंग रूम, 16 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को वयस्क खिलाड़ियों के साथ चेंजिंग रूम साझा करने की अनुमति नहीं। राष्ट्रीय सागर मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखता है, खास महल की भूमि पर रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक। आज अखबार की शब्द हैं, हर 3 माह में 3 पंचायतें होंगी बाल श्रम मुक्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी। महिला शिक्षकों का गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में हो सकेगा तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में होगा जेपी सेनानियों का सम्मान। और मौसम विभाग ने आज पटना, कैमूर और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, मधुबनी और सुपौल सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में, कृपया कुछ भी प्रतीक्षा करें।
2: कैसी है पहेली हाय,
3: जिंदगी हो तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
4: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि फूल

0: प्रकृति में घुराए लगैत अछि। ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की?
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी वाला सामान किनना,
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
3: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
4: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

मीडियमवेव दर्शक का 30.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा को। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम अंजुमन, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर रहे हैं।

हर अमल है देखिए पहचान तो कुरान की। और ये शेर बतौर खास देखे कि पंजतन के नूर बा

जब एक साथ ये दुनिया अली अली बोले तो क्यों ना फिर दरे काबा अली अली बोले, जब एक साथ ये दुनिया अली अली बोले तो क्यों ना फिर दरे काबा अली अली बोले। और ये शेर बतौर खास देखेंगे, हर एक माँ की ये हसरत है मेरा बच्चा भी, हर एक माँ की ये हसरत है मेरा बच्चा भी, लगा के है

बचपन का ख्याल आया तो रोने लगे शब्बीर, फरमाया के मजबूर हूँ जो ख्वाहिश तकदीर, दिखलाता है ए बाप की फुरकत फलक पीर, छूटता है तो फिर यार मुफाफिक नहीं मिलता, सब मिलते हैं पर आशिक सादिक नहीं मिलता। फरमा के ये छाती से लगाया कई बारी, रुख सज्जो किया आँखों से आंसू हुए जारी, घबरा

अब कौन बचाएगा शहर जिन बशर को सब छोड़े चले जाते हैं जहरा के पिसर को, सब छोड़ चले जाते हैं जहरा के पिसर को।

इतने में रजस पढ़ के पुकारा वो खुश अंजाम, ऐ कौम हबीब इब्ने मज़ाहिर है मेरा नाम। होशियार के अब म्यान से खेचती है ये शमशाम, वारिस का है दुश्मन के लिए।

आका मेरा वो है जो इमाम अजली है, मजलूम है सैयद है वली इब्ने वली है, हर जा

चली है, चलता नहीं मर कर इस मैदान में गड़ूंगा, तलवार न होएगी तो हाथों से लड़ूंगा। फिर ना थके बस पड़ने लगी तीरों की बौछार, देखा जो उधर पुश्त पे नैजे का लगावार, चाहा उसे मारे के लगे फर्क पे तलवार, और जुल्म की परछी भी कलेजे के हुई पार।

हर जख्म पे नारा था के शब्बीर के सदके, छाती भी छीनी तीरों से और फर्क दो पारा, रग रग जो कटी फिर न रहा जब्त का यारा। शीराज अज आए बदन खुल गए सारा, गिरते हुए घोड़े से ये आका को पुकारा, या आपका आना मेरी बख्शिश की सनद है, ऐ शेरे लाही के पिसर वक्त मदद है। नागाह सफे चीड़ के आए शहजीशा, देखा कि वो मजलूम है कोई दम का है मेहमा, लाशे से लिपट कर ये पुकारे बस तबगा, ऐ दोस्त मेरे तेरी मोहब्बत के मैं कुर्बा। दिखला दो मुझे जख्म कहाँ खाए हैं भाई, छाती से लिपट जाओ के हम आए हैं भाई, छाती से लिपट जाओ के हम आए हैं भाई। आका की सदा सुन के उसे होश जो आया, गर्दन के तले जानू शब्बीर को पाया, आँखों से कफे पाए मुबारक को लगाया, अकबर की तरफ जोड़ के हाथों को सुनाया। कुछ अपने नमक खार पे ऐसा नहीं करते, हजरत पे उठा के मुझे कुर्बान नहीं करते। ये कहते थे कि बस गुलशन दुनिया से सिधारे, निकली रही होठों पे जबां प्यास के मारे, बाजू को हिल

होते थे अभी मर गए भाई। हाय हाय मेरे आशिक मेरे शहदा मेरे यावर, हाय हाय मेरे सलमान मेरे मुग़दाद बबूज़र, हाय हाय मेरे रुस्तम मेरे ज़ैग़म मेरे सफ़दर, हाय हाय मेरे अम्मार मेरे मालिक अश्तर, ताज़ीस्त तेरे हिजर में फरियाद करूँगा, ताज़ीस्त तेरे हिजर में फरियाद करूँगा, खंजर के तले भी मैं तुझे याद करूँगा, फिर लाश दरे खेमे पिलाए शहे आ

0: मुसाफिर के अगर हैं तो हम ही हैं। जब शैन सुनी हजरत इब्ने तकरीर, जब शैन सुनी इब्ने मज़ाहिर की ये तकरीर।
1: सामीन आप सुन रहे थे सोज खाते जनाब सैयद जर्रार हुसैन। अब पेशे खिदमत है एक मकाला, मौजू है आशूरा का पैगाम इंसानियत के नाम। मकाला खाहें जनाब मोहम्मद मुजीबुर रहमान।
2: तारीख में बाज़ अय्याम ऐसे हैं जो महज तारीख के सफ़ात का हिस्सा नहीं बल्कि ईमान, किरदार और इंसानियत के लिए रहनुमाई का सरचश्मा होता है। योम आशूरा भी उन्हीं अजीम बाबरकत दिनों में से है। ये दिन अल्लाह की नुसरत, अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की जद्दोजहद, सब्र इस्तकामत और हक की सरबुलंदी की याद ताज़ा करता है। जिस दिन उसी महीने से इस्लामी साल का आगाज होता है, ये महीना अशुरे हुरम में से है। इस महीने को मोहतरम मुअज्ज़ज़ उसी दिन करार दिया गया है जिस दिन इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए कहा जाता है कि अहले अरब के यहाँ मुहर्रम का महीना बड़ा काबिल एहतराम था। उसका एहतराम ज़माने जाहिलियत की तारीख तरीन दौर में भी बाकी था और उस ज़माने के ताजिर हजरात भी अपने सामान तजारत को एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाने के लिए अपने तजारती सफ़र का आगाज़ भी वो उन्हीं महीनों में किया करते थे ताकि उनका सामान सही व सालिम मंजिल तक पहुंच जा सके। मुहर्रमुल हराम का दसवां दिन यौम आशूरा अपने दामन में बेशुमार तारीखें दीनी और रूहानी असबाक समेटे हुए हैं। ये दिन हमें सब्र तक्वा, इसार व इत्तहाद उम्मत, इत्तहाद उम्मत और हर हाल में दीन इस्लाम के असूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। इस्लाम की आमद के बाद भी इस माह मुबारक की हुरमत व अजमत तकद्दस को उसकी साबका हालत में बरकरार रखा गया। अरबी लोग ज़माने जाहिलियत में भी इन महीनों की ताज़ीम करते थे। इस्लाम ने भी इन महीनों की अजमत हुरमत को बाकी रखा। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया जिसका मफहूम यह है कि इन महीनों में तुम अपने जानवरों पर भी जुल्म मत किया करो। हदीस शरीफ में माह मुहर्रमुल हराम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना करार दिया गया, ठीक इसी तरह जैसे काबा शरीफ को बैतुल्लाह और हज़रत सालिह अलैहिस्सलात वस्सलाम की ऊँटनी को नाकतुल्लाह फरमाया गया। मुहर्रमुल हराम की रफ़त व बुलंदी के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इस महीने की निस्बत अपनी जानिब फरमाई, फरमाया शहरुल्लाह। यूं तो सारे ही दिन, सारे महीने, सारे साल को अल्लाह ताला ने पैदा किया। जिस तरह 8 दिनों में सूरज निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है, उसी तरह मुहर्रम के महीने में भी सूरज निकलता है और गुरूब आफ्ताब पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला किसी ख़ास दिन को या किसी ख़ास महीने को अपनी तरफ मंसूब करता है तो उससे इसके तकद्दस में इजाफा हो जाता है। जैसे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया रोज़ा मेरे लिए, तो उसकी हुरमत और अज़मत में इजाफा हो गया। अल्लाह तबारक व ताला जब किसी दिन को अपनी तरफ मंसूब फरमा देते हैं तो उसकी हुरमत में इजाफा हो जाता है। इसी तरह मुहर्रम के रोज़े हैं, चुनांचे मुहर्रमुल हराम की उसी बुजुर्गी और बरतरी की बिना पर आका मदरी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमज़ान के रोज़ों के बाद सब महीनों से ज़्यादा अफजल मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। और एक दूसरी हदीस में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्याम मुहर्रम में से एक यौम का रोज़ा दूसरे महीनों के 30 अय्याम के रोज़े के बराबर है। इसीलिए इस माह में हमें इस्तताअत के बक़द्र

अब सब मर चुके, अब किसके लिए सर न कटाएं। ऐसे नहीं बिछड़े के जो अकबर चले जाएं, किस तरह से उस यूसुफ़ गुमगुश्ता को पाएं। है फ़र्क बसारत में कहाँ ढूंढने जाएं, बे उनके न खाने का न पीने का मज़ा है। फर्जंद सलामत हो तो जीने का मज़ा है। एक जाओ ने हजीं ताबा कुजा रंज उठाए, राहत अब इसी में है कि जल्दी अजल आए। जख्मे जिगर ओ दिल किसे शब्बीर दिखाए, अल्लाह तबाही ये किसी घर पे न लाए। ताराज न इस तरह से हो बाग किसी का, अब मुझको दिखाए न खुदा दाग किसी का। आगे

आरजुओं से जिन्हें पायाओ या तीन पहर में इन्हें आंतों से गवायाओ, पछताता हूँ क्यों सात वतन से उन्हें लायाओ। तकदीर ने किस किस का मुझे दाग दिखायाओ, क्या जानता था खाक में गमखार मिलेंगे, ता हश्र बैसे न वफादार मिलेंगे। मैं कहता था कट जाएगा जब तन से मेरा सर, सब लावेंगे और गुस्लो कफन देवेंगे मिलकर, बाबा का उठाएंगे जनाजा वाली अकबर। सो मर गए वो जिंदा है।

तरह से रो पीट चुके, उनके अलम में हमको भी उसी तरह से रोना कोई दम में। अब जाते हैं गिर जाने को हम फौजे सितम में, फिर आने का यह हौसला बाकी नहीं हम में। जब जाते थे सब घेर के ले आते थे हमको, वो मर गए जो फेर के ले आते थे हमको। अब कौन है जो दौड़ के रोकेगा मेरी राव, जो पाँव पे गिरते थे कोई उनमें नहीं आओ। सदमे जो हैं मुझ पर कोई उनसे नहीं आगाओ, वल्लाह नहीं जीने का इब्ने असदुल्लाह। वो समझे कलेजे पे छुरी जिसके चली हो, अकबर ना हो दुनिया में हुसैन इब्ने अली हो। अल्लाह को सौंपा तुम्हें ऐ ज़ैनब कुलसूम, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम। अब जाते हैं

पर यादो बुका से, और जिस वक्त मुझे जिबा करे फिर कहे नारी, रोना न सुने कोई ना आवाज तुम्हारी, बेसब्रों का सेवा है बहुत गिरिया उजारी, जो करते हैं सब्र उनकी खुदा करता है यारी, हो लाख सितम रखियो नजर अपनी खुदा पर, इस जुल्म का इंसाफ है अब रोज जजा पर, कह कर ये सुखन चाव के आंसू हुए जारी, छाती से लिपट भाई के दैनब ये पुकारी, ऐ सैयदे मजलूम बहन हो गई वारी, मैं जाने नहीं देने की हजरत की सवारी, तब जाइयो जब जी से गुजर जाएगी जैनब, हजरत ने कमर बांधी तो मर जाएगी जैनब, दुखियारी हूँ भैया न मेरी आस को तोड़ो, सत्ते गई परदेश में भेना को न छोड़ो, बरगुश्ता जमाना हुआ मुँह तुम तो न मोड़ो, मुझसे तो न परमाओ के हाथों को न जोड़ो, मिन्नत भी करूँगी मैं कदम पर भी गिरूंगी, असर नंगे मगर कैद में दर दर न फिरूंगी, नाना है न बाबा है न माँ जुल्म की मारी, किस पर मुझे तुम छोड़ के जाते हो मैं वारी, फरमाते थे सब बहनों में तू है मुझे प्यारी, समझो न बहन मुझको मैं लौंडी हूँ तुम्हारी, और दुनिया में रहे लाख बरस आप सलामत, अब बस जानती हूँ है मेरे माँ बाप सलामत, एक बाकी बुजुर्गों में तुम ऐसा है उमम हो, फिर आपके क्यों करना बिछड़ने का आलम हो, हजरत की कसम मुझको जो बेटों का भी गम हो, और दुनिया में कोई हो के ना हो आपका दम हो, अब बचपन से कभी शहर में बिछड़ी न सफर में, सो मरने को तुम जाओ मैं बैठी रहूं घर में, अरे भाई जहां जाओगे मैं साथ चलूंगी, जंगल में रहूं घर का कभी नाम न लूंगी, तलवारों में भी पास से हरगिज न टलूंगी, पर से पुरकत से तुम्हारी न जिलूंगी, आदा की तर लड़ाई से न डर जाएगी जैनब, और कटवा के गला तेग से मर जाएगी जैनब, इन बातों से जैनब की दिले साथ भराया, रो रो के गले खारे बेकस को लगाया, और पूछ के आंसू ये मोहब्बत से सुनाया, तुमने भी तो है सब्र बहन बिरसे में पाया, हम हल्क पर लेते गे सितम दस्ते बल में, और तुम रंजे असीरी का सहोरा है खुदा में, इस राह में घर लुटने का कुछ

0: वक्ते सफर है, हम भी वही जाते हैं जहां तेरा पिसर है।
1: सामीन आप सुन रहे थे मरसिया, मरसिया खां थे जनाब सैयद फर्रुख हुसैन। अब चलते हैं शेर व शायरी की जानिब और बज़्म मौसीकी में पेश खिदमत है ये नाते पाक। आवाज़ है मास्टर नियाज़ कव्वाल और हमनवा की।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पहला गाना हमने लिया है फिल्म कोई आपसा से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी

0: के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
1: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीतों का कार्यक्रम। अगला गाना हमने लिया है यशुदास की आवाज में, फिल्म है टूटे खिलौने। कैफी आजमी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में यह गीत प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था बप्पी लहरी ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक। समीर अंजान के लिखे हुए गीत हैं और संगीतकार हैं अनु मलिक।

गीत गाता चल से। गायक कलाकार हैं हेमलता, जसपाल सिंह और चेतन। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

अभी आप सुन रहे थे मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इस फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म गीत

हेमलता, जसपाल सिंह और चेतन की आवाज़ में गीत गाता चल फिल्म का भी हम ये गीत सुन रहे थे। अगला गीत हमने लिया है फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीप से। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। अगला गाना हमने लिया है फिल्म ऐतराज से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म सड़क से। अगला गीत हमने लिया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म फागुन से। कमर जलालाबादी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

फिल्म फागुन के आशा भोसले एवं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप एवं डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। हमारी पहली सभा जारी है। अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत सुनिए भीमसेन जोशी से गायन।

अभियाप उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत भीमसेन जोशी से गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
2: जनकपुर जाने के लिए आए,
1: कभी खरीदारी भी करते हैं।
3: हिंदी वाला सामान किनना,
1: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
4: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
1: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
5: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
1: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: गाम घर संध्या 6:30 पर। भोर होते उठ जाओ किएक इजोतक पहल किरण संग फुलाय लगत फूल प्रकृति में घुराय लगत ऊर्जा आब वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो। उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: शबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की

0: अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर

0: क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
0: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
0: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या

0: मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
1: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
2: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते, आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
2: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन

0: 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में।
0: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: किजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
0: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
0: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
0: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी,
4: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
4: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
4: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
4: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ हाँ, बताइए।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति
4: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
0: अच्छा।
4: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
0: जी,
4: वो बहुत ही शानदार है।
0: अच्छा
4: जी।
0: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
1: साथियों,

0: अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
0: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार
2: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
0: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है नए जमाने के नए तराने। पहला गाना सुनिए सिमर कौर और नवी शरण की आवाज में। हरमनजीत के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अवि सारा ने। फिल्म है हीर एक्सप्रेस।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में। मनोज मुंतशिर के लिखे गीत को संगीत दिया है रोचक कोहली ने। इसलिए हमने फिल्म रेड 2 से

अगला गाना सुनवा रहे हैं फिल्म मेट्रो इन दिनों से, अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाज़ है। कैसर उल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम जारी है एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार।

0: एनपीएस संचय के साथ।
1: नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना हमने लिया है अरिजीत सिंह की आवाज में। सईद कादरी के लिखे बोल को संगीत दिया है मिथुन ने फिल्म गदर 2।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं नए जमाने के नए तराने। अगला गाना सुनिए जावेद अली की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि बसूर ने। फिल्म है भोला।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए फिल्म एनिमल में। अरिजीत सिंह को सिद्धार्थ गरिमा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है श्रेयस पुष्पांक ने।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाज में। मनोज मुंतशिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रॉक शाश्वत ने। फिल्म है मां।

नारी संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों का आपकी सहेली कीर्ति का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश, हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे देश और अभी की मौसम और मनोरंजन से भरा हुआ यह कार्यक्रम जो आप प्रतिदिन सुनती हैं लेकर उपस्थित है। और आइए सुनते हैं आज का दिन विशेष हमारे भारत में क्या था। तो जैसे कि हमारा देश 600 रियासतों में बटा हुआ था और किसी भी रियासत को चलाने के लिए कोई विधान, कानून और संविधान की आवश्यकता होती है। तो यह संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, किस लिए होती है, आज के दिन ही 15 जून 1975 को भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो सबसे पहले जानते हैं बहने, जो कि हम संविधान की आवश्यकता क्यों होती है किसी भी रियासत या देश को चलाने के लिए। तो किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह देश का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों जैसे कि बोलने और स्वतंत्रता का अधिकार की रक्षा करता है। इसके बिना देश में अराजकता और तानाशाही का खतरा बढ़ सकता है। संविधान किसी भी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसे हम अच्छी तरह से जानेंगे और जान रहे हैं। जैसा कि सरकार की शक्तियों का निर्धारण, संविधान यह स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे बनेगी और उसे कौन सा अधिकार प्राप्त है। यह सरकार को सीमित शक्तियों, निरंकुश होने से बचाता है। साथ ही यह देश के सभी नागरिकों को समानता, न्याय, स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यदि सरकार नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है तो नागरिक संविधान के माध्यम से न्याय की मांग हम नागरिक कर सकते हैं। और किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए भी संविधान बनाया जाता है। इसके लिए संविधान के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन किया जाता है। इससे कोई एक अंग अपनी सीमा से बाहर जाकर शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। साथ ही संविधान का एक और मुख्य बिंदु है बनाने का कि समाज में समन्वय स्थापित होता है। किसी भी देश में अलग अलग धर्म, संस्कृति, विचारधारा के लोग रहते हैं। हमारा भारत तो इसमें सबसे आगे है। यह सब धर्मों को लेकर के संप्रभुता में एकता का देश कहा गया है। संविधान उन मूलभूत नियमों और सिद्धांतों का दस्तावेज है जिस पर देश के सभी नागरिक सहमत होते हैं। इसे समाज में आपसी विश्वास और व्यवस्था बनी रहती है। तो हम सब और भी बातें करेंगे, संविधान के बारे में जानेंगे।

हमारे मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। तो आइए सुनते हैं इससे पहले एक हम प्यारा सा गीत फिल्म वीर सावरकर से, बोल है धरती का अभिमान, दिव्या कुमार की आवाज़ में।

0: क्या आप बार बार होने वाली छींकों और बंद नाक की समस्या को लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं? बिना इलाज के एलर्जी आगे चलकर ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक कुमार। एलर्जी सिर्फ छींक आने तक सीमित नहीं होती, अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह अस्थमा, साइनस की समस्या, कान में संक्रमण या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकता है। इसे डॉक्टर एलर्जिक मार्च कहते हैं। इसलिए एलर्जी का समय पर इलाज करना बेहद जरूरी है। धूल और धुएं जैसे ट्रिगर से बचें, लक्षणों को नजरअंदाज न करें। स्वस्थ सांस लेना ही सही देखभाल की शुरुआत होता है। एलर्जी का सही इलाज कराएं और आराम से सांस लें।
0: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी है वैसी पंचायत से, गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: कर्ज किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए, नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान। जी हाँ, अभी वीर सावरकर का यह गीत अभी आप सुन रहे थे दिव्या कुमार और विजय प्रकाश की आवाज़ में। श्रोता बहनों अब हम आते हैं अपने चर्चा पे, जो संविधान जिसके बारे में हम अभी जान रहे थे। तो भारत का संविधान कैसे बना, इसकी प्रक्रिया क्या थी, वो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। मशोदा समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। हस्तलिखित करने वाले कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, जिन्होंने संविधान को इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखा था। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने, जैसे कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल भी आप देख सकते हैं कि संविधान क्या है, क्योंकि बहुत समय हमारे पास नहीं होता है, आधे घंटे का समय इस कार्यक्रम में होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं कुछ विषयों में। तो आप भी, आपके हाथ में अब तो हर बहनों के हाथ में एंड्रॉयड है, तो क्यों ना आप अपनी विकास, मौलिक विकास, जो कि आप अपने संविधान, अपने देश, अपने अधिकारों के बारे में जान सके। देश कहते हैं देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति या प्रभु भक्ति, यह जो है हमारे सब जितने भी भारत में रहने वाले हैं अपने देश में, चाहे दूर दराज देश में भी, सबको अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और कर्तव्य, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मौलिक अधिकार होते हैं। उस अधिकारों को, उस अधिकार के अंतर्गत कानून होता है जो हमें हमारी रक्षा सुरक्षा करता है और हमें न्याय दिलवाता है। तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो विधानसभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से यह प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत का संविधान मूल आधार भारत सरकार अधिनियम को 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान में आखिर लिखा क्या है, ये हम जाने मूल बातें। भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले प्रभुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 जनवरी 1949 की ईस्वी मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है हमारा भारत का संविधान जो लिखा हुआ है मूल रूप से।

तो इसमें बहुत सारे समय आने पर सुधार भी किया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें विकृतियां आ जाती हैं समाज में, तो उस चीज़ को फिर देखा जाता है कि यह संविधान में यह जो नियम लागू किया गया यह गलत है, तो उस पर फिर संविधान सभा में सब बैठते हैं उस सभा के अंतर्गत, और इस चीज़ का निर्णय होता है, और अधिनियम बदलते हैं, एक्ट बदलता रहता है। तो यह सब चर्चाएँ हम लोग तो करेंगे और करते हैं। तो आज हम अपने भारत के जो हैं

0: बदलते रहते, अधिनियम बदलते हैं, एक्ट बदलता रहता है। तो यह सब चर्चाएं हम लोग तो करेंगे और करते हैं। तो आज हम अपने भारत के जो हैं हम लोग मौलिक अधिकार, हमारा जो नागरिक का मौलिक अधिकार है भारत में, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बहनों, हमारे मौलिक अधिकार भारत में बहुत सारे दिए गए हैं। ये सब जानेंगे, लेकिन सुनते ही इससे पहले यह प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है मणिकर्णिका फिल्म से, आवाज है शंकर महादेवन की।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

तुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी सी समस्या समझते हैं, लेकिन ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर डाल सकती है। नाक बंद रहने से नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है, जो काम या पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर ये समस्याएं बार बार हो रही है तो इसे आप नजरअंदाज न करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और इलाज कराएं।
2: Issued in public interest by Dr. Reddy's Laboratories. This information is not a substitute for medical advice. Please consult your doctor while prepared with care. Dr. Reddy's assumes no liability for its content.
0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: घर सामानी कौशल्या देवी घांग पंचायत गांव के तो बढ़ा रहे हैं कि गली नली बना रहा है, हमको गांव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सामान पा के बढ़िया लगा। गांव के फायदा तो है कि हमको गांव ने पानी गिरे के साधन नहीं था, उस सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
5: पुनः हम उपस्थित हैं अपने प्यारी बहनों के लिए कार्यक्रम नारी संसार में। तो हम चर्चा कर रहे थे बहनों के साथ संविधान के बारे में। तो अब संविधान के द्वारा देश में नागरिकों के हितों की रक्षा एवं उनका संवर्धन किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। तो बहनें, संविधान के बारे में बात हो चुकी, चूँकि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग के पास आधे घंटे का बस समय होता है, 30 मिनट का, इसमें कितनी सारी बातें कर लें। तो अब ज़्यादा जानकारी के लिए आप सबके हाथों में एंड्रॉयड है, तो आप संविधान और उसके मौलिक अधिकार जो भी हमारे नागरिक हैं वो आप जाकर देख सकती हैं, खुद भी स्वयं का भी विकास करें, खुद पर भी ध्यान दें, खुद का विकास, आपके परिवार का, समाज का, राष्ट्र का। यदि महिलाएं खुद में विकास करेंगी तो राष्ट्र का विकास, समाज का, परिवार का, सबका होगा। और शिक्षा जहां जितना जितनी बढ़ सके, जितने अपने मौलिक विकास आप बहने कर सके अपना, उससे बच्चे भी अनुशासन सीखते हैं अपने घर में। और शिक्षा ऐसी ज्योत है जो जैसे एक सुबह का एक सूरज का किरण जैसे रात के अंधेरे को भेद देता, वैसे ही शिक्षा जो है, शिक्षा रूपी जो किरण है, वह हमारे अंधकारमय समाज, राष्ट्र और राज्य जो भी है उसको साफ स्वच्छ बनाता है। हम महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारा राष्ट्र, समाज और परिवार सब शिक्षित होगा और अनुशासन में होगा। अब बात करते हैं, जैसा कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है अभी, ये गर्मी का आलम है, जो हम लोग रोड पे चलते हैं तो बेवजह अनावश्यक हम लोग नहीं जा पाते हैं, काम भी रहता तो भी नहीं जाते हैं, ठंडक आने का समय इंतजार करते हैं, शाम की बेला का इंतजार करते हैं या सुबह जो भी काम होता निपटाना हम लोग निपटाते हैं। तो गर्मी के दिनों में हम महिलाओं को, बच्चों, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वे आसानी से डिहाइड्रेशन या लू की चपेट में आ जाते हैं। उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हाइड्रेशन, पानी, दोपहर की धूप से बचाव और हल्के सूती कपड़े पहनना महत्वपूर्ण है। बच्चों को, खुद को और बुजुर्गों को संभालना है, तो पर्याप्त हाइड्रेशन शरीर में कैसे आए, तो इसके लिए लगातार पानी पिए, उन्हें हर थोड़ी देर में सादा पानी, नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ पिलाते रहें, जैसे कि ग्लूकॉन डी है वो भी पिला सकती हैं।

और आम पन्ना जैसे हम लोग बनाते हैं, बहुत लू जब लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि कच्चे आम को पका के उसको जूस जैसा बना करके उसके बाद देना है, आम पन्ना पिलाना है, उससे लू खत्म हो जाती है। पहले के ज़माने में बूढ़े बुजुर्ग क्या किया करते थे, आम को पका के दाल में इस तरह से डालते थे जैसा कि मैंने अपनी दादी को देखा है। तो हम लोग भी वही घरेलू उपचार, दादी माँ के नुस्खे होते हैं वो सब करने ज़रूरी होते हैं, और इसी तरह से बुज़ुर्ग और बच्चों का भी ख्याल रख सकते हैं, उसमें कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। दूसरा है जो प्यास का इंतज़ार ना करें। बुज़ुर्गों और बच्चों को कई बार प्यास का एहसास कम होता है, इसलिए उन्हें जबरन थोड़े थोड़े अंतराल पर तरल पदार्थ देते रहें, पानी पिलाते रहें, और एक एक घंटे पर उन्हें वार्न करें कि थोड़ा सा भी आप पानी पी लो, आधा ही गिलास ही लेकिन पी लो। कैफीन से बचे, चाय कॉफ़ी का अत्यधिक मीठे कोल्ड ड्रिंक्स देने से भी बचे, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी बढ़ाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमारे शरीर का जो पानी का कमी है वो कम हो गया, ये बिल्कुल ही गलत है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद हमारे गले की जो है ना, वो जो गर्मी होती वो थोड़ी देर के लिए तात्कालिक कम होता है, लेकिन वो पेट में जाके बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। बच्चों को मीठे कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल भी बचे। और इस तरह से आप, हम समझते हैं कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं तो सब ठंडे हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसकी जगह पे ग्लूकॉन डी डालें, आम पन्ना आम रस बना के पिलाएं बच्चों को, छाछ पिला सकती हैं, लस्सी दे सकती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग रुआबजा जो आता है वो भी आप पिला सकती हैं, किसी भी रूप में लिक्विड दें। बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स इस समय वो भी बंद करें, बाहर के कोई भी खाना, और अंदर घर के अंदर ही रहे चिलचिलाती धूप में। समय यानी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने से रोके। छाता या टोपी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यदि ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो उनके सिर पर टोपी या सूती गमछे उन्हें बांध दें, साथ में छाता अवश्य दें। ढीले और हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के सूती कॉटन कपड़े पहने ताकि शरीर में हवा लगती रहे और पसीना आसानी से सूख जाए। खान पान का भी हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, हल्का सा भोजन ले। जैसा कि आप लोग आजकल सुन रहे हैं, हमारे भी घर, मेरे भी घर में होता है, जो कि सब खाना कम खाना चाहते, बना हुआ खाना बासी हो जाता है, उसको फेंकना पड़ता है नेक्स्ट डे, तो ये सब तला भुना मसालेदार खाना पचाने में मुश्किल होता है इस गर्मी में। और जैसा कि पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हुआ करता था, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो गर्मी का जो वो डिग्री, मतलब वो कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, तो जैसे लग रहा है कि पृथ्वी नहीं आग का गोला बन रहा है। तो इसमें हम लोग एक दूसरे का नहीं ध्यान रखेंगे, ख्याल नहीं, खासकर महिलाएँ ही ध्यान रखती हैं, खुद का भी आपको ध्यान रखना है और अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों बच्चों का भी ख्याल रखना है। और चूँकि थोड़े से, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लापरवाह होते हैं, लेकिन लापरवाह ज़्यादातर हम महिलाएं उस पर ध्यान देने के लिए ही बनी हैं, बनी नहीं, अपने लिए भी ध्यान देने के लिए बनी है, उन लोग का भी ख्याल रखते हैं। इसके आप गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करें, जैसे तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और हरी सब्जियां, यह सब डाइट में शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, फ्रूट्स, ये सब जूस ये यूज़ करें। 2 रोटी और 1 चम्मच चावल, इससे ज़्यादा नहीं खाएं। और अपने शरीर में गर्मी जो हमारे अंदर है वो खाद्य पदार्थों से, जैसे वोमिट हो जाता है, गर्मी एसिडिटी ज़्यादा बन जाती है खाने के कारण, तो अन्न का कम सेवन करें अभी, कम से कम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, जैसे कुछ इस तरह का आपको लगे कि घर का तापमान सामान्य रखने के लिए कूलर एयर कंडीशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सीधे धूप रोकने के लिए दिन के समय खिड़कियां और दरवाजे पर पर्दे डालकर रखें ताकि धूप को हवा कम अंदर आ सके। तेज़ बुखार, अत्यधिक कमजोरी, उल्टी, चक्कर आना, त्वचा जैसे लाल हो जाना, लू के बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, इसको नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द किसी भी विशेषज्ञ से, डॉक्टर से, चिकित्सक से जाकर इसको बूढ़े या बुजुर्गों को दिखा दे। चलिए इसी के साथ, अब तो समय इशारा कर रहा है हम लोग को जाने के लिए, अब समय अवधि हमारी समाप्त हो चुकी है। तो आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगता है, आप पत्र के माध्यम से भी भेज सकती है। कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, 8460004 बिहार। तो इस पते पर आप अपने बहुत सारे खत हमें भेज सकती हैं, और क्या इस कार्यक्रम में सुधार लाना है और क्या क्या इसमें बोलना ज़रूरी है, देना ज़रूरी है, तो ये भी आप सुझाव भी भेज सकती हैं, आपको कार्यक्रम कैसा लगा। चलिए तो इसके साथ ही अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

महिला श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी संसार अभी आप सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में

0: शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर के बाद यानी दोपहर के 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत, आवाज होगी मोहम्मद रफी की। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 1:15 पर। दोपहर के 2 बजे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। इलाकाई खबरें आप सुन पाएंगे दोपहर 2:05 पर। रोजगार सूचना का प्रसारण करेंगे दोपहर 2:10 पर। दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा दोपहर 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। लोकगीतों का प्रसारण करेंगे दोपहर के 3 बजे। हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5 बजे सुनिएगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण मिथिला। चर्चा का विषय होगा आज समुद्री एवं शिपिंग क्षेत्र में करियर की संभावनाएं। संध्या 5:40 पर आप आनंद ले पाएंगे नए फिल्म संगीत का। संध्या 6 बजे सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। विद्यापति गीत का आनंद ले पाएंगे आप संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण करेंगे संध्या 6:25 पर। संध्या 6:30 पर सुनिएगा गांव घर के अंतर्गत जागरूक गांव। चर्चा का विषय होगा यातायात के नियम का पालन आवश्यक। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। कार्यक्रम खेती गृह से सुनिएगा संध्या 7 बजे। इसके अंतर्गत सुनिएगा भेंटवार्ता मिश्रित मत्स्य पालन। भेंटवार्ताकार होंगे मंगलानंद झा, भेंटकर्ता होंगे अनिल कुमार कर्ण, प्रस्तुति होगी असद दाऊद की। संध्या 7:30 पर हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण किया जाएगा। संध्या 7:52 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सिंगरहार यह कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 और रात्रि 9:15 पर उर्दू खबरों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। हम एक हैं भारत नेपाल मैत्री संबंध पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10:30 पर। आलेख एवं वाचन सज्जाद अहमद खान का और प्रस्तुति होगी असद दाऊद की। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार सुनेंगे।

अब कोई गुलशन न उजरे, अब वतन आज़ाद है। अभी आप देशभक्ति गीत का आनंद ले रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गाना सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है कुदरत।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना सुनिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में। संजय छैल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने। फिल्म है खूबसूरत।

फिल्म संगीत का आप आनंद ले रहे हैं। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा है। अगला गाना सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में, फिल्म है क्रांति। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने। फिल्म है लावारिस।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे गीत को सुनिए शैल चौधरी के संगीत निर्देशन में। आवाज है मुकेश की। फिल्म मधुमती।

ले रहे हैं। शैलेंद्र सिंह को सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में। फिल्म है बॉबी।

आकाशवाणी दरभंगा से आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। आनंद बख्शीकर के गीत को सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में। फिल्म है कर्ज, आवाज मोहम्मद रफी की।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म है कटी पतंग, संगीत आर डी बर्मन का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान हत्या दिवस हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। इधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया गया। भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के अवसर पर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय था, जब सत्ता के अहंकार में लोकतांत्रिक संस्थाओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा, संविधान के सम्मान और जनस्वर की शक्ति को सदैव सर्वोपरि रखना ही लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं आपातकाल विरोधी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि पटना स्थित उनका आवास 1975 में आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ था, जहां लोकतंत्र की बहाली को लेकर रणनीतियां बनाई जाती थीं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार था। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था और मीडिया की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई थी। श्री झा ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस आंदोलन के दौरान जेल में रहे थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में पिछले दिनों हुए कथित मुठभेड़ में भरत तिवारी नामक युवक की मौत के मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। श्री सिन्हा ने पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान शाहबाद के डीआईजी सत्य प्रकाश, जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक राज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के पास पुलिस ने जांच अभियान के दौरान 47 लीटर

0: विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों हुए दुष्कर्म की घटना के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी की याद दिलाता है, जब मुल्क में आइनी हकूक और जमहूरी कदरों को पामाल किया गया था। इस मौके पर मुल्क और रियासत में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इमरजेंसी आयन पर सीधा हमला था। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत की हिफाजत करने वाले सेनानियों को याद किया। इधर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पटना के ज्ञान भवन में मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर आला सम्राट चौधरी और मरकजी वजीर JP नड्डा शामिल हुए। इस दौरान 450 JP सेनानियों को एजाज़ से नवाजा गया। इधर BJP डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के मौके पर 6 जुलाई तक पूरी रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने संविधान हत्या दिवस पर इमरजेंसी की मुखालफत करने वाले सेनानियों को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख में इमरजेंसी एक सियाह बाब था, जब इक्तदार के नशे में जमहूरी इदारों, इजहार राय की आज़ादी और शहरी हकूक को संगीन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला ने कहा कि जमहूरियत की हिफाजत, आयन का वक़ार और आम लोगों की आवाज़ की ताकत को हमेशा सबसे ऊपर रखना ही जमहूरियत के सेनानियों के तईं खिराज अकीदत है। वहीं इमरजेंसी मुखालिफ तहरीक के सरफहरिस्त लीडरों में से एक सिक्किम के साबिक गवर्नर गंगा प्रसाद ने कहा कि पटना वाकई उनकी रहायशगाह 1975 में तहरीक का अहम मरकज था, जहां जमहूरियत की बहाली के लिए हिकमत अमली बनाई जाती थी। आकाशवाणी से बातचीत में जनाब प्रसाद ने कहा कि इमरजेंसी जमहूरियत और शहरियों के हकूक पर बड़ा हमला था। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान इजहार राय की आज़ादी पर काबू पाया गया और अपोजिशन के लीडरों और कारकुनों को जेल में बंद कर दिया गया। जनता दल यू के कौमी कारगुजार सदर संजय झा ने कहा कि 25 जून हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख में सबसे काला दिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए लगाई गई इमरजेंसी के दौरान अपोजिशन के लीडरों को जेल में बंद कर दिया गया था और मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। जनाब झा ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी मुखालिफ तहरीक की क्यादत की थी और साबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार भी उस तहरीक के दौरान जेल में रहे थे। भोजपुर ज़िले के शाहपुर थाना इलाके के तहत बिलौटी गांव में गुज़श्ता दिनों हुए मुबैना इनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के मामले की अदालती जांच शुरू कर दी गई है। पटना हाईकोर्ट के सुबुकदोष जज विनोद कुमार सिन्हा की सदारत में तश्कील कमीशन ने आज सुबह जाए वारदात का दौरा किया। जनाब सिन्हा ने मुतासरा ख़ानदान के लोगों और गाँव वालों से बात की। इस दौरान शाहबाद के DIG सत्य प्रकाश, ज़िला मजिस्ट्रेट तनय सुल्तानिया, पुलिस सुपरिटेंडेंट राज समेत दिगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। राजधानी पटना समेत रियासत के जनूब मगरिब और जनूब वस्त हिस्सों में शदीद गर्मी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक कई मकामात पर दर्ज हरारत 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ रियासत का सबसे गर्म मुकाम रहा, जहां का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशनगोई में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, पटना, नालंदा और गया समेत रियासत के जनूब मगरिब और जनूब वस्त हिस्सों में लू की हालत बनी रहेगी। वहीं महकमा ने रियासत के शुमाली हिस्सों में बेशतर मकामात पर तेज़ हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अररिया ज़िले के फुलकाहा थाना इलाके के तहत भारत नेपाल सरहद के पास पुलिस ने जांच मुहिम के दौरान 47 लीटर गैर मुल्की शराब के साथ दो स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय ज़िले के चकिया थाना इलाके के तहत गुज़श्ता दिनों हुए आबरू रेजी के मामले में पुलिस ने दो मजीद मुलजिम

0: को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी दरभंगा है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026, कुल पद 1829। आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2026। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। विशेष जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जा सकते हैं। JKSSB 2026, कुल पद 130। आवेदन आरंभ होने की तिथि 22/6/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 21/7/2026। आवेदक की उम्र सीमा 40 वर्ष अधिकतम। ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026, कुल पद 607। आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 3/7/2026। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। BSNL 2026, कुल पद 100। आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026। आवेदन की अंतिम तिथि 3/7/2026। न्यूनतम आयु सीमा 20 साल, अधिकतम 30 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब से कुछ ही देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, 1 वर्ष गया।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
2: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का

0: उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1200

90 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गाना सुनिए, किशोर कुमार की आवाज में जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है सागर।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना हमने लिया है सीमा फिल्म से, आवाज है मन्ना डे की। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए, फिल्म दिल दिया दर्द लिया से, आवाज है मोहम्मद रफी की। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नौशाद ने।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है।

अगला गाना सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म है सागर।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। अब सुनिए फिल्म लहू के दो रंग का गाना। आवाज है सुरेश वाडेकर, साधना सरगम और बेबी माइनी के। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सुनिए एसबी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में समीर के लिखे गीत को नदीम श्रवण के संगीत में, जिसे लिया हमने फिल्म साजन से।

आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं लोकगीत। लोकगीतों के कार्यक्रम में सुनिए अरविंद कुमार झा के गाए हुए कुछ गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पर पार्क बनवाया जो है, और उसके बाद

0: सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है भर्ती लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए। वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: मैं डॉक्टर देवराम यादव चिंडाई से बोल रहा हूँ। बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यह हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर बहुत असर डालती है। नाक बंद रहने की नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होता है, सिर दर्द होने और का पढ़ाई में ध्यान लगना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग को सही सांस लेने में पाने में चिड़चिड़ापन

0: महसूस होता है। अगर ये समस्या बार बार होती है तो इसे नजरअंदाज न करें, ये डॉक्टर से सलाह लें और समय पर सही इलाज कराएं।
1: Issued in public interest by Dr. Reddy's Laboratories. This information is not a substitute for medical advice. Please consult your doctor. While prepared with care, Dr. Reddy's assumes no liability for its content.
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है। दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
1: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत ग्यामा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

लोकगीत का आनंद आप आकाशवाणी दरभंगा से ले रहे थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के संग हम पुनः उपस्थित होंगे शाम 5:00। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। इस ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही हैं, फलानी चाची आ रही हैं, फलानी जगह की
1: भाभी वाला आया मेरे द्वारे ही होता है।
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी, पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली चाची, आगरा वाले ताऊजी।
0: कई बार तो भाभी और चाची कर वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही है, देखिए ना राजस्थान वाली आ रही, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फ़ोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मज़ा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊजी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी ब्याह में जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा,
0: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी टाइम पे नाश्ता चाहिए, वही दायरा उसी दायरे में सिमट कर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी वाली चाची, कौन सी वाली बुआ, तो उनको पता ही नहीं है कि फ़ोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है कि पढ़ाई पे विघ्न आता तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में शादी,
1: अगर कोई
0: है तो।
1: बहुत ज़रूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना देखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़िद करके बच्चों को ज़रूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहाँ उनके सहकर्मी हैं वो।
0: अच्छा, अब ज़रा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्यौहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है? हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है पुरानी बातें ताज़ा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पर जो ठहाके

0: लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में नहीं आंगन तक बरामदे तक गूंजते हैं,
1: बिल्कुल बहुत
0: उसकी
1: सारी
0: बात अलग
1: छेड़छाड़
0: होती
1: होती
0: है।
1: है। और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको, कितने
0: बड़ा हो
1: बड़े हो
0: गया,
1: गए हो।
0: बड़ा हो गया हमारा बेटा,
1: जी
0: बड़ी हो गई हमारी बिटिया, तो ये सब होता है। और समय का अंतराल कई बार कुछ चीज़ों को विस्मृत कर देता है, जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताज़ा हो
1: कई बार
0: जाती
1: कुछ
0: हैं।
1: कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष
0: ज़्यादा अमीर हो
1: छेड़छाड़।
0: गई हो, ये भी
1: हाँ
0: होता है। अब ज़्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं,
1: जी
0: एक गाना सुनवाते हैं।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं और फिर शादी बीत जाती है, लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं, कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती हैं जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
5: अब इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोबल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके में लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
2: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था, हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे, मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गईं, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई, बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर, कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है और रात को जो महलूल होता है, अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
5: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादियां पधारें। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है।
2: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान है, दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए, ठीक है उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत ना करें।
5: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष होते हैं शामिल होते हैं,

0: तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहां हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे। रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी। वहाँ पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी। 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी। अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना। मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही हैं, पर वे मुस्कुरा कर रह गईं और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहाँ से खिसक गए। आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं। वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं।
0: हाँ।
1: कि हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू ने दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया। मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
0: इस तरह की शिकायतें भी होती है कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहाँ कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहाँ कुछ दिक्कत हुई हो। जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना
1: है। पर रिश्तेदार जो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्म व रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
0: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है।
1: अमूमन ऐसा होता है।
0: चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन ले।
1: सुनते

0: भाई ममता जी शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है। सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी, तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठकर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना, और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताजा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद भी होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थाप पर बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल रिश्तों को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोह में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
1: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं। मैं परिवार में छोटी हूँ, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी जमाना है। अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है, आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दीजिए, उसके जवाब में लिखा है अभी भी

ये टिप्पणी आई है, 6 मिनट पहले इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मज़ेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई

0: सखी सहेली की मौसम की बात हुई और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मज़े किए, डांस किया, बाद में फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
1: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफ़ी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं, जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहाँ जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से, इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज़्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
0: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
1: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे
0: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं। हाँ। मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं ताकि वो जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
1: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80-90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर जो भी वस्तुएँ हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुँचाया जाता है।
0: बिल्कुल। और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। 3-3, 4-4 दिन, कई बार महीनों तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
1: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और उद्योग समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
0: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: ये था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम, जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चिड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है, चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अरे बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अभी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। तो घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं, तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार।
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, और कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नुचकारती है फिर चूड़ी, फेंटा नुचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देखता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो जो देखता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
0: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तुमन्ना तेरे घर के सामने।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं मैम, दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी जी।
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी, और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी।
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर लें और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है।
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दोस्तों को, श्रोताओं को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं सुनने, बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
1: जी।
0: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर असलम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम जिम बरसता ये बाहर पानी अंदर ये आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार, अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया मैम।
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, दो चार दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम।
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने से?
1: जी मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीने वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रात से ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा आपको टाइम मिल जाता था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता था, फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है, ना प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
1: जी मैम उसमें मेहनत काम ज्यादा पड़ता है,
0: और उसमें से भी आप समय निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात।
1: नहीं वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा, जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले।
0: अच्छी बात है,
1: सभी लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
0: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हेमराज जी का गाया गाना है भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो
1: मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में। हाँ। राम बाबू जी,
1: अपने ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है, जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही।
0: बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है मन चाहेगी।
0: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पीले पीले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पीले पीले आएगी चुस्ती मड़ेगी सुस्ती, एक्ट प्याली पीले भाई पीले पीले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पीले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन दे भाई सुन दे लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
0: क्या बात है,
1: अंतरा सुनाया।
0: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलते ने, सब सियाने मिलते ने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलते ने चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलते ने ते कमला कोई कोई।
0: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवियों तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम मालिनी दीदी, चारों सपन चार है। नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मक्का उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है, और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता दिया है।
1: मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यू ही लंबे बाल रखा करता, बोला कि चागन था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम था, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के लिए दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी।
0: हाँ।
1: लड़के की भेंट रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती है ना, और अब कैसा लगता है।

0: आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा
1: जी
0: कुमारी
1: जी
0: नहीं
1: बिल्कुल,
0: है।
1: आप सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछें सब हो गई हैं तो लोग आप जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है। और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की ये दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। गीत बोल है, पायले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मंदाग्नि जी बोल रही है?
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी, गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला ही राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार।
1: और शायद मैंने दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे

0: दीवाने हैं आकाशवाणी के रेडियो के और हमारे श्रोताओं की वजह से ही। तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी।
0: बताइए गजराज जी, आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी।
0: अच्छा, आप हाँ। करते हैं?
1: जी।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया,
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है विविध भारती। तो
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी जी जी।
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना।
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी, पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें।

0: कॉस्मेटिक्स वगैरह।
1: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए, या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
0: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
1: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
0: बहुत बढ़िया जी।
1: तो बताइए गाना कौन सा सुनेंगे?
0: फिल्म कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते रफी साहब की आवाज।
1: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
0: जी जी,
1: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
0: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने के दो राय है ही नहीं इसमें।
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए
1: जी। मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, क्या नमस्कार आपको।
0: सुनते हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी। मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम।

0: भारती
1: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम उनके
0: की।
1: कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे
0: हाँ जी
1: दादा की ये
0: हाँ
1: बिजनेस
0: जी
1: था और उनको बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण की हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
0: उन्होंने कहा था ना चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों, तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
0: जी मैडम जी, देखिए आप जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी में लाइक भी करता हूँ। तो
1: हमारे
0: 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
1: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
0: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
1: दी हवा,
0: हवा
1: थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
0: और आग जल पड़ी।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: करते हो, तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
0: जी मैडम जी, देखिए आप जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी में लाइक भी करता हूँ। तो आपने 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
1: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
0: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
1: दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
0: और आग जल पड़ी।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवाणी को लेकर के। अभी से लेकर के शाम के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों इस कार्यक्रम में, और अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में कुछ लोकगीत, और साथ ही साथ आपसे हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा का हमारा विषय होगा समुद्री एवं शिपिंग क्षेत्र में कैरियर की संभावनाएं, इस विषय को लेकर के।

0: क्या आप बार बार होने वाली छींकों और बंद नाक की समस्या को लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं? बिना इलाज के एलर्जी आगे चलकर ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक कुमार। एलर्जी सिर्फ छींक आने तक सीमित नहीं होती, अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह अस्थमा, साइनस की समस्या, कान में संक्रमण या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकता है। इसे डॉक्टर एलर्जिक मार्च कहते हैं। इसलिए एलर्जी का समय पर इलाज करना बेहद जरूरी है। धूल और धुएं जैसे ट्रिगर से बचें, लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। स्वस्थ सांस लेना ही सही देखभाल की शुरुआत होता है। एलर्जी का सही इलाज कराएं और आराम से सांस लें।
0: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर व्हाइल प्रिपेयर्ड विद केयर। डॉक्टर रेड्डीज अज्यूम्स नो लायबिलिटी फॉर इट्स कंटेंट।

अभी आप सुन रहे थे नीलम झा एवं सहेली के स्वर में ये लोकगीत, और अभी आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं युवानी कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति नीलम झा एवं सहेली के स्वर में सुनिए ये लोकगीत।

जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये गीत पसंद आए होंगे। और देखिए ना, जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में ही हमने आपसे चर्चा की थी कि इस कार्यक्रम में आज आपसे हम बातचीत करेंगे, विषय हमारा होगा समुद्री एवं शिपिंग क्षेत्र में करियर की संभावनाएं। जी हाँ दोस्तों, समुद्री क्षेत्र एक विशाल और तेजी से विकसित होने वाला आर्थिक इंजन है जो भारत को वैश्विक स्तर पर बेहतरीन करियर के अवसर प्रदान करता है। इसमें उच्च वेतन वाली समुद्री यात्रा नौकरियों से लेकर बंदरगाह प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स तक के रोमांचक विकल्प मौजूद होते हैं। समुद्री क्षेत्र में करियर के प्रमुख अवसर और विकल्प इस प्रकार हैं, जैसे कि जहाजों पर। इस क्षेत्र में अपने उच्च वेतन और रोमांचक कार्य वातावरण के लिए जाना जाता है। इसमें आप विभिन्न विभागों में काम कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें डेक डिपार्टमेंट। इसमें कैप्टन, चीफ मेट और डेक ऑफिसर्स शामिल होते हैं जो जहाज के नेविगेशन और संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं। इंजन डिपार्टमेंट, मुख्य अभियंता और मरीन इंजीनियर जहाज की सभी आंतरिक मशीनरी और प्रणालियों का प्रबंधन करते हैं। हॉस्पिटैलिटी, क्रूज जहाजों पर हॉस्पिटैलिटी मैनेजर सेप और क्रू सदस्यों के लिए भी ढेर सारे अवसर होते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा तट पर या बंदरगाह आधारित। यदि आप समुद्र में लंबा समय नहीं बिताना चाहते हैं तो तट पर भी आकर्षक नौकरियां उपलब्ध होते हैं, जैसे कि बंदरगाह संचालन। इसमें हार्बर मास्टर, टर्मिनल ऑपरेटर और पोर्ट मैनेजर के पद शामिल हैं जो कार्गो और जहाजों के सुरक्षित संचालन का प्रबंधन करते हैं। शिपिंग और लॉजिस्टिक, माल ढुलाई के लिए फ्रेट फॉरवर्ड और जहाज मालिकों व व्यापारियों के बीच मध्यस्थता करने वाले शिप ब्रोकर की काफी मांग है। समुद्री जीव विज्ञान, समुद्र के जीवों, मूंगा, चट्टानों और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन। महासागर इंजीनियरिंग, अपतटीय

अपतटीय पवन ऊर्जा और पानी के भीतर चलने वाले वाहनों का डिजाइन, कोर्स और प्रवेश मार्ग। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आप विभिन्न मरीन इंजीनियरिंग या नॉन टेक्निकल साइंस से जुड़े कोर्स कर सकते हैं। भारत में सागरमाला प्रोजेक्ट जैसी पहलों के कारण इस उद्योग में काफी उछाल आया है। यदि हम चाहें तो इस क्षेत्र में भी कदम रख सकते हैं, और जैसा कि हमारी शैक्षणिक भूमिका भी इसमें अहम बात होती है कि हम किस हमारी शैक्षणिक भूमिका क्या है, अर्थात हम किस पृष्ठभूमि से आते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम पीसीएम कोर्स किए हैं, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से हैं, सॉरी श्रोताओं क्षमा करेंगे, यदि हम पीसीएम ग्रुप से हैं या फिर कॉमर्स या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र से भी इसमें आ सकते हैं इत्यादि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समुद्री क्षेत्र में भी हमारी करियर की अपार संभावनाएं हैं, और आवश्यकता इस बात की है कि हम उसमें अपना यदि दिलचस्पी रखते हैं तो उसके लिए जो अनिवार्य कोर्स हैं उन कोर्स के तहत हम अपना नामांकन दाखिला करा लें और फिर उसमें प्रवेश पावें और फिर आगे उसमें बढ़ें। अस्तु, कार्यक्रम में पुनः फिर आपसे बातचीत होगी, तब तक आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत। कलाकार हैं लक्ष्मी कुमारी एवं सहेली।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने

0: एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अब सुनिए सुषमा कुमारी के स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए कुछ नए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अखंड का यह गीत सपना पाठक की आवाज में। बोल हैं किसान पालीवाल के और संगीत निर्देशन थॉमन एस का है।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: अब सुनिए फिल्म देवा का यह गीत, मीका सिंह, विशाल मिश्र एवं ज्योतिका तांगरी की आवाज में, बोल हैं राजशेखर के और संगीत निर्देशन विशाल मिश्र का है।

अब सुनिए फिल्म गदर 2 का यह गीत विशाल मिश्र, नीति मोहन, शाहिल अख्तर, शहनाज अख्तर की आवाज में। गीतकार हैं सईद कादरी और संगीत निर्देशन मिथुन।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बंदूक और गुलाब का यह गीत, तान दीवान एवं राजा सिन्हा की आवाज़ में, बोल हैं दिलीप वर्मन के और संगीत निर्देशन शशि कुमार एस का है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म बंदूक और गुलाब का यह गीत। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा

सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक है। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हॉर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। गांव घर संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे और खेती गृहस्थी का समय होगा 7:00। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे 7:52 पर। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। रात्रि 9:30 पर सुनेंगे आप फिल्म संगीत। सुगम संगीत का समय होगा रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्री संबंध पर आधारित कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल अर्थात शुक्रवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कृषि चर्चा 5:55 पर प्रसारित किए जाएंगे और 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनते हैं प्रतिदिन 6:10 पर। रामचरित मानस गान 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम 7:05 पर प्रसारित किए जाएंगे। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त होगा दिन के 9:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शास्त्रीय संगीत का समय होगा दिन में 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30 आप सुनेंगे 11:30 पर। दोपहर 12:00 आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। नारी संसार कार्यक्रम 12:30 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा देशभक्ति गीत आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। रोजगार सूचना आप सुनते हैं दोपहर 2:10 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। 5:40 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। हफ्तावार जायजा 6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा विद्यापति गीत संध्या 6:15 पर प्रसारित किए जाएंगे। मैथिली संवाद आप सुनेंगे 6:25 पर संध्या में। गाम घर कार्यक्रम संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे और खेती गृहस्थी आप सुनते हैं संध्या 7:07। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे 7:52 पर शाम के समय। मैथिली कार्यक्रम सिंहरहारा आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे शब्द शिल्प, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। और रात्रि 10:00 सुनिए हेलो आकाशवाणी। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं समवेत स्वर में ये विद्यापति गीत।

अभी आप विद्यापति गीत सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में है।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। आई संविधान हत्या दिवस मनाओल गेल। आजुक दिन 1975 के लगाओल गेल आपातकालक स्मरण दियाबैत अछि, जखन देश मे संवैधानिक अधिकार आ लोकतांत्रिक मूल्य पर गंभीर असर पड़ल छल। एहि अवसर पर देश आ राज्य मे कतेको कार्यक्रमक आयोजन भेल। राज्य भाजपाक दिस सँ पटनाक ज्ञान भवन मे आयोजित कार्यक्रम मे केन्द्रीय स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सम्मिलित भेलाह। एहि दरमियान आपातकालक विरुद्ध लड़ाई लड़ वाला 450 जेपी सेनानी सब के सम्मानित कयल गेल। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के तैलचित्र पर फूल अर्पित कऽ श्रद्धांजलि देलनि। सभा के संबोधित करैत श्री नड्डा कहलनि जे आपातकालक दरमियान ओहि काल के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंग्रेजक जमानाक बनाओल मीसा कानूनक अंतर्गत बिना कोनो कारणे आ बिना कोनो अदालती जांच के 131,000 लोक सब के जेल मे बंद कऽ देने छली। केंद्रीय मंत्री आपातकालक समय पटना सँ आरंभ भेल जन आंदोलन के स्मरण करैत कहलनि जे ओ स्वयं सेहो एहि संघर्षक गवाह रहल छथि। ओ कहलनि जे लोकतंत्रक हत्याक विरुद्ध लड़ाईक बीज बिहारक माटि पर पड़ल छल आ एतहि सँ पूरा देश मे आंदोलन प्रारंभ भेल छल। श्री नड्डा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांतिक नारा आ पटनाक ऐतिहासिक गांधी मैदान मे भेल भारी रैलीक चर्चा करैत कहलनि जे ई आंदोलन लोकतंत्र के वापस अनबाक लड़ाई के एकटा नव बल देलक आ ओहि समयक सरकारक जड़ि हिलाकऽ राखि देने छल। केंद्रीय मंत्री जनौलनि जे आपातकालक दरमियान प्रेसक आजादी आ संविधानक सभ मूल्यक गला

0: आ घोंटि देल गेल छल। ओ कहलनि जे लोकतंत्रक यह सीख अछि जे जनता संविधान आ प्रजातंत्रक गला घोटय वाला के समय अयला पर मजबूती सँ उत्तर दैत अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संविधान हत्या दिवस पर आपातकालक विरोध करय वाला लोकतंत्र सेनानी सभक नमन कयलनि। सोशल मीडिया पर अपन संदेश मे ओ कहलनि जे भारतीय लोकतंत्रक इतिहास मे आपातकाल एकटा कारी पन्ना छल जखन सत्ताक अहंकार मे लोकतांत्रिक संस्था अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता आ नागरिक अधिकार के गंभीर चुनौतीक सामना करय पड़ल छल। मुख्यमंत्री कहलनि जे लोकतंत्रक रक्षा संविधानक आदर आ जनताक आवाजक ताकत के सदिखन सँ सबसँ ऊपर राखब लोकतंत्र सेनानी सभक असली श्रद्धांजलि थी। जदयूक कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कहलनि जे 25 जून भारतीय लोकतंत्रक इतिहासक सबसँ कारी दिन थिक। ओ जनौलनि जे कांग्रेस द्वारा लगाओल गेल आपातकालक दरमियान विपक्षी नेता सभ के जेल में भरि देल गेल छल आ मीडियाक स्वतंत्रता पर सेहो रोक लगा देल गेल छल। श्री झा पटना एयरपोर्ट पर पत्रकार सभसँ जनौलनि जे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो ओहि आंदोलनक दरमियान जेल में रहल छलाह। भोजपुर जिलाक शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गाम मे पछिला दिन भेल कथित मुठभेड़ मे भरत तिवारीक मृत्युक मामिलाक न्यायिक जांच शुरू कऽ देल गेल अछि। पटना उच्च न्यायालयक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हाक अध्यक्षता मे गठित आयोग आइ घटनाक स्थलक दौरा कयलक। श्री सिन्हा पीड़ित परिजन आ ग्रामीण सभ सँ गपशप कयलनि। एहि दरमियान शाहबादक डीआईजी सत्यप्रकाश, जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक राज सहित आन वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित छलाह। राजधानी पटना सहित राज्यक दक्षिण पश्चिम आ दक्षिण मध्य भाग मे प्रचंड गर्मी सँ जनजीवन प्रभावित अछि। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक जे अगिला 48 घंटाक दरमियान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा आ गया सहित राज्यक दक्षिण पश्चिम आ दक्षिण मध्य भाग मे लू के स्थिति बनल रहत। ओतहि विभाग राज्यक उत्तरी भाग मे अधिकांश स्थान पर तेज हवाक संग बरखाक अलर्ट जारी कयने अछि। बेगूसराय जिलाक चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पछिला दिन भेल दुष्कर्मक घटना मे पुलिस दू आओर आरोपी के गिरफ्तार कयलक अछि। एहि मामिला मे एखन धरि 5 गोटेक गिरफ्तारी भेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घर सुनय वाला सब स्नेही श्रोता लोकन के सत्तुक भाई दिस से नमस्कार। संगे अनिल भाई अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार सत्तु भाई। आज बृहस्पति दिन है, आगुक दिन हम सब गाम घरक दलान पर सुने छी कार्यक्रम जागरूक गाम। तो आई जागरूक गाम में हम सब गप करब विशेष क जागरूकता संबंध में। चलब जीवन है, रुक गेनाई जीवन के समाप्ति। तो जाधर हम अहा जीवे छी ताधर तो चलते रही
0: चाहिए।
1: एक ठाम से दोसर ठाम जाय छी, पैरे जाय छी, साइकिल से जाय छी, ईंधन चालित वाहन से जाय छी। तो एक ठाम से दोसर ठाम जेबाक लेल किछ सतर्की अछि, किछ खास गप अछि, ओहि पर ध्यान राखब आवश्यक अछि। संगे कहल गेल अछि जे सतर्कता गेल आ दुर्घटना भेल।
0: छै अनिल भाई, यातायात जे अछि ओकर नियम के पालन नहि करब केवल कानूनी बाध्यता अछि, बल्कि अहाँ के अन्य सड़क पर जे जाय वाला आदमी छथि उनको जीवन रक्षा

0: के लेल अत्यंत आवश्यक अछि। नियम के अनदेखी केला सँ गंभीर दुर्घटना जान माल के नुकसान सेहो भ सकैत अछि, कियाकि हमरा लोकनि देखै छी जे हाईवे रहैत अछि ओहिमे गति सीमा के ध्यान राखि कऽ हमरा लोकनि के चलेबा के चाही, संगे अनुशासन के पालन करब आवश्यक भ जाइत अछि। रोड पर अहाँ देखबै जे बहुतो ठूम तीर के निशान लागल रहैत अछि, एहि रोड सँ ओहि रोड मे जाय के लेल अलग निशान लागल रहैत अछि, संगे पीला बत्ती लागल रहैत अछि, लाल बत्ती लागल रहैत अछि। तऽ ई सब हमरा लोकनि के बतबैत अछि जे केना रोड पर हमरा लोकनि के गाड़ी चलेबा के चाही, जाहिसँ हादसा आ जोखिम कम कयल जा सकय।
1: जीवन के सुरक्षा आ दुर्घटना से बचाव के लेल संगे कानूनी अनुपालन के लेल ई बड बेसी आवश्यक
0: छै।
1: नियम के पालन कयला सँ सड़क पर यातायात सुगम व्यवस्था बनल रहैए, संगे जान माल के जे खतरा अछि ओकरो रोकल जाइए। तो प्रश्न ई उठैए जे नियम के पालन करब किएक महत्वपूर्ण अछि। पहिल गप जीवन के सुरक्षा, सड़क पर छोट सन जे लापरवाही अछि अपने के जान लेवा भ सकै, जेना चरपहिया वाहन चला रहल छी सीट बेल्ट नै लगेने, दुपहिया वाहन चला रहल छी हेलमेट नै पहिरने छी, तऽ एकरा पहिरऽ से दुर्घटनाक स्थिति मे शरीर आ शरीर माथ पर आ शरीर पर गंभीर चोट के खतरा कम भ जाइए, दुर्घटना में कमी हुई है। नियमित गति सीमा के पालन केला से वाहन चलेबा काल के समय कखनो कोनो व्यक्ति मोबाइल फोनक व्यवस्था व इस्तेमाल नहीं करू,
0: संगे शराब पी कर गाड़ी कखनो नहीं चलेबा के चाही। नशा फोन जे अछि ओ कऽ कऽ हमरा लोकनि जखन गाड़ी चलबै छी तऽ अपना गतिसँ ज्यादा तेजमे चलबै छी, जाहिसँ दोसरो असुरक्षित भऽ जाइ छथि अपनो भऽ जाइ छै।
1: ओना सतो भाई कैदी जे अपन सभक प्रान्तमे ई गप एकदम निषेध अछि, कानूनी रूपसँ प्रतिबंधित अछि, एकर उल्लंघन केला पर दंड के भागी बनि सकै छी। प्रायः सब दिनक घटना सुनै छी जे एहन व्यक्ति पकड़ल गेला, हुनका जुर्माना कयल गेल वा कारावास भेल।
0: सुगम यातायात, सही तरीका से गाड़ी चलेबा के चाही, जेनाकि ट्रैफिक सिग्नल के पालन करबा के चाही, एहिसँ गाड़ी के जाम नहीं लागत अछि आ यात्री समय से अपना घर चल जाए छै।
1: ते गप करब सतो भाई, बहुत गप पूरा रहल है यहाँ के, ते कनी काल छोट सन विराम फिर गप।
2: क्या आप लगातार छींकों, बंद नाक या एलर्जी की समस्या से परेशान हैं? तो शहर के मशहूर डॉक्टर से सुनिए एक्सपर्ट एडवाइस।
3: मैं डॉक्टर देवराम यादव जिंदाई से बोल रहा हूँ। बहुत से लोग एलर्जी को एक छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन यह हमारी रोजमर्रा जिंदगी बहुत असर डालती है। नाक बंद रहने की नींद प्रभावित होती है, थकान महसूस होता है, सिर दर्द होने और पढ़ाई में ध्यान लगना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग को सही सांस लेने में पाने में चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अगर ये समस्या बार बार होती है तो इसे नज़रअंदाज न करें, ये डॉक्टर से सलाह लें और समय पर सही इलाज कराएं।
2: Issued in public interest by Dr. Reddy's Laboratories. This information is not a substitute for medical advice. Please consult your doctor. While prepared with care, Dr. Reddy's assumes no liability for its content.
4: Desh ke number ek cement, Ultratech ki anokhi pehel. Ultratech yashasvi mukhiya. Pradesh bhar se 20 mukhiyaon ko unke utkrisht vikas karyon ke liye rajya star par kiya gaya sammanit Hindustan ke sahyog se. Mohanpur panchayat se Om Rani Devi bani hai yashasvi mukhiya.
5: Mera naam hai Rani Devi. मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गांव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गांव है सरैया, मनपुर पंचायत है। एक काम है उनकी वही गली नली है, वो पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे हैं। अल्ट्राटेक मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
4: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
6: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
7: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
6: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास

0: कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है। किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: हाँ अनिल भाई, हमरा लोकन गप करै छलौं यातायात के नियम के पालन कना करबाक चाही, संगे एहिसँ पहिने विज्ञापन सुनै छलौं हैं तऽ गप करी तऽ देखू, जाहि राजमार्ग पर अहाँ के हरा पीला लाल बत्ती लागल रहैत अछि तऽ ओहि के देख कऽ चलेबाक चाही। लाल बत्ती के निशान होइत अछि जे रुकि जाय, पीला के धीरे धीरे जाय आ हरा जखन भऽ जाय तखन गाड़ी निकालबाक चाही। भारत सरकार के सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी कयल गेल नियम के अनुसार हरेक वाहन चलबय वाला के गति सीमा के पालन केनाई आवश्यक भऽ जाइत अछि। एहि के लेल दिशा निर्देश देल जाइत अछि, ओवरटेक गाड़ी के कखनो नहि करबाक चाही। ई नियम के उल्लंघन करय पर भारी जुर्माना संगे कानूनी कार्रवाई सेहो भऽ सकैत अछि। हरदम दाया से बायां ओवरटेक नहीं करवा के चाहिए, गलत तरीका से वाहन कखनो नहीं चलेबा के चाहिए। संगे अहाँ कहबे के लिए जो मोबाइल पर कखनो गप करे तो गाड़ी नहीं चलेगा।
3: देखियो, एक टा लोग के माने सामान्य रूप से देखे छी व्यवहार में, खासकर नव धियापुता के जे ओवरटेक के बीमारी छे कि हम हुनका से आगू चल जाए। अहाँ एक टा गप के ध्यान राखब, जे कतबो आगू चल जेबे तो अहाँ के आगू क्यों न क्यों तो गाड़ी वाला हेबे
2: करते। सही है।
3: तो एक टा अनुभवी व्यक्ति कहने छे जे खूब तेज चलो वाला जे वाहन चलबे छे आ जे एक टा सामान्य रूप से चले छे, तो दुनू व्यक्ति के जे गंतव्य स्थान पर पहुंचा के समय हो गया मात्र 5 से 6 मिनट के अंतर हो गया। जे सामान्य गति से चले छे ओ यात्रा के आनंद ले छे, और जे द्रुत गति से चले छे तेजी से चलबे छे ओ हरेक क्षण जीवे छे हरेक क्षण मरे छे। तो जीवन बड़ अनमोल है कहल गेल अछि एहि मनुख के जीवन के संदर्भ में। जे भाग्यवान लोक होइ छै जे मनुष्य शरीर मिलैए, पता नहीं हमर अहाँ के केहन कर्म है जे भगवान अगला बेर रेन्यूअल करता कि नहीं करता, मुदा जे भेटल है ओकरा बचा कर राखी, सुरक्षित राखी, जे नियम बनल है ओहि नियम के पालन करी। तो हम सब गप सब करब, देखियो कोनो काज संग भऽ कर लोग करै छै, आ खास कर महिला लोकन के स्वभाव होइ छै जे असगर नहीं संगे चलो ने, तो एहने सन भाव ल क कलाकार गीत सुना रहल छै। कलाकार छै पूनम कुमारी, तो सुनी इस सुंदर संगीत।
2: सुनल जाय।

0: खूब सुंदर। अखन जे हम सब गीत सुन रहल छलहुँ, गीतक कलाकार पूनम कुमारी, जेहने स्वर आ तेहने गीत आब सतोबाई बेज भऽ चलल अइ प्रायोजित कार्यक्रमके। सुनी हम सब प्रायोजित कार्यक्रम
1: आयुष्मान,
0: सुनल जा
1: सुनल जा।
2: करा रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

हेलो बिहार वालों, अरे हमने हेलो कह दिया, आपका राजेश आपको हेलो कह दिया, लेकिन नहीं, हम कहेंगे सब लोगों को नमस्कार है राजेश की तरफ से। और राजेश एक बार फिर से स्वास्थ्य पत्रिका, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका कहें तो अच्छा होगा, आयुष्मान लेकर आप सबों के घर आंगन में आ गया। जी हाँ, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हम यही चाहते हैं। हम बोले तो इस कार्यक्रम को हम जिनकी तरफ से लेकर आ रहे हैं, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर रोहतास सासाराम की तरफ से। हाँ, ये इच्छा है कि सारे लोग, हाँ कोई भी बीमारी आपको तो हो ही नहीं, अगर हो जाए तो उससे निजात मिल जाए। लगातार आपके घर आंगन में आते हैं, विशेषज्ञों से मुलाकात करवाते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं और आपके जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, स्त्री हों, पुरुष हों, कोई भी हो, हाँ सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे,

जब पूरा बिहार पूरा झारखंड इसे सुनता है ना, और जब फोन करता है हमें इस नंबर पर 6206803040, हमने कहा 6206803040, तब हमें एहसास होता है कि ये पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान कितना कारगर साबित हो रहा है। आयुष्मान ये एक बहुत ही उम्दा नाम है, आयुष्मान भव मतलब आप अच्छे से रहें, आपकी कीर्ति दुनिया में फैले, और इसी से संबंधित, इसी से नाम से संबंधित देश में स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है आयुष्मान कार्ड, जिस पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है और नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी होता है। हम इस बात की जानकारी हम दे रहे हैं। एक बात हम कहना चाहते हैं, लगातार हम डॉक्टर रजत कालरा को बुलाते हैं, आपको भी ऐसा लगता होगा कि आफ्टर ऑल राजेश केवल डॉक्टर रजत कालरा से ज्यादा बातचीत क्यों करवाता है। डॉक्टर रजत कालरा चाइल्ड कार्डियक सर्जन हैं, बच्चों

0: नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी होता है, हम इस बात की जानकारी हम दे रहे हैं। एक बात हम कहना चाहते हैं, लगातार हम डॉक्टर रजत कालरा को बुलाते हैं, आपको भी ऐसा लगता होगा कि आफ्टरऑल राजेश केवल डॉक्टर रजत कालरा से ज्यादा बातचीत क्यों करवाता है। डॉक्टर रजत कालरा चाइल्ड कार्डियक सर्जन है, बच्चों के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और किसी भी घर हाँ की जान जो होती है ना वो बच्चे होते हैं। उस माता पिता से पूछिए जिनके गोद में किलकारी लेता हुआ बच्चा हंसता मुस्कुराता है, कितना अच्छा लगता होगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को कहीं कोई बीमारी हो जाए हृदय से संबंधित, तो इससे बुरा कुछ भी उसके जीवन में नहीं हो सकता है ना। इसीलिए हम डॉक्टर रजत कालरा को हमेशा बुलाते हैं और आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं कि अगर बच्चों में, आपके बच्चे में दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई रोग है, ये लक्षण दिख रहे हैं, ऐसा बच्चा बिहेव कर रहा है, बच्चा नीला पड़ रहा है, हृदय में छेद है, हाँ, तो परेशान ना हो, उसका इलाज भी आ गया है। और डॉक्टर रजत कालरा इस क्षेत्र के महारथी डॉक्टर हैं और नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर रोहतास में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज भी हमारे साथ हैं डॉक्टर रजत कालरा। अब इनसे हम जानकारियां इनके क्यों पूछें, हाँ सीधे सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। और अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है, जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
0: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
1: देखिए जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर से भी पेशेंट आ रहे हैं।
0: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं, नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
1: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है। लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने

0: नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, आईसीयूज में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर आईसीयूज है, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों का इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है, ऑफ कोर्स, जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है। तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है, और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, ये सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 620-680-3040 ये नंबर है, इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं, या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
0: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मैल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ, फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामणि, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स, यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया, जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
1: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत का।

0: ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह नहीं, 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
1: आयुष्मान
0: नमस्कार।
1: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
2: हाँ, अखन हमरा लोकन अनिल भाई प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान सुने चलू है, आब अही के संग हमरा लोकन खेती गृहस्थी में प्रवेश कर रहल छे।
3: खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सब किसान भाई लोकन के, अन्नदाता बंधु लोकन के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार।
2: अब खेतियों में देखो धीरे धीरे बदलाव आबि रहल अछि, हमरा लोकन के जाय में ज्यादा अहाँ के लाभ होइत अछि ओहन खेती करय पर बेसी जोर देल जा रहल।
3: देखियो सतो भाई, एकटा सोच गप छे जे पारंपरिक खेती हम अहाँ करै छी, दलहन वाला, तेलहन वाला, तीमन तरकारी वाला, तो ओहिसँ हटि कऽ बहुत रास एहन फसिल सब अछि जाहिमे लागत कम अछि, लाभ बेसी अछि। एहि प्रकृति मे, एहि ब्रह्मांड मे जतेक रोग अछि सभक निदान ओ गाछ वृक्ष मे अछि, संगे किछु फसिल तऽ एहन मूल्यवान अछि, अतेक कीमती अछि, जँ नीक जकाँ वैज्ञानिक ढंग सँ खेती करब ओकर तऽ नीक आमदनी भऽ सकैए। ओहि सफेद मूसली ई बड्ड बेसी लाभकारी औषधीय फसिल अछि, एकर उन्नत खेतीक लेल रेत वाला दोमट माटि सबसँ नीक होइए। अपने जुलाई मास में, जून मास में, जुलाई मास में जखने मानसून के शुरुआत हुए, आरंभ हुए, तब अखने एकर खेती कर सकै
2: छी। सफेद मूसली के उन्नत खेती के लेल किछ बात पर ध्यान रखबा के चाही, जना कि माटि भेल हल्लुक रेतेली कहबे के लिए, या बलोई दोमट माटि जाहि में जैविक पदार्थ भरपूर मात्रा में उपलब्ध हुए, ओहन माटि सर्वोत्तम मानल जाइत अछि। संगे जल निकासी के नीक व्यवस्था हेबाक चाही, माटि के पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच उपयुक्त होइत अछि। जलवायु गर्म आ नम जलवायु एकर खेती के लेल सर्वोत्तम होइत अछि। खेत के जोताई केला के बाद माटि के भुरभुरा बना लेबाक चाही, आ बुआई से पहिने खेत में 15 से 20 टन सरल गोबर के खाद प्रति एकड़ सब मिलाकर तकर बाद खेती करबा।
3: देखियो एकर जे रोपक के समय सबसे नीक हुई है, जून से अगस्त धरि सबसे नीक हुई है। खाद उर्वरक के जो विचार करी तो मूसली के फसल में मुख्य रूप से जैविक खादक व्यवहार करी, जैविक खाद जना कि नीक जकां सरल के गोबर खाद, बर्मी कंपोस्ट और नील के खल्ली के अपने व्यवहार कर सक। संगे सिंचाई आ खरपतवार नियंत्रण के लेल सफेद मूसली के फसल में निरंतर लगातार नमी के आवश्यकता हुई है। पानिक बचत आ नीक से नीक उपजाक लेल ड्रिप सिंचाई के अपने प्रयोग कर सकै छी।
2: चाहिए संगे एकर मूसली के जे कंद के जड़ होइत अछि ओकर नीक विकास के लेल उठल क्यारी बनबा के चाही, ई नीक मानल जाइत अछि। एहि प्रकारे क्यारी बनाबी जाहिसँ जल निकासी नीक सँ भऽ सकै। संगे बीज कंद के चुनाव सफेद मूसली के खेत में बीज आ कंद दुनू द्वारा कयल जाइत अछि, लेकिन कंद सँ फसल उगायल सबसँ सर्वोत्तम मानल जाइत अछि।

0: एक एकड़ में लगभग 1.502 क्विंटल कंद कलम के आवश्यकता होइत अछि। बुआई कहबे के लिए अहाँ जून या जुलाई मास में जखन मानसून के शुरुआत होइत अछि तखन करबाक चाही।
1: दर्शतो है गप करब छोट सन विराम
0: सुनल जा।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मैं पूनम कुमारी ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा प्रखंड आलमनगर जिला मधेपुरा जी मैंने काम करवाए है। अभी तो मेरा बाहरी इलाका है कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है सालों चली जाती है बह के तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं 10 से 15 पक्की सड़क में मैं 2 बार मुखिया बनी।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: मैं प्रेमा देवी 10 ग्राम पंचायत राजमोतीपुर प्रखंड दोसरा जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लबेड़ी खोले हैं जिसा मिल रही है अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: अनिल भाई अखन हमरा लोकन संदेश सुनै छलौं हैं आ देखू माछ जे अछि पालन ओहो हमरा लोकन के बड बेसी लाभकारी
1: किएक देखियो अपन सभक क्षेत्र में पोखर आ जलकर के कोनो
0: अभाव नै छै।
1: ठामे ठाम पोखर अछि आ डबरा अछि एहिमे माछ हेबेटा करै। माछक संदर्भ में बहुत रास गप कहल गेल छै जेना एकटा रहीम कवि कहने छै रहीमन हिलसा देख कऽ मन में होइ उल्लास आ बिन माछक भोज सँ नीक अछि उपवास। तऽ एहने सन एकटा भेंट वार्ता सुनै छी मिश्रित मत्स्य पालन। भेंट वार्ताकार छथि मंगला नंद झा ई बड़ी वैज्ञानिक छथि
0: अनिल कुमार कर्ण आ प्रस्तुति छनि असद दाऊद के।
1: तो सुनी हम सब ई भेंट वार्ता
0: सुनल।
1: किसान भाई लोकनि आई खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत संगे सब गोटे के नमस्कार। आई आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर मंगलानंद झा अपने वरीय वैज्ञानिक छी एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चैनपुरा बसेट जे जिला मधुबनी अंतर्गत है। डॉक्टर मंगलानंद झा जी अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत संगे अपने के नमस्कार।
5: अपनों के नमस्कार अनिल जी।
1: हम आई अपने से गप करब जे कोनो काज के जखन आधारभूत प्रक्रिया संपन्न भ जाइए तो ओकर बाद वो आगू काज बढ़ो के लेल अहाँ कह सकै छी जे वो काज आरंभ कैल जा सकैए। पुरना पोखर के देखभाल केला के उपरांत नीक जकां व्यवस्था भो गेल तो किसान भाई लोकन के माछ पालक भाई लोकन के मन में आशंका रहै छन जे माछ पालन कोना करी। ओना तो ई काज पारंपरिक ढंग से बहुत वर्ष से लोग कर रहा है मुदा एक वैज्ञानिक विधि की है जैसा बेसी से बेसी लाभ भेट सके। हम सब मिश्रित मत्स्य पालन के संदर्भ में बहुत रास सुनने छी मुदा डॉक्टर साहब हम आई अहाँ से जानना चाहब जे हमर किसान बंधु माछ पालक भाई लोकन तो जानना चाहे जे मिश्रित मत्स्य पालन की है इस संदर्भ में कहल जाए।
5: अनिल जी मिश्रित मत्स्य पालन है जे अपन देसी किस्म के जे माछ है जैमे कतला है रेहू है मृगल है कतला के हम सब भाकुर कहे अपना भाषा में रोहू माछ कहै छियै नैनी माछ कहै छियै जे अपन पुरान अपन एहिठमन का प्रजाति अछि। विदेशी जे छै अहाँके किस्म छै जाहिमे कि अहाँके सिल्वर कार्प छै ग्रास कार्प छै कॉमन कार्प छै जे चाइनीज किस्म छै छओ के यदि हमसब मिश्र एक जगह मिश्रित करै छियै तकरे हमसब मिश्रित मछली पालन कहै छियै। मिश्रित मछली पालन केला सँ एहि दुआरे

0: फायदा छै जे तालाब के अंदर में खाना के तीनटा लेयर छै, एकटा ऊपर के छै, एकटा मध्य के छै, एकटा नीचा के छै। तें भिन्न भिन्न स्तर में रहो वाला मछली जे भिन्न भिन्न स्तर में रहै छै, तकरा में यदि एक जगह यदि हम मिश्रित करै छियै तो तीनू लेयर के मछली यदि तालाब में डालै छियै, ओही किस्म के मछली जेना अपन कतला छै, भाकुर जकरा कहै छै, से ऊपर से खाना लै छै, सिल्वर कार्प सेहो ऊपर से खाना लै छै, रोहू अहाँ के मध्य सिरा से खाना लै छै, कॉमन कार्प छै, नैनी छै, नीचा से खाना लै छै, एकरा बाद में ग्रास कार्प छै, तो ग्रास कार्प जे छै से ग्रास कार्प लै छै अहाँ के तालाब के अंदर में, जे लोग अलग से ओकरा पौधा दै छै, एहन चीज दै छै जैसे कि ओकरा भोजन भेटै, नहि अंत में होइ छै तऽ किछु कुम्भियो जलकुम्भी घेरा लगा कऽ दऽ दै छै जे ओकरा भोजन भेटैत रहै। भोजन नहि के लेल अहाँ के घर में जते किचन के जे पदार्थ है, जे साग सब्जी कटनौ है, ओकर जे किछु डस्ट छै ओहो ई तालाब में अहाँ देल जा सकै छै, जे ओकरा जे दऽ देलियै घेरा के अंदर में तो ग्रास कार्प अहाँ के खेतै। तैं मछली में एक दोसर के खाना के लेल कतौ प्रतिस्पर्धा नहि होइ छै, आ तालाब के हर लेयर में जे खाद्य पदार्थ छै से माछ के भेटै छै, और संपूर्ण जे माछ के अपना तालाब के अंदर में जे तीनू लेयर में जे दोहन छै से मछली पालन के लेल जतेक छै अपन उर्वरक छै, खाद उर्वरक हम देलियै जे तीनू लेवल में यदि आबि गेलै तऽ लेला के बाद में ओहिसँ वृहत हमरा आमदनी हमरा भेटैए, एक दोसर सँ प्रतिस्पर्धा नहि छै। आ ओहिमे तीनू लेयर यदि पड़ि गेला के बाद में तीनू लेयर के माछ पड़ि जेतै तऽ एक दोसर के आपस में रगड़ा झगड़ा भोजन के लेल नहि होइ छै, माछ में बेसी वृद्धि होइ छै, तैं हमसब ई मछली पालन हमसब करै छी।
1: तऽ ई जे मिश्रित माछ पालन होइए, एहि लेल पोखर के जे संरचना हेबाक चाही वैज्ञानिक रूप सँ, तकनीकी रूप सँ ई केहन हेबाक चाही, एहि संबंध में कहल जाए।
0: एहि के लेल तब तालाब के पहले जीर्णोद्धार कलूँ, जतेक खाऊ मछली छै तकरा निकालि दियौ, निकालना के बाद में जतेक खर पतवार छै तकरा अहाँके नियंत्रण कऽ लिअ, नियंत्रण केला के बाद में एहिमे जीरा यदि डालै छै, छोट जीरा यदि किस्म छै तऽ ओकरा 8,000 से 10,000 डालू, नम्हर यदि अहाँ के किस्म अछि जाहिमे साइज यदि ओकर भऽ गेलै 4 इंची के यदि साइज छै, 3 से 4 इंची के जे साइज छै तकरा मात्र 55 से डालल जाइ छै, जे कट्ठा में मानि के चलू 1 से 10, ओहिसँ बेसी अहाँ नहि डालू, डालला से अहाँ के आगा आबऽ के बाद में चूँकि हम छोट साइज के माछ के जे एहि दुआरे किछु बढ़ा कऽ देल जाइ छै जे मोर्टिलिटी कनिक बेसी होइ छै, नम्हर साइज जखने हेतै ताहिमे मरण किछु कम होइ छै, तैं 55 से मे हमसब आशा करै छी जे 55 से हमर 3 इंची से 4 इंची के साइज के यदि मछली डालबै तऽ 55 से हमर जिंदा रहत। एहिमे दुनू तरहक प्लांकटन पायल जाइ छै, सूर्य के उपस्थित सँ जे पौधा जे छै स्वतः फोटोसिंथेसिस के क्रिया सँ से जंतु प्लवक अहाँ के बनै छै, पौधा जगत के सेहो वनस्पति जगत के प्लवक बनै छै, आ जंतु जगत के पबैत नीचा में जे मिट्टी छै ओही सँ जे बहुत सारा जे पदार्थ छै ओ सड़ि गेल के जे छै ओही सँ जंतु जगत के प्लवक बनै छै, जे दुनू प्लवक अपन मछली खाइए, जे कतला ऊपर सँ छै तऽ ऊपर सँ ओकरा कनी प्रारंभिक स्तर में ओ भोजन करै छै, जंतु प्लवक खाइ छै, नैनी खाइ छै अहाँ के नीचा सँ लै छै तऽ ओ जंतु प्लवक खायत, आ वनस्पति प्लवक सेहो खायत, रेहू मुस्कुल सब प्लवक खाइ छै, जंत ये वनस्पति प्लवक खाइ छै, तैं जे छै से एकर सामंजस्य एहि ढंग के बनायल जाइ छै जे हमरा तालाब में गोबर यदि हम दै छियै तऽ गोबर देला के बाद में जे 10,000 किलोग्राम गोबर पहिल किस्त में देवल देल जाइ छै, जँ अहाँ के पास में गोबर नहि अछि तऽ नया नया तकनीक अहाँ के लिए जे अपना सबके बाँस के बीच में जे करची अबै छै, बेम्बू स्टिक एकरा हमसब कहै छी, एकरा छोट छोट टुकड़ा में काटि कऽ या जाहि ठमन मिल अखन चलै छै, शुगर केन मिल चलै छै या अहाँ गुड़े पेड़ आबै छी तो ओकरा हमसब शुगर केन बगास कहै छी, एकरो या अहाँ के पतोई छै ओहो सारा चीज के यदि लऽ कऽ बंठल डंठल बना बना कऽ यदि अहाँ दऽ दियै 250 से 300 क्विंटल एकरा हर 3 महीना 4 महीना के अंदर में यदि देबै तो इस प्लवक बननाई क्राई बनतै, काई बनला के बाद में पौधा के जे जंतु जगत के वनस्पति जगत के प्लवक छै सेहो बनतै, जंतु जगत के प्लवक सेहो बनतै, अहाँ के मछली के भोजन बढ़िया भेटतै, एकरा विस्तार से मछली भोजन करत, मछली के बढ़वा

0: बेहतर हेतै।
1: संगे संग ई जे मिश्रित माछ पालन होइए तऽ एहिमे जे छओ प्रजातिके अपने जीरा दै लेल कहलियै तऽ एकर अनुपात की होइ छै प्रति हेक्टेयरके हिसाबसँ जँ विचार कयल जाए तऽ कोन माछक जीरा कतेक अनुपातमे देबाक चाही, माने किलोग्रामके हिसाबसँ अनुपातमे किसान भाई लोकनिके कहि दियौ।
0: अहाँके यदि संख्यामे यदि अहाँ डालै छियै तऽ एकर रेशियो हमसब एक सएमे रखै छियै। ई तीन प्रजाति छै, ई तऽ उपलब्धताके आधार पर छै। मानि लिअ जे छओ किस्म उपलब्ध रहै छै, तीने अपन यदि देशी किस्म उपलब्ध अइ, कतला अइ, रेहू अइ, मृगल अइ, तऽ ऊपरके लेवल वलाके कतला 40%, रेहू अहाँके 30%, मृगल अहाँके 30% हमसब डलवाबै छियै अहाँ किसानके भाइके डालक चाहिए। यदि चारि प्रजातिके अछि तऽ सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प आओर अहाँके चारि प्रजातिके अछि, एहिमे कतला जे छै से कतला अहाँके 20% अहाँके कतला डालू, 30% अहाँके नैनी डालू आ फेर अहाँके 30% जे बचि जाइ छै से अहाँके डालऽ पड़त नैनी कॉमन कार्प डालू आ ओकरा बादमे अहाँके जे बचि जाइए तऽ ई अहाँके सिल्वर कार्प जे होइ छै सेहो ऊपरसँ खाना लै छै, 20% सिल्वर कार्प अहाँ सेहो लोड डालि सकै छी। छओ प्रजातिके यदि छै ताहिमे हमसब डालै छियै 15% डालै छियै अहाँके कतला, रेहू डालै छियै 20% आ कॉमन कार्प जकरा करै छियै से 20%, बाँकी चारू मछलीके अहाँके 15% यदि 15 संख्यामे यदि हम डालि देबै तऽ एकर मिश्रण समुचित वैज्ञानिक अनुपातमे मिश्रण भऽ जाइ छै, कोनो तरहक प्रतिस्पर्धा नहि भऽ रहै छै। तालाबके अन्दरमे दोहन जे छै से पूर्ण रूपसँ जतेक खाद्य पदार्थ छै तकर हमरा दोहन भऽ सकैए, दोहन भेलाके बादमे हमरा माछके बढ़वार अहाँके बेहतर हेतै।
1: एहन देखल जाइ छै वा सुनलो जाइ छै वा कहि सकै छी जे जानकारी लोकके भेटलनि हँ जे माछक उत्पादन जे प्रति हेक्टेयर अपना सभक ठाम अछि, खास कऽ मिथिलाञ्चलमे वा अपन प्रान्तमे जँ गप करी, आन प्रान्तके अपेक्षा एकर उत्पादन अपना सभठाम कम होइए, तऽ एकर कारण की छै आ एकर निदान की छै एहि सन्दर्भमे कहल जाय।
0: पहिल बात छै जे हमसब खाद आओर उर्वरक मिश्रित मछली पालन यदि करबै तऽ ओकरा पर्याप्त रूपमे भोजन चाही। भोजन यदि अहाँ गोबर डाललियै, गोबर डालनाके बादमे सबसँ पहिले हमसब देखै छियै जे एकरा अन्दरमे प्लवक कतेक बनलै, तऽ एहिके लेल हम किसान भाइके कहबनि जे अपन हाथ डालियौ, अपन हाथ पानिके अन्दरमे डालू, एकटा हाथ अपन डालू, अपन अङ्गुलीके एनाके उठाउ, जँ अङ्गुलीके अहाँके देखऽमे आबि गेल तऽ एकर मतलब भेलै जतेक पारदर्शिता रहतै एकर मतलब होइ छै जे एतेक माछके खाना कम छै। यदि गोबर डाललोके बादमे एतेक अहाँके उत्पादन बेसीसँ बेसी लेबक चाही तऽ खाद सङ्गे अहाँके उर्वरक सेहो अहाँके डालऽ पड़त। एहिके लेल 30 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट या 25 किलोग्राम अहाँ यूरिया डालि सकै छी प्रति महीनाके डेढ़सँ। दोसर बात छै जे अहाँके सिंगल सुपर फॉस्फेट छै, ओकरा बादमे एकरा डाई सुपर सिंगल सुपर फॉस्फेट अहाँ 12-15 किलोग्राम अहाँ डालि सकै छी, या ट्राई सुपर फॉस्फेट छै तकरा अहाँ 8-10 किलोग्राम अहाँ एकरा डालि सकै छी। जाहिमे देखै छी जे पोटासके यदि कमी छै तऽ पोटासोके अनुशंसा अहाँके 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयरके दरसँ माहवारी एकरा डालू। चूना निश्चित रूपसँ हर महीनामे चूना डालू, चूना अहाँके 20-25 किलोग्राम चूना हर महीनामे यदि अहाँ छिटाव करबै तऽ अहाँके उत्पादन बेसी हैत। एक क्विंटल चूना अहाँ जीरा डालसँ 15 दिन पहले डालू, ओकरा बादमे दुनूके अन्तर कऽ लिअ, जे गोबर डाललियै तऽ गोबरके यदि चूना पहले फेर अगिला महीनामे चूना यदि डालै छियै तऽ चूना डाललाके बादमे गोबर यदि डाललहुँ तऽ गोबरके दुनूके बीचमे अहाँके कमसँ कम 10 दिनके अन्तर जरूर होबक चाहिए, तखने अहाँके पर्याप्त मात्रामे प्लांक्टन बनतै आओर प्लांक्टन बनलाके बादमे जंतु प्लांक्टन बनतै, वनस्पति प्लांक्टन बनतै, पर्याप्त भोजन भेटतै। आ भोजनके बादमे यदि तैयो देखै छी जे प्लांक्टन पर्याप्त अहाँके नहि भेटल तऽ परिपूरक आहारके सेहो व्यवस्था छै जे ओकरा यदि हम माछके देबै तऽ माछमे 20% व्यवहार हेतै, ओकर वजनके 3-4% एक हेक्टेयरके लेल यदि करै छी तँ पहिल महीनामे अहाँके 2-3 किलोग्राम मूँगफली या अहाँके सरसों राईके खली छै से आ चावलके कुंडा छै दुनूके बराबर बराबर मात्रामे यदि बना कऽ दिए, टोकरी भी बना कऽ दिए, लड्डू जकाँ बना दिए, बनेलाके बादमे निश्चित समय निश्चित स्थान पर अहाँ डालियो आ डालनाके बादमे अहाँ देखियौ भेड़ खानाके उठा लिअ, आ नहि तऽ होइए जे जूट वाला जे

0: बोरा होइ छै, बोरामे छेद कऽ कऽ ओकरा लड्डू जकाँ बना कऽ दियौ, छोट छोट गोली बना कऽ दियौ, देखियौ जे खा यदि लेलकै, लेकिन कोशिश करू जाहि समयमे डेली दै छियै ओहि समयमे दियौ, निश्चित समय आओर निश्चित स्थानपर पानिके लेवल तक यदि अहाँ डालि देलियै, पानिके लेयरमे जेना डालल जाइ छै पेंसिल्ला लोक गाड़ी दै छै तहिना ओकरा ओहि लेवल तक ओहिठाम निकलक चाही जे माछ ओहिमे छेद छेद कऽ कऽ कऽ अहाँके भोजन कऽ लेत। जतबे भोजन करियै ततबे दियौ, अहाँ खाना अहाँ छीटके दे देबै तऽ खाना अहाँके बर्बाद भऽ जायत।
1: तऽ डॉक्टर मंगलानंद झा जी, अपने मिश्रित माछ पालनके सन्दर्भमे माछ पालक भाई लोकनिके बहुत सुन्दर आ नीक जानकारी देलियनि, ताहि लेल अपनेके धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: मिश्रित मत्स्य पालन एहि विषयक भेंटवार्ता हमसभ एखन सुनि रहल छलहुँ। भेंटवार्ता कार्य छला मंगलानंद झा, ई बड़ी वैज्ञानिक छथि आ हिनका संग गप कऽ रहल छला
2: अनिल कुमार कन।
1: तऽ सतो भाई, आब बेर भऽ चलल अइ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र सँ जे टटका मौसम संबंधी सूचना जे प्राप्त भेल अइ से की अइ किसान भाई लोकनिके कहि।
2: 24-28 जून 2026 धरि के मौसम पूर्वानुमान एहि प्रकारे रहबाक अनुमान अछि। अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना अछि, जखनकि सिवान, गोपालगंज आ बेगूसराय एहन किछु स्थान पर कम तापमान महसूस भऽ सकैत अछि। न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान अछि। भोरमे सापेक्ष आर्द्रता 75-80% आ दुपहरियामे सापेक्ष आर्द्रता 25-30% रहबाक अनुमान अछि। हवा मुख्यतः पूर्वा हवा 12-18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलबा के संभावना है।
1: संगे सतो वही एहि पूर्वा अनुमानक अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिला सब में सामान्य रूप से मौसम के शुष्क रहबाक संभावना है। कतौ कतौ अपने के छिटपुट बरखा सेहो भऽ सकैत अछि। हालांकि 28-29 तारीख के आसपास बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण ई सब जिला में मेघ गर्जन संग वज्रपात सेहो अनेक ठाम भऽ सकैत अछि आ संगे एहि सब क्षेत्र में नीक बरखा हेबाक अनुमान अछि। संगे एहि अवधि में अधिकांश समय में आकाश में हल्लुक सा मध्यम मेघ लागल रहि सकैए।
2: आगामी किछु दिन मानसून के कमजोर स्थिति के देखैत किसान भाई के सलाह देल जाइत अछि जे उचांस वाला स्थान जे अछि ओहि पर धान के बिया गिराबैत। आब मौसम पूर्वानुमान एहि के संग समाप्त भऽ रहल अछि। आब हमरा लोकनि किसान भाई के एकटा फसल गीत सुना दी।
1: सुनी हम सभी गीत।

0: वो बहुत सुंदर।
1: अखन
0: जे हम सब फसिल गीत सुन रहा छलहुँ, गीतक कलाकार पूनम कुमारी। एहि संग आब आजुक खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबा पाई, किसान ओहि लोकनि सँ चलबाक आज्ञा लेल जाए।
1: नमस्कार अनिल भाई।
0: नमस्कार शतो भाई।

ये था खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर याद आए आपातकाल के काले दिन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा। भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जल्द होगा न्याय। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के आरोप में हटाए गए पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर गीता सिन्हा को मिला प्रभार। और राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में गर्मी का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के माध्यम से आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाई।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
0: प्रदेश भाजपा की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंग्रेजों के समय बनाए गए मीसा कानून के तहत बिना कारण और बिना न्यायिक समीक्षा के 1,31,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया था।
3: मैं इमरजेंसी के बारे में चर्चा करूं, 1,31,000 लोगों को बिना कारण और बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के जेल के अंदर डाला गया था। इतनी बड़ी संख्या को अंग्रेजों ने भी कभी जेल में नहीं डाला, जो इमरजेंसी में 1,31,000 लोगों को इमरजेंसी में डालने का काम मिसेस गांधी ने किया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट

0: जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल इतने लोगों पर नहीं किया जो मिसेस गांधी ने किया था।
1: केंद्रीय मंत्री ने आपातकाल के दौरान पटना से शुरू हुए जन आंदोलन को याद करते हुए कहा कि वह स्वयं भी इस संघर्ष के सहभागी रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध लड़ाई का बीज बिहार की धरती पर पड़ा था और यहीं से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपातकाल के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान के सभी मूल्यों का गला घोट दिया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की यही सीख है कि जनता संविधान और प्रजातंत्र का गला घोटने वालों को समय आने पर मजबूती से जवाब देती है।
2: हम सब जानते हैं कि 25 जून जहां प्रजातंत्र का गला घोटा गया, प्रेस का गला घोटा गया, व्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लग गई, संविधान पर कुठाराघात हुआ, आज हम इसलिए याद करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र जिस मजबूती के साथ उस समय प्रजातंत्र का गला घोटने वाले को जवाब दिया था, यह प्रजातंत्र भारत का हमेशा हमेशा मजबूत रहे और इसको कोई आंच ना आए, इसकी हम प्रतिज्ञा भी करते।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय था। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा, संविधान के सम्मान और जनस्वर की शक्ति को सदैव सर्वोपरि रखना ही लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
3: आज अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। ये 25 जून जब आता है तो लोगों के लिए चिंता का दिन हो जाता है। इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी दिलाया, लेकिन कुछ लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करना शुरू किया और संविधान हत्या दिवस के तौर पर आज देश में हम मना रहे हैं। जेपी सेनानी एक तरह से दूसरे इस देश के आजाद दिलाने वाले लोग हैं। इस देश में आजादी तो अंग्रेजों से दिया गया, लेकिन अपने लोगों ने जो कष्ट दिया उससे मुक्ति दिलाने का काम किसी ने किया तो वो जेपी सेनानियों ने किया है।
1: आपातकाल विरोधी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने अपने संस्मरण साझा किए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार था।
4: 25 जून की अर्धरात्रि 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया और उसमें सभी बड़े बड़े नेता लोग सब लोग एक साथ गिरफ्तार कर लिए गए। उस दौरान हमें भी गिरफ्तार करने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन फिर एक कुर्की जब्ती हमारा कर लिया गया। तब मैंने जाकर के अपना गिरफ्तारी दिया था और गिरफ्तारी देने के बाद जब मैं पटना में बाहर आया था तो बाढ़ के नाम पर पैरोल मिला था तो उस पर आए थे और आकर के फिर इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका मैं निभाता रहा।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त किए जाने की यादें दोहराई हैं।
5: जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पुलिस सामने खड़ी थी और मुझसे सीधे पूछा, तू ही शिवराज सिंह चौहान है क्या? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। बोले तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चला है? तो मैंने कहा कि भाई मेरी परीक्षा है, मेरी बात तो सुने। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पहले तो थप्पड़ मारे, अंदर घुसे, तलाशी ली तो मेरे यहाँ से सारा मटेरियल मिल गया। आपातकाल हटाओ और इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश, सारे मिल गए। तो वहां से पीटते हुए ले गए हबीबगंज थाना। मैं जेल के अंतिम 9.5 महीने बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाया मैं।
1: जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि 25 जून भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। श्री झा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस आंदोलन के दौरान जेल में रहे थे।
6: भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रही इसी आपातकाल, और आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है। आज तक देश से माफी नहीं मांगा आपातकाल के लिए, तो उसी माइंडसेट में है।
1: विभिन्न जिला मुख्यालयों में भी संविधान हत्या दिवस मनाया गया। मुंगेर के 3 नंबर गुमटी के पास स्थित सामुदायिक भवन में भाजपा की ओर से आपातकाल के दौरान विरोध करने वाले सेनानियों का सम्मान किया गया। इधर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। अन्य जिलों में भी आपातकाल की वर्षगांठ को लोकतंत्र बचाओ के संकल्प के साथ मनाया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 की नई सामाजिक विज्ञान पुस्तक में आपातकाल पर अध्याय शामिल किया है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, इंडिया एंड बियॉन्ड नाम से शामिल अध्याय में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। एनसीईआरटी ने पहली बार स्कूल स्तर पर आपातकाल को विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। इसे लेकर देशभर में नई बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भोजपुर कथित मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच से घटना का सच सामने आएगा। उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही रिपोर्ट आएगी और न्याय होगा।
3: भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं, जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया साथ, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा, और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे।
2: इधर मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। श्री सिन्हा ने पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान शाहबाद के DIG सत्य प्रकाश, जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, पुलिस अधीक्षक राज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। विभागीय अधिसूचना में कहा गया है कि डॉक्टर सिंह पर बिना सूचना अनुपस्थित रहने और अन्य कार्यों में लापरवाही का आरोप सत्यापन के क्रम में सही पाया गया है। PMCH के स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग में प्राध्यापक डॉक्टर गीता सिन्हा को कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मंडल ने कहा कि 24 जून को राज्य में 9068 मेगावाट के रिकॉर्ड बिजली की मांग को पूरा करने में विभाग सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है और लगातार बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों में अधिकांश स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।
4: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: प्रदेश के विभिन्न भागों में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। शेखपुरा, अरवल समेत विभिन्न जिलों में आज फ्लैग मार्च निकाला गया। इधर पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर, पटना सिटी समेत विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग पर पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है।

0: शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहनी टोला में पुलिस ने 3 फरार अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। इन सभी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। अररिया जिले के रानीगंज और आरएस थाना क्षेत्र से पुलिस ने विभिन्न मामलों के वांछित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवहर व्यवहार न्यायालय में आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुबनी जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बंदूक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ऋचि पांडे ने आज पुनौरा धाम मंदिर निर्माण परियोजना के तहत निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान हत्या दिवस पर याद आए आपातकाल के काले दिन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा। भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जल्द होगा न्याय। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही के आरोप में हटाए गए पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर गीता सिन्हा को मिला प्रभार। और राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
3: सीतामढ़ी जिले के कई अभ्यर्थियों ने 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC परीक्षा के परिणाम में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। रूनी सैदपुर के अभिषेक आनंद और सुरसंड के राहुल कुमार का चयन उप समाहर्ता पद के लिए हुआ है। वहीं सोनवर्षा के कृष्णा कुमार और डुमड़ा के सुमेधा आर्यन का चयन पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए किया गया है। इसके अलावा बोखरा के जयानंद ठाकुर का चयन कारा अधीक्षक पद पर हुआ है। इन सफल अभ्यर्थियों की उपलब्धि से पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। परिजनों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इधर बीते दिनों जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 3,227 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 298 अभ्यर्थी अनुपस्थित।

उपस्थित रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई तथा कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा आयोजित कराई गई। इस दौरान जिला पदाधिकारी रिचि पांडे और पुलिस अधीक्षक अमित रंजन सहित अन्य वरीय अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, पेयजल, बैठने की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की और शांतिपूर्ण आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जिले में बीते दिनों कृषि

0: सीसीटीवी निगरानी, पेयजल, बैठने की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की और शांतिपूर्ण आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जिले में बीते दिनों कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। किसानों को समय पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक में जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिले में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। जिले में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वहीं मानसून का देखते हुए जिले में संभावित बाढ़ की तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। तटबंधों, सड़कों और संवेदनशील स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है तथा सुरक्षा कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, राहत शिविरों की व्यवस्था, नावों की तैयारी तथा आपातकालीन सेवाओं की समीक्षा भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले के भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। इस दौरान विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। बीते दिनों सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। सांसद ने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इधर जिले की प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बीते दिनों विभिन्न स्थानों पर आयोजित सहयोग शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविरों में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का जायजा लिया तथा आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों में प्राप्त सभी शिकायतों और आवेदनों का निष्पादन हर हाल में 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को समय पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। प्रभारी मंत्री ने आम नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में ऐसे शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सीतामढ़ी जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिले में एक अनूठी पहल की गई है। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण से तैयार 85 बेंच विभिन्न पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है। इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर उपयोगी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।
1: अभी आप सुन रहे थे सीतामढ़ी जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम प्रभात का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी सामान किनना लाए।
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
3: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
4: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं। प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

अब सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म प्रेम रतन धन पायो का यह गीत शान एवं साथियों की आवाज़ में, बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम रोग का यह गीत लता मंगेशकर एवं सुरेश वाडकर की आवाज में। शब्द रचना थी संतोष आनंद की और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
2: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
3: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार बंधु लोकनि, स्वागत अछि अपने सब गोटेके आजुक नव अंक में। जेना कि जनतब अछि अहाँ सबके जे सिंगरहार साहित्यिक कार्यक्रम अछि, एहिमे हम अपन श्रोता बंधुसँ साहित्यिक गपशप करैत छी, अपन साहित्य लेखकक विषयमे सेहो गप करैत छी। से गप जखन करैत छी तऽ बहुत रास नव नव तथ्यक जानकारी सब सेहो भेटैत अछि, जे कि साहित्य अध्येता छात्र छात्रा लोकनि जे छथि तनिका सेहो नव जानकारी भेटैत छनि, आ हम अहाँ सेहो ओहिसँ लाभान्वित होइत छी। आ एहि सभक सङ्ग सङ्ग गीत संगीत सेहो सुनैत छी, कथा पाठ सेहो सुनैत छी, ततबे नहि किछु शब्द पर सेहो गपशप करैत छी, मने शब्द विमर्श करैत छी। ई सबटा मने सिंगरहार कार्यक्रम अहाँ अपन रेडियो सेटक सङ्ग सङ्ग मोबाइल सेट पर सेहो सुनि सकैत छी न्यूज ऑन AIR ऐपक माध्यमसँ। बंधु लोकनि, हमरा सबके रहा सुनबामे अबैत अछि जे ई धरती मृत्यु भुवन अछि, आ से अछियो ई धरती पर जे जन्म लऽ कऽ अबैत अछि ओकरा एहिठामसँ जायब सेहो निश्चिते अछि। मने जे जन्म लैत अछि ओकर मृत्यु सेहो निश्चित छैक, अटल सत्य छैक। किन्तु व्यक्तिके गेलाक बाद हुनक वंशज लोकनि हुनका मोन पारैत रहैत छनि। से व्यक्ति जे केओ जाइत छथि एहि धाराधामके छोड़ि कऽ, हुनका जे मोन पारल जाइत अछि तकर आधार हुनक कयल कर्म रहैत अछि, जाहि कर्मक आधार पर हुनका

हुनक बादक पीढ़ी हुनक वंशज लोकनि मोन पारित रहित छथि। से सामान्य जीवन में तो होते अछि, साहित्य में सेहो यह होते अछि। कोनो साहित्य लेखक जखन ए धराधाम सँ चल जाय छथि तखन ए छमक जे हुनक परवर्ती हुनक जे बादक पीढ़ी अछि, साहित्य पीढ़ी अछि, वा हुनक जे पाठक हुनकर जे प्रशंसक रहित अछि, से हुनका समय समय पर मोन पारित रहित छनि। कारण जे व्यक्ति के कर्मे हुनक संग जाइत अछि, कर्मे हुनक एहिठाम ए धराधाम पर रहि जाइत अछि, मात्र नष्ट होइत अछि तँ शरीर। किछु लोक तँ एहन होइत छथि जे एहि धराधाम पर अबैत तँ छथि सेहो कम समय लेल, मुदा ओ कमे समयमे ततेक रास काज करैत छथि, ततेक रास काज कऽ लैत छथि जे हुनक काज हुनक जे कम दिनक जीवन रहित छनि ताहिसँ बेसी बुझाय लगैत अछि, आ हुनक काज देखाइत रहित अछि लोकके, बेर बेर मोन पड़ैत रहित छथि ओ अपन कयल काजक लेल। ओ सदैव लोकक मोनमे जीवित रहित छथि। ई जे शरीर, इस शरीर तँ जानिते छी हमसभ जे नाशवान होइत अछि, मुदा कर्म कर्म यथार्थ छै, शाश्वत रहित अछि, चिरकालिक होइत अछि। तैं मनुष्यके अपन कर्म पर विशेष ध्यान देबाक चाही।

एखन हमसब ए निर्गुण के माध्यम सँ परम सत्य सुनलहुँ। वास्तव में यह जीवन छी, मुदा एकटा बात तऽ छै, मनुष्य रूप में जखन लोक के जीवन भेटैत छैक तँ ओकरा चाही जे किछु एहन कर्म करी जाहिसँ हमरा गेलाक बादो लोक मोन पड़ैत रहे। से आइ देखू ने, आइ हमरा हठात मोन पड़ि रहल छथि मैथिली साहित्यक एकटा एहन नाम जे मैथिली साहित्यमे कमे दिन धरि रहला, मुदा जतबे दिन रहला ततबेमे ओ मैथिली साहित्यके बहुत किछु देलनि। ओ नाम अछि श्याम चंद्र झा, किंतु संपूर्ण मैथिली साहित्य हुनका

श्याम दरि हरेक नाम सँ जनित छनि। श्याम दरि हरेक जन्म मधुबनी जिलाक बेनीपट्टी प्रखंडक अंतर्गत बरहा गाम में 1954 ईस्वी में भेल छलनि। श्याम दरिहरे एकटा प्रशासनिक पदाधिकारी छलाह, गृह रक्षा वाहिनी मने होम गार्ड में समादिष्टाक पद पर नियुक्त छलाह। सौम्य, सुशील, अनुशासनक कठोर पालन केनिहार छलाह श्याम दरिहरे। श्याम दरिहरे जखन अपन ड्यूटी पर रहित छला तखन ओ एकदम कड़क मिजाजी, किंतु अपन कर्तव्य पालन में हुनका कनेको चूक बर्दाश्त नहीं छलनि। ओ अपन काज में एकदम तत्पर रहित छला आ ओ अपन कलीग सँ सेहो सह चाहित छला, किंतु वह दरिहरे जखन ड्यूटी के बाद लोक सब भेंट करी छला तखन एकदम विपरीत रहित छला, एकदम सरल भ जाइत छला। कोनो जरूरतमंदक लेल ओ तुरंत हाजिर रहित छला। ई त भेल हुनक चाकरी जीवन, मुदा साहित्य में सेहो ओ एकटा भिन्न व्यक्ति छलाह। श्याम दरिहरे अपन सीनियर साहित्यकारक त सम्मान करते छलाह, संगहि संग नव तुरक जे लेखक तकरा ई ताहू सँ बेसी सम्मान दैत छलाह। ई आग्रही छलाह नव लेखक के, तें से साहित्य में सेहो ई लोकप्रिय भेलाह। श्याम दरिहरे मूल रूप सँ कथाकार छलाह। हिनक कथा संग्रह बड़की काकी @hotmail.com लेल साहित्य अकादमिक पुरस्कार सेहो वर्ष 2018 ईस्वी हिनका देल गेलनि। से मात्र ई कथे नै लिखला, कथा त लिखबे केलनि, संगहि संगे श्याम दरिहरे उपन्यास सेहो लिखलनि, कविता सेहो लिखलनि। मने साहित्यक जे विधा अछि सब मे ई अपन लेखनी चलौलनि। श्याम दरिहरेक कविता संग्रह सेहो छनि, जाहिमे क्षमा करब हे महाकवि मैथिली में तो मन का तोरण द्वार सजा है हिंदी में छल। तहिना जगत सब सपना हमर जन्म किए भेले हो रामा बाती कोन जराओ उपन्यास छनि। श्याम दरिहरे तो मानू जे एखन लिखब आरम्भे केने छलाह, मने कहि सकै छिए जे ओ मानसिक रूपसँ पूर्णतः अपना आपके स्वयं के मैथिली साहित्य लेल द चुकल छलाह। ओ लागि गेल छलाह निरंतर मैथिली साहित्य के समृद्ध करबा लेल, किंतु हुनका ई कहाँ बुझल रहनि जे इते जल्दी ई पारी संपन्न भ जेतैक। श्याम दरिहरेक

अजके दिन माने 25 जून 2021 ईस्वी का 68 वर्षक अवस्था में वृंदावन में ईश्वरक शरण में अपन जीवन के समर्पित कर दैत छथि, माने हुनक निधन भ जाइत छनि। आजुक दिन हमरा लेल मन हमर साहित्य लेखक लेल, साहित्य साधक लेल, साहित्य पाठक लेल तो निश्चित ही महत्वपूर्ण दिन अछि। आजुक दिन हमरा सबके अपन एहि महत्वपूर्ण लेखक के मोन पारबाक चाही। ततबे नहि, हमरा सबके हुनक जे साहित्य छनि तकरा पढ़बाक चाही, गुणबाक चाही आ ओहिसँ से हमरा सबके सिखबाक चाही। विशेष कऽ जे नव लोक छथि, नव साहित्य पढ़निहार छथि, तिनका सबके तऽ निश्चिते पढ़बाक चाही आओर हुनकासँ, हुनक लेखनसँ स्वयंके से लेबाक चाही। हुनक जे लेखनक उत्स छलनि हैं से लेबाक चाही। देखू जे हमसब गप करैत छलहुँ हैं सी एम दरिहरे परमे, आ समय संगे हमसब चलैत छी, जखन समय जेना से हमरा सबके कहैत अछि तहिना चलैत छी। तो देखियो जे जेना कि पहिने हम कहलहुँ हैं जे अपन जे कार्यक्रमक रूपरेखा रहैत अछि से पहिनेसँ बनल रहैत अछि आ ओही अनुसार हमरा सबके चलबाक सेहो रहैत अछि। कहबाक लेल तऽ श्याम दरिहरे पर बहुत रास बात कहल जा सकैत अछि, बाजल जा सकैत अछि, हुनक कथा लेखन पर, हुनक उपन्यास लेखन पर, हुनक कविता लेखन पर, मुदा तते समय तऽ रहैत नहि अछि, चूँकि समय बटायल रहैत अछि। तऽ देखू जे एखन जे समय अछि ओ समय अछि शब्द विमर्शके। तऽ आउ हमरा लोकनि से किछु शब्द पर गपशप कऽ ली। ओहन शब्द जे शब्द हमरा सबके बिसरासनक गेल अछि वा एना कही नहि जे हठात मोन नहि पड़ैत अछि, जब मोन पड़ितो अछि तऽ ओकर अर्थ से नव तुरके तऽ नहिए लगैत छैक। नवका जे नैना सब अछि ओ सब ओहि शब्दक अर्थ नहि बुझैत अछि। तऽ एहन एहन जे शब्द अछि तकरा हम ताकि कऽ आनैत छी आ ओहि शब्द पर किछु गप सप करैत छी। तऽ एक क्रममे एकटा शब्द अछि सोहल। सोहल मने की होइत अछि? तो सोहल जाइत अछि तरकारीके, काँच तरकारीके छिलका जे हटबै छियै तकरा सोहल कहल जाइत अछि। चाहे तऽ अल्लू होइ कि अल्हुआ होइ आकि छिलका जे लागल कोनो वस्तु छै, तऽ छिलकाके हटेबाक जे तरीका छै, कला छै, तकरा सोहब कहल जाइत अछि। तहिना एकटा शब्द आर अछि कच्चा काटब, चाहे कच्चा मारब। एकर मने होइत अछि जे कोनो खाइवला जे वस्तु अछि, फल अछि कि तरकारी अछि, तकरा पर जखन केओ दाँतसँ काटै छथि आ तकरा कहै छियै कच्चा काटब, मने एक साइडसँ ओकरा दाँतसँ काट

काटब मने भेल कच्चा काटब, चाहे ओकरा कखनो कहै छियै हबक्का मारब सेहो कहै छियै, एक कच्चा तो नहि कहै छियै हमसब, एक कच्चा तहूँ खा ले, चाहे लताम छै कि आम छै, इहो कहै छियै देखी ओहि आममे केना कऽ हबक्का मारलकै। आ चोभा मारब, हाँ चोभा पाकले आमटामे मारल जेतै, जाहिमे छिलका लगले जखन ओकर रस चूसै छियै तऽ ओकरा कहै छै चोभा मारब। आ ओहिसँ एकटा शब्द अबैत अछि हबकब। हबकब मने की भेल, अचानक सा दाँतसँ कोनो व्यक्तिके काटब कहल जाइ छै हबकब। सामान्यतया हबकैत अछि जानवर, जेना कुकुर हबकैत अछि मनुखके। ई छलै आजुक शब्द विमर्श। आ देखियौ जे गप करैत करैत से हमसब कार्यक्रमक अंत अंत धरि आबि गेल छी, तऽ के विचार किएक नहि चलैत चलैत हमरा लोकनि एकटा आर मैथिली गीतक आनंद लेत चलिए।

बंधु लोकनि, एहि संग आजुक सिंहारक समय एते सम्पन्न होइत अछि। सोनू के चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।

0: अभी आप मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
3: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
1: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून

एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और वाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य

0: परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा

0: export or reissue hiked to 2,500 rupees from 1st of July, tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहिदा अब तक का सबसे जामे मुआहिदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम मोदी ने ताजियत का इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्द बुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। यकुम जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रुपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इख्तिसार को तकवियत देने में अहम रोल अदा करेगा। आज लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF UK इंडिया वीक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ आजाद तिजारती मुआहिदा FTA भारत की जानिब से अब तक किए गए मुआहिदों में सबसे जामे मुआहिदा है। जनाब पीयूष गोयल, 15 जुलाई से भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तजारती समझौते के नफाज के लिए दोनों मुल्कों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों मुल्कों को आलमी वैल्यू चेन से मजीद जोड़ेगा और इक्तिसादी ताउन और तरक्की के नए मौके फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक दिफा, अहम मादनियात और दिगर कलीदी शोबों में ताउन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और बरतानिया दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग की खातिर मुश्तरक अज़्म रखते हैं। वजीर आजम मोदी ने आज भारत में अमेजन की $48 अरब की रिकॉर्ड सरमायाकारी का खैर मकदम किया है। वजीर आजम ने नई दिल्ली में अमेजन के CEO एंडी जैसी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सरमायाकारी नौजवानों के लिए नए मौके फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया भर में भारत में सरमायाकारी के लिए बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कास है। मीडिया से बात करते हुए एनडी जैसी ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से काफी मुतासिर हैं। उन्होंने भारत की तरक्की के सफर में एक तवील मुद्दती साझेदार बनने का अज़्म जाहिर किया। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी रॉड्रिग्ज ने आज कहा कि मुल्क में आने वाले दो ताकतवर जलजले में 164 अफराद हलाक और 971 जख्मी हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने कहा था कि कल रात 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले के बाद कम से कम 32 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई थी, ताहम हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा था। ये जलजले गुज़श्ता एक सदी में वेनेजुएला में आने वाले सबसे ताकतवर जलजलों में शुमार होता है, जिसके झटके पूरे खित्ते में महसूस किए गए। कई इमारतों को खाली करा लिया गया, जबकि जलजले के असरात ब्राजील के अमेजोन इलाके में महसूस किए गए, जो वेनेजुएला की राजधानी काराकास से तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर है। इस दौरान वेनेजुएला की सदर ने जलजले के बाद भारत की जानिब से इजहार यकजहती की सताइश करते हुए कहा कि यह मुश्किल वक्त में दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान ताउन और दोस्ती के जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने वजीर आजम मोदी के ताजियती पैगाम और इमदादी सरगर्मियों में ताउन की पेशकश का भी खैर मकदम किया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि दुनिया ज्यादा बड़े पैमाने पर हथियारों की तैयारी और जखीरा अंदोजी ज्यादा खतरात मोल लेने और सोशल मीडिया के दौर की मुनासबत से की जाने वाली सियासत का मुशाहदा कर रही है। जुनूबी कोरिया

0: दर्ज कर ली गई है। यकम जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रुपए होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अनीता का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: अब सुनिए
1: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म अनजाना का यह गीत। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म जाल का यह गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना राजा मेहदी अली खान के हैं और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

सुनिए, शर्मिली फिल्म का यह गीत गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, शब्द रचना नीरज का है और संगीत निर्देशन SD बर्मन साहब का है।

रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए कुछ सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सुषमा कुमारी के स्वर में ये सुगम संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा है। एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः हम आपके साथ उपस्थित होते हैं।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी सामान किनना,
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
1: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
3: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

रामविलास यादव के गाए इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं।

0: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम एक हैं।

नमस्कार, भारत नेपाल मैत्री संबंधों पर आधारित कार्यक्रम हम एक हैं के इस अंक के साथ मैं सज्जाद अहमद खान, इस अंक में मधवापुर मटिहानी बॉर्डर से।

0: भारत और नेपाल का संबंध विश्व में पड़ोसी देशों के बीच मित्रता का एक अनूठा उदाहरण है। ये संबंध केवल दो संस्कृतियों, दो समाजों और करोड़ों लोगों के दिलों का संबंध है। सदियों से दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते चले आ रहे हैं। होटल संचालक अभिषेक बताते हैं।
1: हम मतलब जो है यहाँ पे होटल खुले हुए हैं, नाम मेरा अभिषेक हुआ। मेरा घर जो हुआ आपका ओरिजिनल घर मेरा दरभंगा जिला हुआ, दरभंगा जिला आपका हिरनी कुशेश्वर स्थान।
0: यहाँ जो भारत और नेपाल का संबंध जो है वो कैसा देखते हैं आप?
1: देखिए यहाँ का नेपाल और भारत का संबंध बहुत ही अच्छी है। दोनों तरफ के लोगों का संबंध बहुत ही अच्छा है, मधुर संबंध है, रोटी बेटी का रिश्ता आप बोल सकते हैं। नेपाल का आदमी इंडिया में काम करने आते हैं और इंडिया का आदमी भी नेपाल में काम करने जाते हैं। संबंध बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे। वहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमान ऑनेस्टी है नेपाल के लोग, ये बोल सकते। बेटी रोटी का संबंध मतलब ये हुआ जो वहाँ का आदमी मतलब शादी संबंध जो होता है, शादी विवाह जो होता है इंडिया में होता है और इंडिया का भी शादी संबंध जो होता है नेपाल में होता है, रिश्ता चलता है। रोटी का मतलब हुआ रोजगार हुआ। देखिए उधर का आदमी भी इधर काम करने आते हैं और इधर का आदमी भी उधर काम करने जाते हैं, ऐसा नहीं है जैसे नेपाल का ही जन्म है, बहुत जगह जो इंडिया का आदमी भी नेपाल में जाके काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। अधिकांश लोग इधर के भी आते हैं और कुछ लोग इधर का भी जाते हैं, ऐसे नहीं है। भारत का पड़ोसी राज्य है, हम चाहते हैं खुशहाल रहे, नेपाल भी बहुत आगे बढ़े।
0: आप नेपाल जाते हैं तो वहाँ के लोग कैसा व्यवहार करते हैं?
1: नहीं वहाँ का हम्बल व्यवहार करते हैं, बहुत ऑनेस्टी आदमी है वहाँ के लोग। आप देखिए हर जगह कुछ न कुछ खराब, तो आप पूरा वो विश्व में जाएंगे तो आप हर जगह अच्छा नहीं मिलेगा, कहीं ना कुछ हल्का गड़बड़ मिलेगा, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छे हमको जहाँ तक नेपाल के आदमी बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लिए भी व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। उनके भी देखिए यहाँ पर जो आप बॉर्डर साइड का एरिया पकड़िएगा तो मेनली जो बिजनेस है, आपको ये ऑनेस्टी बताएं तो नेपाल के 70% बिजनेस उनके ऊपर ही टिका हुआ रहता है, नेपाल के ऊपर ही टिका रहता है। और नेपाल के आदमी को यहाँ बहुत ही अच्छा सम्मान दिया जाता है, बाद बाकी बहुत अच्छा संबंध है, प्राचीन काल से संबंध आ रहा है। देखिए वहाँ पे जानकी जी, जानकी माँ का जो है शादी राम भगवान से हुआ था। ये जिला बोल सकते सीतामढ़ी बगल में ये जिला है नेपाल का सटा हुआ है, तो सीतामढ़ी जिला माँ जानकी के नाम पर पड़ा है। वहाँ पर भगवान राम का जो है विवाह हुआ था माँ जानकी के साथ। जलेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर माता सीता जल चढ़ाने जाते, धनुषा है जहाँ पर कहा जाता है माँ सीता जो है धनुष उठाई थी। तो ये बहुत कुल्हड़ है, बहुत फेमस जगह है नेपाल में, बहुत प्राचीन झील है। आप जाइए काठमांडू जाइए तो वहाँ पे महादेव का मंदिर, बहुत प्राचीन महादेव मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। बहुत संबंध, बहुत गहरा संबंध है, बहुत ही अच्छे आदमी है। सबसे बात आप बोल सकते हैं नेपाल के आदमी बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत ही मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।

0: के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। ये व्यवस्था दुनिया में बहुत कम देशों के बीच देखने को मिलती है। कल जब हम मधवापुर पहुंचे तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 40 लोगों का एक दल नेपाल भ्रमण कर लौटा था। उन लोगों ने हमें बताया,
1: मेरा नाम माधवी है, मैं विशाखापट्टनम से आता है और इधर बहुत अच्छा है घूम का।
2: आप नेपाल घूमने गई थी?
1: मैं नेपाल को काठमांडू, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और लुम्बिनी पार्क, पोखरा, मनोकामना, जनकपुर और इंकेट नहीं बुद्ध मंदिर इंकेट लुम्बिनी पार्क पूरा जानता है, अच्छा लगता है। ओ मुक्तिनाथ बोलेश्वर महादेव बहुत तो देखता है ना, वो भी अच्छा है। उधर बहुत खरीद दिया, मोती का पगड़ा का खरीद दिया,
2: माला वगैरह खरीद,
1: माला वगैरह खरीद दिया, बहुत लोगों खरीद दिया।
2: रुद्राक्ष की
1: रुद्राक्ष की माला खरीद दिया, महंगा नहीं, कम वाला रेट दिया, सस्ता रेट है। एक मुखी, दस मुखी, पांच मुखी, आठ मुखी, कमला मुखी, पूरा वर्षने ले।
2: अच्छा, तो आपने रुद्राक्ष की माला भी ली?
1: नेपाल में कुछ
2: क्या खरीदारी की?
1: और मोती है ना, मोती मुच्छे वो खरीद दिया, पगड़म खरीद दिया और कपड़ा।
2: नेपाल के लोग कैसे लगे आपको?
1: नेपाल को लोग अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर है ना। लड़की बहुत वाइट, मिल्क वाइट है ना, अच्छा लगता है। बहुत सुंदर है, अच्छा आदमी है ना, वो गुस्सा नहीं करेगा।
2: बिहेवियर कैसा?
1: बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैं को मालूम नहीं तो उसका बोलिए तो मन के साफ ही करेगा, समझा रहे पूरा। बिहेवियर अच्छा है, उसका भाषा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना, तो गुस्सा करेगा।
2: फिर मौका मिला लाइफ में आपको, फिर आएंगी?
1: फिर आएंगी, आओ, भगवान का दया, फिर आए तो।
3: मेरा नाम जगदीश्वर राव, हम लोग विशाखापट्टनम से आया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से आया है। हम नेपाल में पूरा घूमने गया तो एक हफ्ता, वो हम लोग लुम्बिनी, पोखरा, मुक्तिनाथ, जनकपुरी, मनोकामना, सब बसपतिनाथ, काठमांडू का आसपास बाद बख्तापुर पूरा घूम के भाई आया। बस बहुत अच्छा है, पूरा आरती भी अटेंड किया, मॉर्निंग पूजा, चारों द्वार से दर्शन किया, चार मुख का दर्शन किया, बहुत अच्छा दर्शन हो गया पशुपतिनाथ में। अभी जनकपुर से आ रहा है, लास्ट में अभी जनकपुर गया, जनकपुर से अभी आ रहा है। जनकपुर में सीता देवी का मंदिर बहुत अच्छा है, इसका कल्याण मंडप मंदिर है वो भी अच्छा है, लक्ष्मण का मंदिर देखा, हनुमान जी का मंदिर देखा। नेपाल का मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, कोऑपरेट करता है, अच्छा अच्छा लोग है, कठिनाई कोई नहीं हुआ, पूरा अच्छा ही है, बिल्कुल कभी प्रॉब्लम नहीं फेस नहीं किया हम लोग, बहुत अच्छा लोग है, कहीं भी गया बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया हम लोग। वो क्या पैरल्स एंड पूरा स्टोन का आइटम्स बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, बहुत सब लोग बहुत खरीद किया, मोती का माला है, क्रिस्टल का माला है और हाँ रुद्राक्ष माला है, स्फटिक माला, वो सब बहुत लिए, सब लोग बहुत लिया,
1: बहुत खरीद लिया।
2: ये यात्रा मिला जुला करके कैसी रही?
3: बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, सबको बहुत अच्छा लगा।
2: कितने लोग आए थे आप इस ग्रुप?
3: 40 लोग आए, 40 लोग,
2: 40
3: लोग।
2: तो इस बार की यात्रा आपको अच्छी लगी, क्या लगता है कि भविष्य में फिर आएंगे?
3: भविष्य में मौका मिलने से आएंगे, दूसरा मौका मिलने से कभी आएगा।
4: रामाराव, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश, నేపాల్ వెళ్ళాము, ముత్తినాథ్ వెళ్ళాము, ఈ పశ్చిమనాథు అన్ని నాదులన్నీ చూసుకుని వచ్చాం నేపాల్లో.
5: నా బి తాతబాబు మాస్టర్ టీచర్, ఆంధ్ర విశాఖపట్నం జిల్లా, సింహాచలం, సౌత్ ఇండియా విజిటింగ్ నేపాల్ టూరిస్ట్.
2: కైసా లగా నేపాల్?
5: అచ్చా సూపర్, నేపాల్ సిటీ ఈజ్ వెరీ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్, నేచురల్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, ప్యూర్ ఆక్సిజన్, క్లీన్ సిటీ. This is the ideal of remaining some countries. Achcha, bahut achcha, very dignified people and respectable people, no underestimate, peace of mind people.

0: ऐसा है, विचार तो है सबका, अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत अच्छा संबंध है, बहुत दिनों से बहुत अच्छा संबंध है, बरसों से। आने वाला दिल कैसा आएगा वो तो हमको मालूम नहीं, अभी तक अच्छा है।
1: मेरा नाम संजय कुमार, घर मधुपुर, जिला मधुबनी, बिहार। भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही बढ़िया है। नेपाल और इंडिया का बेटी रोटी का संबंध है। बेटी रोटी का संबंध यही हुआ जो जैसे नेपाल का पब्लिक का शादी विवाह इंडिया होता है, इंडिया का शादी विवाह नेपाल में होता है। यहाँ का नेपाल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ जानकी के दर्शन के लिए आप ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब गाड़ी है तो कस्टम कटवा लीजिए, जाइए घूम फिर के आइए, कोई तरह का परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे हैं नेपाल के लोग, बहुत अच्छे हैं। कोई भी कठिनाई में नेपाल फंस गए तो नेपाल का लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा लोग है, शांति मिजाज के लोग सब है। यहाँ सब भाईचारा को निभाते हैं, जैसे गए तो कोई तरह की कठिनाइयाँ होती है तो वो सब भाईचारे के तौर पे वो निभाते हैं। हम लोग भी बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं सबको, मतलब अच्छे से व्यवहार करते हैं। इधर के लोग वहाँ भी जाके कमाते हैं, वहाँ के लोग इधर भी आके कमाते हैं, मतलब कोई तरह के किसी का परेशानी नहीं होता, न इधर से इधर वाले लोगों को न उधर वाले लोगों को। पढ़ाई लिखाई भी नेपाल के बहुत लोग हैं जो इंडिया में जाके पढ़ाई करते हैं, इंडिया के भी कुछ है, जैसे मधुपुर का भी है तो मठियानी में पढ़ते हैं, स्कूल सब है तो वहाँ भी पढ़ते हैं मठी मधुपुर का आदमी बच्चा सब। दोनों देशों का संबंध बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, जैसे हम लोग बॉर्डर पे हैं तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया संबंध है।
2: मेरा नाम हुआ भरत यादव, घर जनकपुर। यहाँ घर ऐसी सामान है थोड़ा किन मिल करना था, उसी लिए आए हैं।
3: भारत और नेपाल के संबंध को आप कैसा देखते हैं?
2: हम तो इधर बॉर्डर साइड में बहुत अच्छे देखते हैं।
3: यहाँ आते हैं तो लोग आपसे व्यवहार कैसा करते हैं?
2: बहुत अच्छा है व्यवहार, भाईचारा का व्यवहार है। शादी विवाह जो है ना तो इधर नेपाल और इंडिया का इधर बॉर्डर साइड में हो रहा है, वही तो है रोटी बेटी का संबंध। वहाँ से कुछ हमारा मार्केट जो है यहाँ का हल्का सस्ता है थोड़ा, घर ऐसे सामान सब जो है ना वो सब थोड़ा सस्ता है, इसीलिए आते हैं, दिक्कत होता तो आते ही नहीं।
4: अनेक परिवारों के रिश्तेदार सीमा के दोनों ओर रहते हैं, जिससे ये क्षेत्र वास्तव में रोटी बेटी के संबंध का जीवंत उदाहरण बन गया है।
5: मेरा नाम मुनेश्वर यादव, शिक्षक, मध्य विद्यालय मधुपुर बालक, घर बिनपट्टी। प्राचीन काल से ही बहुत अच्छा संबंध है भारत और नेपाल का। यहाँ से बेटी रोटी का संबंध है, शादी विवाह हो रहा है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना बना है, सगे संबंधी हैं, इसलिए संबंध तो बहुत प्राचीन है और बहुत अच्छा है। नेपाल और भारत का प्राचीन काल से ही अच्छा संबंध रहा है। प्राचीन समय में यहाँ के जो राजा जनक की चर्चा है, जो मिथिला के राजा कहलाते थे, जिनकी राजधानी जनकपुर है, और हम लोग मिथिला क्षेत्र के हैं, और यहाँ के और वहाँ के लोगों में जैसे माता जानकी का संबंध फुलहर मंदिर से है, वहाँ बराबर गिरिजा स्थान पूजा करने आती थी, वहाँ फूल लौटती थी। जनश्रुति से पता चलता है जो राम जी और सीता जी का प्रथम मिलन यहीं पर हुआ था, गिरिजा स्थान फुलहर स्थान में, बगीचे में। उसी रोज से आज भी हम लोग यहाँ से वहाँ शादी विवाह आना जाना सगे संबंधी सब है, घर घर है, मालूम ही नहीं पड़ता है जो दो देश हैं। तो बहुत अच्छा संबंध है हम लोगों का वहाँ से।
3: आप जाते हैं नेपाल?
5: हाँ जाते हैं।
3: कैसा व्यवहार करते हैं वहाँ के लोग?
5: बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं वहाँ के लोग, बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं हम लोगों के साथ। हम लोग भी पूरे अच्छे व्यवहार करते हैं, समय समय पर उन लोगों का जो भी गाड़ी बस जाती है हम लोगों के यहाँ बिना टैक्स का आता जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
3: कुछ छात्र छात्राएं नेपाल क्षेत्र के भी हैं इस स्कूल में?
5: हाँ हाँ, नेपाल के भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं।
6: मैं संगीता कुमारी, मैं मधुपुर पंचायत से ही हूँ और मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ, राजकीय मध्य विद्यालय मधुपुर बालक है।
3: बिल्कुल बॉर्डर पे आपका ये विद्यालय है और आप इसमें बच्चों को शिक्षण देती हैं, तो आप बताइए भारत और नेपाल का संबंध कैसा है, आप कैसा देखती हैं?
6: जी, भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही अच्छा है और मैं बॉर्डर पर, मेरा घर भी है, और दोनों में ऐसा कहा भी जाता है पूर्व से भी और देखने को भी मिल रहा है कि दोनों में अनुनाश्रय संबंध है। ये अतीत से भी है और वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है, ऐसा है समझिए कि एक दूसरे के अनुनाश्रय संबंध है और उसी में सारा सत छिपा हुआ है ना। तो

0: हमारा देश एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकता है। जैसा कि देखा जाता है कि यहाँ जो कार्यक्रम होती है तो वहाँ के भी लोग इसमें शामिल होते हैं, और वहाँ जो मतलब नेपाल की होती है तो वहाँ से भी यहाँ मतलब आमंत्रण आता है, तो लोग यहाँ के एक दूसरे का सहयोगी भी बनते हैं, काम में हाथ बटाते हैं, और कोशिश रहता है कि हमारा देश और वो हमारे आने वाले समय के लिए भी वो एक दूसरे का पूरक रहे, दोनों एक साथ बना रहे, दोनों का प्यार बना रहे।
1: धार्मिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत, माता सीता और भगवान राम से जुड़ी परंपराएं भारत और नेपाल को एक साझा भावनात्मक सूत्र में बांधती हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। राम निरंजन जनता डिग्री कॉलेज रामपुर।

0: और भगवान राम से जुड़ी परंपराएं भारत और नेपाल को एक साझा भावनात्मक सूत्र में बांधती हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। राम निरंजन जनता डिग्री कॉलेज रामपुर मधवापुर के प्रधानाचार्य जयमंत मिश्र बताते हैं।
1: जयमंत मिश्र, इस कॉलेज के हम प्राचार्य हैं। बासुकी बिहारी मेरा घर हुआ। भारत और नेपाल का संबंध रोजी बेटी और रोटी का है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों का रिश्ता नेपाल से रहा है। हमारी सांस्कृतिक समानता, धार्मिक समानता, बौद्धिक समानता और भाषागत समानता सभी नेपाल से जुड़ा हुआ है। हम लोग बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हम लोगों को ऐसा फील नहीं होता कि नेपाल के लोग दूसरे देश के हैं। वेरी कंफर्टेबल ढंग से हम लोग आते हैं, जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि शांति वहाँ रहे। बल्कि हमारे नेपाल के तो लोग यहाँ जो इंडियन क्रिकेट टीम जो क्रिकेट खेलती है, तो वहाँ के लोग भी टूर्नामेंट को देखने का एक अभिलाषा रखते हैं, कमेंट्री सुनते हैं और भारत की जीत में ही उनको खुशी मिलती है। तो मौलिक रूप से हमारा रिश्ता जो है सो एक ही है।
0: रहन सहन खान पान
1: सभी कुछ मिलता जुलता, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार सब कुछ मिलता जुलता है।
0: भाषा
1: भी मैथिली भाषा हम लोग बोलते हैं सामान्यतया, और इस मैथिली को लेकर हम काठमांडू से भी घुमाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। मैथिली भाषा को समझने वाले नेपाल में काठमांडू में भी लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि 60% नेपाली लोग इंडिया में नौकरी करने आते हैं, 10% इंडियन लोग नेपाल में भी रोजी रोटी करने जाते हैं। छोटे छोटे रोजगार जो करने वाले हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, सिलाई कटाई वाले, बूट पॉलिश वाले, पेंटर, छोटे छोटे जो किस्म के लोग हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं जो शिक्षण संस्थान में भी हैं, तो कुछ उपार्जन करने के लिए, रोजगार करने के लिए नेपाल जाते हैं, वो लोग भी आते हैं। अतीत से यह रिश्ता है। उसके इतिहास के बारे में तो मुझे नहीं पता कि कब से यह रिश्ता है, लेकिन जब से हो संभाला है लोगों को, अपने यहाँ के लोगों को विराटनगर, वीरगंज, काठमांडू नौकरी करते हुए पाया है। लोगों के मुँह से सुनता आया है कि वहाँ काम करते हैं। बल्कि ऐसा है कि करीब करीब हम लोग नेपाल के अधिकांश शहर का नाम जानते हैं, क्योंकि कोई न कोई वहाँ के लोग आते ही जाते रहते हैं, नौकरी चाकरी में हैं ही। आज भी मेरे गांव के भी कम से कम 50 आदमी विराटनगर में रहते हैं, नौकरी करते हैं। मेरे गांव के एक भाई सांसद हुआ करते थे, वहाँ सीनियर वकील हुआ करते थे काली बाबू। तो बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल में जाकर रोजी रोटी करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ के लोगों का पटबरका, पहले जमींदारी में पटबरका वगैरह कुछ कहा जाता था, वो सब भी था उन लोगों का। नेपाल के लोग इंडियन लोगों को श्रेष्ठ नज़र से देखता है, उनकी नज़र में हम डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, तो हमको एक सम्मान पूर्वक वह बात करते हैं हमारे साथ। आ चूँकि भाषा उनकी भाषा हमारी भाषा में समानता है, तो वो अपनी अभिव्यक्ति भी आसानी से कर लेते हैं, हम लोग आपस में बात भी कर लेते हैं, और उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि ये डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, तो हमको बड़ी आदर करते हैं वो। हम लोग भी पड़ोसी हैं, हमारे गांव के जिस तरह, हमारे गांव के सोसाइटी के जैसे लोगों का रहन सहन है, उसी तरह का रहन सहन उन लोगों का भी है ही, तो हमको उनके साथ एडजस्ट करने में, बात करने में थोड़ा सा भी कभी कोई घबराहट नहीं होती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ
0: में
1: सज्जन, माने नेपाल के लोग हैं तो सज्जन होंगे, ऐसा फीलिंग हमारे अंदर होता है। उनके अंदर होता है कि डेवलप्ड हैं, और मेरे अंदर फीलिंग होता है कि सज्जन हैं। सामान्य लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। लोग आज भी लोग काठमांडू जाते हैं, वो क्या कहते हैं, महादेव का दर्शन करने के उद्देश्य से जाते हैं, पोखरा जाते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो सावन वगैरह में लोग कांवर लेके भी जाते हैं कहाँ कहाँ, जो लोग बैद्यनाथ धाम जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं वो इधर भी जाते हैं। हमारी पत्नी हर महीने पूर्णिमा के रोज, आज भी हमारी पत्नी संयोग से जनकपुरे गई हुई है, तो जनकपुर को हम लोग तो घर ही समझते हैं।

0: कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के भी लोग आते हैं, करेंसी का भी प्रॉब्लम नहीं है। नेपाली रुपया यहाँ भी चल जाता है, यहाँ का रुपया वहाँ चल जाता है, यहाँ का भोजन वहाँ मिल जाता है, वहाँ का भोजन यहाँ मिल जाता है। संस्कृति वहाँ बहु बेटियों के साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं समाज के लोग, उस तरह यहाँ भी करते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, किसी तरह का कोई अंतर नहीं।
1: आज भारत और नेपाल शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यटन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास दोनों देशों की मित्रता को और अधिक मजबूत बनाता है। कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर राम नरेश ठाकुर ने बताया।
2: मेरा नाम राम नरेश ठाकुर हुआ और इसी प्रखंड अंतर्गत बैंगरा मेरा निज ग्राम हुआ। राम निरंजन जनता डिग्री महाविद्यालय रामपुर मधवापुर में अर्थशास्त्र विभाग में हम हैं और यहाँ का बर्सर भी हैं, नोडल पदाधिकारी भी हैं।
1: भारत और नेपाल के संबंध को किस रूप में आप देखते हैं?
2: भारत नेपाल मैत्री मानवता का एक अनूठा संगम है और अगर आप विश्व इतिहास में, विश्व में जो 325 देश हैं देखें, तो ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसा सुंदर मित्रता बहुत कम राष्ट्रों में मिलता है। और अमेरिका के बगल के भी कुछ राष्ट्र हैं जो सीधा आते जाते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ देखने को नहीं मिलता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये नेपाल के हैं, हम भारत के हैं। आम नागरिक यही समझता है कि हम सब भाई भाई हैं और यहाँ वहाँ में कोई अंतर मेरे नज़र में नहीं है और ऐसा है भी नहीं। बेटी का संबंध से सीधा मतलब है, भगवान राम के समय से टिल टुडे माया नहीं माया छा तिम्र नाम तिम्रै
1: भेट्न आउँछ तिम्रो गाउँमा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत और नेपाल का संबंध सीमाओं से नहीं बल्कि विश्वास, संस्कृति और आत्मीयता से बना है। मधवापुर मटिहानी सीमा इस बात का प्रमाण है कि सच्ची मित्रता राजनीतिक सीमाओं से कहीं बड़ी होती है। आप सुन रहे थे भारत नेपाल मैत्री संबंधों पर आधारित कार्यक्रम हम एक हैं। इसके लिए संकलनकर्ता थे सज्जाद अहमद खान और असद दाऊद। आलेख वाचन एवं निर्माण था सज्जाद अहमद खान का तथा प्रस्तुतकर्ता थे असद दाऊद। ये कार्यक्रम प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे प्रसारित किया जाता है। तो मिलते हैं अगले अंक में किसी और सीमा क्षेत्र से। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्री संबंध पर आधारित कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।

0: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: श्री गोयल 3 दिन के ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparation.